0: of engagement. Ambitions crossing borders. Voices refusing to wait their turn. India is chasing years. Faster. Bolder. More restless. It doesn't stop. Neither do we. NDTV. When it really matters.
1: Hindustan mile Hindustan se
2: Desh ka tire, JK tire.
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
3: अरे मेरे राजा।

0: मारा कैसे? How dare he?
1: It was straight away an attempt to murder.
0: वो deliberately, वो एक male ego है ना, वो साफ वही नजर आ रही है।
2: आज मैं उस मुद्दे पर बात करने वाली हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ राइडिंग की। इट गिव्स अस अ फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस। लेकिन इस एक घटना ने सबका ध्यान विमेन राइडर्स की सेफ्टी पर खींचा है। सिया के साथ जो कुछ हुआ उससे पूरे देश का खून खौल गया।
3: आई डोंट नो व्हेन आई विल बी लाइक मेंटली लाइक फ्री फ्रॉम दैट इंसिडेंट। वो जो इंसान करके गया उससे तो ऑब्वियसली मैं डरने वाली नहीं हूँ।
2: थ्री चीयर्स फॉर विमेन राइडर्स। हिप हिप हुरे, हिप हिप हुरे, हिप हिप हुरे।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: गाइस, मेरा तीसरा स्टोर अब एक्सपेंशन के लिए ना एक बैंक चाहिए. एनी सजेशंस?
1: जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक.
0: स्मॉल
2: स्मॉल
3: अब पूरी पिक्चर देख लो. लोन ऑप्शंस बिग, सेविंग्स और एफडी पे इंटरेस्ट बिग, ब्रांच नेटवर्क बिग. अगर स्मॉल होता तो मैं साड़ में होता. और जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस.
4: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे.
5: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the coolest.

0: all-wheel drive in the Kia Sorento.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Hindustan mile, Hindustan se.
3: देश का टायर जेके टायर
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा क्या स्वाद है।
6: अरे मेरे राजा
7: सबका

0: मैंने मारा कैसे? How dare he?
1: It was straight away an attempt to murder.
0: वो deliberately, वो एक male ego है ना, वो साफ वही नजर आ रही है।
2: आज मैं उस मुद्दे पर बात करने वाली हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ राइडिंग की। इट गिव्स अस अ फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस। लेकिन इस एक घटना ने सबका ध्यान विमेन राइडर्स की सेफ्टी पर खींचा है। सिया के साथ जो कुछ हुआ उससे पूरे देश का खून खौल गया।
3: आई डोंट नो व्हेन आई विल बी लाइक मेंटली लाइक फ्री फ्रॉम दैट इंसिडेंट। वो जो इंसान करके गया उससे तो ऑब्वियसली मैं डरने वाली नहीं हूँ।
2: थ्री चीयर्स फॉर विमेन राइडर्स। हिप हिप
4: हुरे,
2: हिप हिप
4: हुरे,
2: हिप हिप
4: हुरे,
2: हिप हिप
4: हुरे।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

0: मारा कैसे? How dare he?
1: It was straight away an attempt to murder.
0: वो deliberately, वो एक male ego है ना, वो साफ वही नजर आ रही है.
2: आज मैं उस मुद्दे पर बात करने वाली हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है. जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ राइडिंग की. इट गिव्स अस अ फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस. लेकिन इस एक घटना ने सबका ध्यान विमेन राइडर्स की सेफ्टी पर खींचा है. सिया के साथ जो कुछ हुआ उससे पूरे देश का खून खौल गया.
3: आई डोंट नो व्हेन आई विल बी लाइक मेंटली लाइक फ्री फ्रॉम दैट इंसिडेंट. वो जो इंसान करके गया उससे तो ऑब्वियसली मैं डरने वाली नहीं हूँ.
2: थ्री चीयर्स फॉर विमेन राइडर्स. हिप हिप
4: हुरे,
2: हिप हिप
4: हुरे,
2: हिप हिप
4: हुरे.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: मैंने मारा कैसे, हाउ डेयर ही,
1: इट वाज स्ट्रेट अवे एन अटेम्प्ट टू मर्डर,
0: वो डेलिबरेटली, वो एक मेल ईगो है ना, वो साफ वही नजर आ रही है।
2: आज मैं उस मुद्दे पर बात करने वाली हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ राइडिंग की। इट गिव्स अस अ फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस, लेकिन इस एक घटना ने सबका ध्यान विमेन राइडर्स की सेफ्टी पर खींचा है। सिया के साथ जो कुछ हुआ उससे पूरे देश का खून खौल गया।
3: I don't know when I'll be like mentally like free from that incident. वो जो इंसान करके गया उससे तो obviously मैं डरने वाली नहीं हूँ।
2: Three cheers for women riders! Hip hip!
4: Hooray!
2: Hip hip!
4: Hooray!
2: Hip hip!
4: Hooray!

0: कैसे, हाउ डेयर ही,
1: इट वाज स्ट्रेट अवे एन अटेम्प्ट टू मर्डर,
0: वो डेलिबरेटली, वो एक मेल ईगो है ना, वो साफ वही नजर आ रही है।
2: आज मैं उस मुद्दे पर बात करने वाली हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ राइडिंग की। इट गिव्स अस अ फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस, लेकिन इस एक घटना ने सबका ध्यान विमेन राइडर्स की सेफ्टी पर खींचा है। सिया के साथ जो कुछ हुआ उससे पूरे देश का खून खौल गया।
3: आई डोंट नो व्हेन आई विल बी लाइक मेंटली लाइक फ्री फ्रॉम दैट इंसिडेंट। वो जो इंसान करके गया उससे तो ऑब्वियसली मैं डरने वाली नहीं हूँ।
2: थ्री चीयर्स फॉर विमेन राइडर्स। हिप हिप
4: हुरे,
2: हिप हिप
4: हुरे,
2: हिप हिप
4: हुरे।

0: सुबह।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा। सबका राजा आके और
2: मसाला। गाइस, मेरा तीसरा स्टोर। अब एक्सपेंशन के लिए ना एक बैंक चाहिए। एनी सजेशंस?
0: जीवन स्मॉल फाइनेंस मैन।
2: स्मॉल
3: स्मॉल, अब पूरी पिक्चर देख लो। लोन ऑप्शंस बिग, सेविंग्स और एफडी पे इंटरेस्ट बिग, ब्रांच नेटवर्क बिग। अगर स्मॉल होता तो मैं साइड में होता। और जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस।
4: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।

0: या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: नेविगेट मी टू द नेशनल आर्चरी क्लब। What time is the medal ceremony?
2: The medal ceremony begins at 6:30 p.m.
3: Live Gen AI in the Kia Sorento. Thoughtful intelligence for the moments that matter.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Gold rush on the field.
6: India's champions are ready.
5: The battles and the breakthroughs from the arena to the podium.
6: Asian Games 2026.
5: Go for glory. Only on NDTV.
7: The next chapter of the NDTV Golf Pro-Am begins here. Bigger, bolder, teeing off across India. The course of champions. The conversation of leaders. The NDTV AM Green IGPL Golf Pro-Am. Season announcement, 19 September. A generation with questions.
8: The starry and the whole glamorous side of it.
9: As I said, like, I can't empathize with it.
7: Unconventional.
10: I feel blessed. As long as the work is going on, I'm happy.
7: Unapologetic. Unafraid of change. Ready to challenge.
11: Aspirational.
7: The ideas. The issues.
12: You really are.
7: The young view.
12: Public perception.
7: NDTV Yuva. 28 September 2026. Only on the NDTV network. New rules of engagement. Ambitions crossing borders. Voices refusing to wait their turn. India is chasing gears. Faster. Bolder. More restless. It doesn't stop. Neither do we. NDTV. When it really matters.
13: Launch control, 0 to 100.
14: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
15: This car makes no sense, yet it makes every sense.
16: What we are sitting inside is a Joby powered air taxi.
14: Your friend said, yeah, Lily. We said, maybe not. Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
17: Hello and welcome to Apple Park. I am so thrilled to be here today. Every day, people around the world rely on our product.
18: Siri AI can find what you need and get more done than ever. And it already works seamlessly with over 300,000 apps.
19: NDTV's big splash at Apple event. NDTV at Apple's biggest upgrade. NDTV app in Apple Global Showcase. NDTV makes it to the world's biggest tech moment. NDTV app is the most trusted. NDTV, when it really matters.
5: Gold rush on the field.
6: India's champions are ready.
5: The battles and the breakthroughs from the arena to the podium.
6: Asian Games 2026.
5: Go for glory. Only on NDTV.
19: 5 hours to go for all of DKS's dreams to come true. I'm going to try and get more into the crowds. Here are the pictures, Siddaramaiah. NDTV stands completely engaged with Karnataka.
20: High rate, check the audio. High rate, check the audio.
19: Let's do it. Let's do it. Let's start.
21: Breaking story, we're jumping straight into it.
19: We've got a picture of the letter. What is in your letter? You can never predict what's going to happen in Tamil Nadu politics.
22: 21 days in Kashmir. Unfiltered list of things I saw and observed on the ground.
19: Very special ground report from the line of control. There were some children who've lost limbs in the...
23: BJP Sudhanshu Trivedi is speaking in a press conference. Let's cut across live.
24: Girai Congress ne, Gujral ji ki sarkar girai Congress ne. Banai bhi inhone aur girai bhi inhone. Yani ye darshata hai aur kul milakar Bharat ke samvaidhanik itihas mein अपनी चुनी हुई सरकारों में 1997 तक, जब तक अटल जी की सरकार आई 98 में, उससे पहले सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ के किसी दल को अपना कार्यकाल चुनी हुई सरकार को राज्य में पूरा नहीं करने दिया गया। कम्युनिस्ट पार्टी इसलिए कि अब जिस जमाने के जो आर्काइव्स अवेलेबल हैं, डीक्लासिफाइड आर्काइव्स के जीबी के, उसके अनुसार कांग्रेस की सरकार की हैसियत नहीं थी कि कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार को डिसमिस कर दे। जब हैसियत थी तो नमूदरी पाद जी की सरकार को डिसमिस कर दिया था। और 1980 में जब सत्ता में आए, 9 राज्यों में विपक्ष की सरकारों को इस आधार पर बर्खास्त कर दिया गया कि आपकी पार्टी केंद्र में चुनाव हार गई है, इसलिए अब उसे राज्य में सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी कान खोल के, आंख फाड़ के देखें और कान खोल के सुने, आपने 9 गवर्नमेंट सिर्फ इसलिए डिसमिस कर दी कि आप कह रहे हैं क्योंकि सेंटर में हम जीत गए हैं तो आपको स्टेट में रूल करने का अधिकार ही नहीं है। और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी तो ऐसे ऐसे लोगों को खाया है, राहुल गांधी जी को पता नहीं है। अच्छा, अपने दौर का ही याद रख लेते, कितने तो मुख्यमंत्रियों को खा गए। अगर आप देखें तो केवल राज्यों के सीएम की बात कर रहा हूं, गुलाम नबी आजाद साहब कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे जम्मू कश्मीर, कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे असम के, विजय बहुगुणा जी कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे उत्तराखंड के, एसएम कृष्णा जी कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे कर्नाटक के। आप तो अपने नेताओं को भी खा जाते हैं। और यह कांग्रेस की परंपरा आज की नहीं है, यह कांग्रेस की दुर्भाग्यशाली परंपरा, निंदनीय परंपरा बहुत जमाने से है। आजादी के बाद जो भी एक फिल्मों में डायलॉग होता था ना, जो भी नक्सलबाजी दिखाए उसको इतना छोटा कर दो, तो उन्होंने एक क्या करके दिखाया, वहां से शुरू करिए, चाहे कृष्णा मेनन हो, यशवंतराव चौहान हो, फिर कांग्रेस से बाहर निकालने में निजलिंगप्पा, कामराज, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, नीलम संजीव रेड्डी, उसके बाद के दौर में बाबू जगजीवन राम, देवराजर्स, फिर उसके बाद आइए तो एक जमाने में प्रणब मुखर्जी साहब को बाहर जाना पड़ा, उसके बाद आप आइए तो एनडी तिवारी, अर्जुन सिंह, कितने कितने हैं। और इसी जमाने में मुझे यह भी याद आता है कि कांग्रेस का ओवरऑल कैरेक्टर क्या है। कांग्रेस 1885 से लेकर आज तक, राहुल गांधी जी को ध्यान देना चाहिए, कोई 20 साल ऐसे नहीं है कांग्रेस का विभाजन न हुआ। 1907 में सूरत में नरंदल गरंदल में टूटे, उसके बाद 1919 में रिस्पॉन्सिविस्ट अलग हुए, उसके बाद 1939 में जो हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में, जो त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में जो कुछ हुआ सुभाष चंद्र बोस जी के साथ, वो क्या था। और उसके आजादी के बाद तो हर 15-20 साल में कांग्रेस टूटती रही। मुझे याद है हम बच्चे थे तो अटल जी की एक सभा में गए थे, तो अटल जी ने कहा कांग्रेस की तो स्थिति ये है कि वहां एक दूसरे को निपटाने की ऐसी प्रवृत्ति है कि कांग्रेस के इतने विभाजन होते हैं, आपने सुना होगा कांग्रेस ओ, कांग्रेस आर, कांग्रेस यू, कांग्रेस एस, कांग्रेस आई बनी थी, ये इंदिरा कांग्रेस बनी थी जिसको आज आईएमसी कहते हैं। उन्होंने कहा कांग्रेस आई, कांग्रेस यू, फिर उन्होंने कहा कांग्रेस मैं, कांग्रेस तू, फिर कांग्रेस आई और कांग्रेस गई। इतना होने के बाद भी यदि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है तो मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं, उन्हीं के दौरे हुकूमत में मार्गरेट अलवा जी ने अपनी किताब करेज एंड कमिटमेंट में लिखा है कि कांग्रेस के अंदर किस प्रकार नेताओं को निपटाया जाता था। यह मैं नहीं कह रहा, उन्होंने कहा 2008 में कर्नाटक में राज्यसभा की सीटें ऑक्शन के लिए थी, मेरिट्रिकोसी के लिए, मतलब मेरिट्रिकोसी के लिए नहीं थी। नटवर सिंह साहब ने खुद लिखा है, और इस समय के संदर्भ में तो राहुल गांधी जी को बहुत कान खोल के सुनना चाहिए, अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ पेज नंबर 103 पे उन्होंने लिखा है कि डिनर पार्टी में मुझे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि मुझे विदेश मंत्रालय दिया जाएगा और अर्जुन सिंह जी को एचआरडी, फिर सोनिया गांधी जी ने मुझे बुलाया, और ये मैं कोट कर रहा हूं, उन्होंने कहा शी टोल्ड मी दैट शी वॉज अंडर ग्रेट प्रेशर from various quarters, including from Americans, not to appoint me as external affairs minister. अर्थात सोनिया गांधी जी नटवर सिंह जी से, जो कांग्रेस के विदेश मंत्री रहे हैं, उनसे कह रही हैं कि मेरे ऊपर बहुत भारी दबाव है और अमेरिकी लोगों का दबाव है कि आपको विदेश मंत्री नहीं रहना है।
23: After Rahul Gandhi's post, you have the BJP hitting back at him. This, of course, will remain one of the developing stories here on NDTV, but there is some news coming in. There's been a big development in the fight against dengue in India. India's first dengue vaccine is to enter the market in 2027. The vaccine has got approvals earlier from CDSCO, and Dr. Reddy's will be promoting and distributing the vaccine. Health editor Sneha now joins me live on this broadcast. Sneha, the details.
0: Vedika, this vaccine actually was approved by the CDSCO, which is the central authority in India when it comes to drug regulation. It was approved in the month of July and earlier this year, in fact, and manufactured by a Japanese company. This is Takeda, and the vaccine is called Qdenga. This is going to be now distributed by Dr. Reddy's. Extremely important development from the fight against dengue in the country. It is an infectious vector-borne disease. It, in fact, affects so many Indians. In fact, estimates suggest that over the last few years, there's been more than an 11-fold increase in the occurrence of dengue, which has become a big challenge in a country like India, and common during this time of the year after monsoons where the breeding happens. Right now, as we speak, the state of Tamil Nadu is battling, dealing with the crisis of dengue infections. It's a vector-borne disease, and the control of it is also extremely difficult in a country like ours. A couple of days ago, we saw a surge in the national capital as well. It's something that affects people across the country, especially in post-monsoon season. And that's the reason why this becomes extremely important. Right now, we don't have, the details of the cost of the vaccine has not been shared, but an important development given that it is going to be for people between the ages, children from the age of 4 onwards and up to the age of 60. So senior citizens up to the age of 60 will be able to, in fact, avail of this vaccine. Sometime in the beginning of next year, 2027 is what we've been given to understand. It's unprecedented. A vaccine against dengue infection, which affects so many people, and like I said, an 11-fold increase that has been seen across the country over the last few days, as per estimates of the Indian Council of Medical Research and other departments, yes, of the Health Ministry also. It's a big fight against this infection in that sense.
23: All right, Sneha Mardani, thanks for that update. This is good news, in fact, for India. Like Sneha said, it is in this season that you see a massive surge when it comes to cases of dengue. Thanks for joining me live. We're slipping to a short break. On the other side, we return with news and updates and the headlines here on Breaking Ground. Stay tuned.

0: मारा कैसे? How dare he?
1: It was straight away an attempt to murder.
0: वो deliberately, वो एक male ego है ना, वो साफ वही नजर आ रही है।
2: आज मैं उस मुद्दे पर बात करने वाली हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ राइडिंग की। इट गिव्स अस अ फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस। लेकिन इस एक घटना ने सबका ध्यान विमेन राइडर्स की सेफ्टी पर खींचा है। सिया के साथ जो कुछ हुआ उससे पूरे देश का खून खौल गया।
3: आई डोंट नो व्हेन आई विल बी लाइक मेंटली लाइक फ्री फ्रॉम दैट इंसिडेंट। वो जो इंसान करके गया उससे तो ऑब्वियसली मैं डरने वाली नहीं हूँ।
2: थ्री चीयर्स फॉर विमेन राइडर्स। हिप हिप
4: हुरे,
2: हिप हिप
4: हुरे,
2: हिप हिप
4: हुरे,
2: हिप हिप
4: हुरे।

0: India for splitting the party. Sudhanshu Trivedi from the BJP held a press conference about an hour back and he hit back at Gandhi.
1: Sir, you have submitted the three names on behalf of your faction and the three symbols. How tough is this fight going to be? And this is just the interim order. What is expected in the final order?
2: See, let's take things step by step. Now the two by-elections are closing in. And as you know, politics is a permanent war. A war at every hour, a war at every minute, a war at every second. A war that changes interests, needs and priorities. So the ECI had given its verdict. And we have from the beginning said that ECI is the highest body, apex body, as far as this electoral process is concerned. So we won't go into the wisdom. We have already said that whatever ECI decides is final. So now the decision of the ECI has come. So, and we, as we are a collective, I cannot take an individual decision. Myself and Chandrima Bhattacharya, when we landed a bit late in the night, we had a discussion with whoever was available. In the morning, we had a Zoom meeting because this entire fight has been against an individual cult for democracy. So then after what the collective decided, I was given the responsibility of writing that, and by within the stipulated time we had sent our answer, our choices, the three, first preference, second preference, third preference, as far as both the symbol and the names are concerned.
3: Bharat ki rajneeti ke sada sarvada vyakul neta pratipaksh राहुल गांधी जी, उन्होंने आज ट्वीट किया कि पहले शिवसेना, फिर एनसीपी और अब तृणमूल कांग्रेस, इन तीन का नाम लेके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाने का प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी इन पार्टियों को निपटा रही है। कांग्रेसियों के लिए आदरणीय और अभिनंदनीय और देश के लिए निंदनीय राहुल गांधी जी, आप इतना भी नहीं पढ़ पाते कि एनसीपी का फुल फॉर्म है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। यह कांग्रेस से टूटी हुई है, तृणमूल कांग्रेस के नाम में कांग्रेस है। एनसीपी, शरद पवार जी 1999 में कांग्रेस पार्टी से अलग हुए थे विदेशी मूल के नेतृत्व के मुद्दे पे, मगर विदेशी मूल के वारिस राहुल गांधी जी को अपनी पार्टी का मूल ही नहीं पता है।
4: देखिए, तृणमूल पार्टी ऐसा है, खुद आपस में लड़ाई करके खत्म हो रहे हैं। जनता ने उनको नकारा है, उनका अकाउंट फ्रीज हो गया है, उनका जो ऑफिस था वो किसी का घर का कब्जा हुआ वो छूट गया है, उनके एमपी एक दूसरे दल में है, एमएलए तीसरे दल में है, ममता बनर्जी अकेली है। इस प्रकार कोई पार्टी नहीं चल सकता है, इसलिए उनके हाथ में कुछ नहीं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो इसलिए चुनाव कमीशन के हाथ में सारा कुछ है, निर्णय लेंगे निर्वाचन कमीशन।
0: In the national capital, a horrific crime has taken place. The details of this incident could be disturbing for some. A 17-year-old girl was allegedly gang raped and stabbed to death by four people, which included three minors, and a body dumped in an open field. Police say her decomposed body was found on the 13th of September near a field in central Delhi. It had decomposed so badly that her gender could not initially be established. Police say parts of her body had been eaten by stray dogs. The girl and the accused allegedly knew each other. Police say they were traveling together in a tempo and had been drinking before the alleged assault and murder. The girl had not been reported missing. Her family told the police she would often leave home and return after a few days. With no apparent eyewitnesses, investigators turned to CCTV, analyzing more than 50 cameras. They tracked a tempo seen near the scene, traced it overnight on the 15th and 16th, and questioned his driver. Four people were apprehended, including an adult, and like I said, three juveniles between the age of 16 and 17. The police have also said two knives, clothes allegedly worn by the accused, and the tempo have been recovered. A case has been registered under BNS and the POXO Act.
5: So, इस केस ऐसा था, 13 सितंबर में हमको इंफॉर्मेशन मिला जयपाल राणा फील्ड में एक डेड बॉडी हाईली डीकम्पोज स्टेट में पड़े थे। एंड इस केस में मैं ये बताना चाह रहा हूँ, इस केस में कोई क्लू नहीं था क्योंकि डेड बॉडी भी हमारा आइडेंटिफाइड नहीं थे, उस एरिया में कोई सीसीटीवी बगल में नहीं थे सीना फ्रेम का, और हमको ये भी नहीं पता ये मेल और फीमेल है। ये 10 या 11 तारीख रात में चार लड़कों ने, एक अडल्ट है और तीन जुवेनाइल्स है, इन्होंने एक लड़की थी वो भी माइनर है इस फील्ड में लेके गया। वो लड़की के साथ ये चारों लड़कों ने अंडर इंटॉक्सिकेशन रेप किया है, और रेप करके उस फील्ड में लेके गया। फील्ड में जाके ये लड़की के ऊपर चाकू वाकू मार के डेड बॉडी को उधर जंगलों में छुपा के रख दिया। फिर वो डेड बॉडी को कुत्ते वगैरह बाहर लेके आया, फिर 13 तारीख को हमारा रिपोर्ट हुआ, फिर वो डेड बॉडी को हमने रिकवर किया।
0: अनुष्का गर्ड नाउ जॉइंस मी लाइव।

0: सरहद का सूबा है और पाकिस्तान यहाँ पे हस्तक्षेप करता रहता है, ये केंद्र सरकार, क्योंकि जो 50 किलोमीटर बॉर्डर से लेके 50 किलोमीटर का इलाका है वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पास है, उसके बाद पंजाब पुलिस की जिम्मेवारी बनती है कि ये जो सारी परिस्थिति है कानून और व्यवस्था की उसको सुदृढ़ बनाया जाए। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार को समन्वय बनाकर उसको सुदृढ़ बनाने की जरूरत है।
1: The government is said to work with payment aggregators and platforms to ensure that merchants do not pass on the UPI merchant discount rate or MDR to customers. Banks have also been instructed to ensure compliance with daily monitoring set to begin from the 15th of this month. The sources say the 0.4% MDR on UPI transactions above 2,000 rupees is not expected to reduce UPI usage or trigger a shift back to cash payments. Merchants, meanwhile, are not expected to face any additional GST burden from the MDR as the tax can be offset through input tax credit. On that note, we'll sit for a short break. On the other side of Breaking Ground, Apple fever has gripped India as iPhone 18 Pro and Pro Max hit stores today.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: मारा कैसे? How dare he?
1: It was straight away an attempt to murder.
0: वो deliberately, वो एक male ego है ना, वो साफ वो ही नजर आ रही है।
2: आज मैं उस मुद्दे पर बात करने वाली हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ राइडिंग की। इट गिव्स अस अ फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस। लेकिन इस एक घटना ने सबका ध्यान विमेन राइडर्स की सेफ्टी पर खींचा है। सिया के साथ जो कुछ हुआ उससे पूरे देश का खून खौल गया।
3: आई डोंट नो व्हेन आई विल बी लाइक मेंटली लाइक फ्री फ्रॉम दैट इंसिडेंट। वो जो इंसान करके गया उससे तो ऑब्वियसली मैं डरने वाली नहीं हूँ।
2: थ्री चीयर्स फॉर विमेन राइडर्स। हिप हिप हुरे, हिप हिप हुरे, हिप हिप हुरे।
4: Gold rush on the field.
5: India's champions are ready.
4: The battles and the breakthroughs from the arena to the podium.
5: Asian Games 2026.
4: Go for glory only on NDTV.
6: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
6: अरे मेरे राजा।
8: Hello and welcome to Apple Park. I am so thrilled to be here today. Every day, people around the world rely on our products.
9: Siri AI can find what you need and get more done than ever. And it already works seamlessly with over 300,000 apps.
10: NDTV's big splash at Apple event. NDTV at Apple's biggest upgrade. NDTV app. Apple Global Showcase. NDTV makes it the world's biggest tech moment. NDTV app is the most trusted. NDTV, when it really matters.
11: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, everyday.

0: बंदे ने मारा कैसे, हाउ डेयर ही,
1: इट वाज स्ट्रेट अवे एन अटेम्प्ट टू मर्डर,
0: वो डेलिबरेटली, वो एक मेल ही हुआ है ना, वो साफ वही नजर आ रही है।
2: आज मैं उस मुद्दे पर बात करने वाली हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ राइडिंग की। इट गिव्स अस अ फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस।

0: लेकिन इस एक घटना ने सबका ध्यान विमेन राइडर्स की सेफ्टी पर खींचा है। सिया के साथ जो कुछ हुआ उससे पूरे देश का खून खौल गया।
1: I don't know when I'll be like mentally like free from that incident. वो जो इंसान करके गया उससे तो obviously मैं डरने वाली नहीं हूँ।
0: Three cheers for women riders! Hip hip!
2: Hooray!
0: Hip hip!
2: Hooray!
0: Hip hip!
2: Hooray!

0: मारा कैसे? How dare he?
1: It was straight away an attempt to murder.
0: वो deliberately, वो एक मेल ही हुआ है ना, वो साफ वही नजर आ रही है।
2: आज मैं उस मुद्दे पर बात करने वाली हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ राइडिंग की। इट गिव्स अस अ फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस। लेकिन इस एक घटना ने सबका ध्यान विमेन राइडर्स की सेफ्टी पर खींचा है। सिया के साथ जो कुछ हुआ उससे पूरे देश का खून खौल गया।
3: आई डोंट नो व्हेन आई विल बी लाइक मेंटली लाइक फ्री फ्रॉम दैट इंसिडेंट। वो जो इंसान करके गया उससे तो ऑब्वियसली मैं डरने वाली नहीं हूँ।
2: थ्री चीयर्स फॉर विमेन राइडर्स। हिप हिप
4: हुरे,
2: हिप हिप
4: हुरे,
2: हिप हिप
4: हुरे।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्थर मसाला।
5: गाइस मेरा तीसरा स्टोर, अब एक्सपेंशन के लिए ना एक बैंक चाहिए। एनी सजेशंस?
2: जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
5: स्मॉल
6: स्मॉल,
0: आप पूरी पिक्चर देख लो। लोन ऑप्शंस बिग, सेविंग्स और एफडी पे इंटरेस्ट बिग, ब्रांच नेटवर्क बिग। अगर स्मॉल होता तो मैं साइड में होता। और जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस।
7: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे। The next chapter of the NDTV Golf Pro-Am begins here. Bigger, bolder, teeing off across India. The course of champions. The conversation of leaders. The NDTV AM Green IGPL Golf Pro-Am. Season announcement, 19 September. Meetha. या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।

0: I can say, how dare he? It was straight away an attempt to murder him. वो deliberately वो एक मेल ही है ना वो साफ वो ही नजर आ रही है.
1: आज मैं उस मुद्दे पर बात करने वाली हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है. जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ राइडिंग की. इट गिव्स अस अ फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस. लेकिन इस एक घटना ने सबका ध्यान विमेन राइडर्स की सेफ्टी पर खींचा है. सिया के साथ जो कुछ हुआ उससे पूरे देश का खून खौल गया.
2: आई डोंट नो व्हेन आई विल बी लाइक मेंटली लाइक फ्री फ्रॉम दैट इंसिडेंट. वो जो इंसान करके गया उससे तो ऑब्वियसली मैं डरने वाली नहीं हूँ.
1: थ्री चीयर्स फॉर विमेन राइडर्स. हिप हिप
3: हुरे
1: हिप हिप
3: हुरे
1: हिप हिप
3: हुरे.

0: अगर मैं मर जाती तो आप आपका स्टेटमेंट यही होता कि मैं विक्टिम कार्ड प्ले कर रही हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं झूठ बोल रही हूँ
1: के चक्कर में आगे मेरे स्टमक में चाकू मारे, एक नहीं 6-7 बार। मेल ईगो कितना बड़ा प्रॉब्लम है,

0: नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत और आज मैं उस मुद्दे पर बात करने वाली हूं जो मेरे दिल के बहुत करीब है और मेरे जैसी कई फीमेल्स को ये आज़ादी का एहसास कराती है। जी हां, मैं बात कर रही हूं राइडिंग की। इट गिव्स अस अ फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस। लेकिन इस एक घटना ने सबका ध्यान महिला सेफ्टी पर खींचा है, विमेन राइडर्स की सेफ्टी पर खींचा है। सिया के साथ जो कुछ हुआ उससे पूरे देश का खून खौल गया। आज मेरे साथ देश की जानी मानी विमेन राइडर्स हैं, अनुभवी हैं, सालों से प्रीमियम और जो बिग बाइक्स हैं वो चला रही हैं, अच्छा खासा अनुभव है। हम समझेंगे चुनौतियों को विमेन राइडर्स की और साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि कैसे इन चुनौतियों से निपटा जा सकता है। और साथ ही हमारे साथ सिया भी होंगी, तो आप कहीं मत जाइए, बने रहिए। हम सिया से भी समझेंगे कि क्या सिनारियो रहा। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ मेरी विमेन राइडर से। जिया है मेरे साथ। सबसे पहले जिया, बताएं अपने बारे में।
1: हाय, माय नेम इज़ जिया और मैं कुछ सालों से राइडिंग कर रही हूँ। आई एम अ बिगनर बट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा मेरा राइडिंग का। और आई एम एन आर्टिस्ट।
2: आई एम पवित्र भारद्वाज। आई एम बास्केटबॉल प्रोफेशनल।
0: हमारे साथ देवी मैम है जो 40 सालों से बाइकिंग कर रही हैं और हमारी आज वो मार्शल भी रहने वाली है। वो हमें लीड करेंगी, वो हमें गाइड करेंगी। देवी मैम, अपने बारे में थोड़ा बताएं और वेलकम टू द शो।
3: थैंक यू। मेरा नाम देवी बानर्जी है। मैं बचपन से 84 से बाइक चला रही हूँ और ये मेरा मेडिटेशन है, ये मेरा पैशन है और आज मैं अकेली हूँ तो ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये मेरा गर्लफ्रेंड है और लड़की थी।
0: JK Lioness, इनका नाम है जसविंदर कौर। वेलकम टू द शो JK, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ।
4: सो माई सेल्फ JK Lioness, एज इन्होंने कहा है। बेसिकली लोग मुझे JK Lioness के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि राइडिंग फ्रेटर्निटी में यही टैग लाइन जो है फेमस हो रखा है। सो दैट्स हाउ पीपल नो मी, क्योंकि जसविंदर कौर कोई बोलता नहीं था, लिटिल JK हुआ, फिर एक कुछ ट्रेजेडी ऐसी हुई तो उसके साथ वो द Lioness भी आ गया। सो दैट्स हाउ पीपल कॉल मी JK द Lioness।
0: ट्रेजेडी के बारे में भी हम जानेंगे, आप लोगों से जो चैलेंजेस है उसके बारे में भी समझेंगे क्योंकि आप लोगों का काफ़ी एक्सपीरियंस है।
4: राइट।
0: तो अब हम अपनी जर्नी को शुरू करेंगे और सिया भी हमारे साथ जुड़ने वाली है कुछ ही देर में। देखिए, सबसे पहले मैं आप ही से पूछना चाहती हूँ, जब आपने सिया की वो तस्वीरें देखी, पहला रिएक्शन क्या था आपको, क्या लगा वो देख के आपने?
4: पहला रिएक्शन देखते ही बिल्कुल जैसे होता है ना, देखते ही जो आग बबला हुआ और वो जो एकदम से वो डर बैठ गया वो लड़की के लिए कि भाई वो ठीक है या नहीं है, तो वो दोनों रिएक्शंस ना, मतलब मिक्स इमोशंस था एक ही टाइम पे कि उस बंदे ने मारा कैसे, हाउ डेयर ही, एंड देन द गर्ल हु गॉट हिट वेरी बैडली।
0: राइट, यू वर कंसर्न अबाउट द गर्ल आल्सो।
4: यस, क्योंकि जिस तरीके से उस आदमी ने मारा है वो बहुत ही खतरनाक था। इट वॉज स्ट्रेट अवे एन अटेम्प्ट टू मर्डर के।
0: डेफिनेटली, मुझे भी एग्जैक्टली यही फीलिंग आई थी कि ये कोई एक्सीडेंटल चीज़ नहीं है, ये डेलिब्रेटली किया हुआ हिट था जो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और थैंक गॉड कि सिया ने तब 360 लगाया हुआ था तो वो सब कुछ कैमरे में कैद हो गया। जी भैया, एक बात और है यहाँ पर, JK आपके अपने एक्सपीरियंसेस कैसे रहे
4: एज अ फीमेल राइडर? ये तो साथ में है ही, मतलब एट द बैक ऑफ द माइंड वी नो कि दिस ईव टीजिंग एंड एवरीथिंग इज नेचुरल, मतलब है ही। वी हैव टू टेक केयर ऑफ आर सेल्फ, मतलब खुद ही करना पड़ेगा क्योंकि यार देखो, प्रॉब्लम हमारी नहीं है, किसी की भी नहीं है, प्रॉब्लम सिस्टम की है। जब सिस्टम ही करप्ट है तो ये चीज़ें तो होती रहेंगी ना। सिस्टम कुछ कर ही नहीं रहा है, इससे पहले भी इतने सीरियस केसेस हुए हैं, उसके बाद भी अगर चीज़ें ऐसे होती आ रही हैं और अभी भी होती रहेंगी तो फिर सारा फॉल्ट सिस्टम का ही है, हमारा इस पर कोई फॉल्ट नहीं है। हमारे लिए तो डर बैठ गया है। अब वो बच्ची जिस तरीके से गिरी है, कुछ भी हो सकता था, शी कुड हैव गॉट सिवियर इंजरीज, वो तो टच वुड शी गॉट सर्वाइव्ड फ्रॉम दैट, बट जो जिस तरीके से उस आदमी ने मारा है वो डेलिबरेटली, वो एक मेल ही हुआ है ना, वो साफ वही नज़र आ रही है कि लड़की रुकी कैसे नहीं या मेरी बात मानी कैसे नहीं, एंड विच इज़ नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। यार देखो, साफ सीधी बात है, आप किसी को कुछ भी नहीं कह सकते। आप कुछ जितना मर्जी गुस्सा आए, कुछ भी आए, अपने घर पे रखो, ठीक है? किसी को कोई राइट नहीं है किसी को मारने का या कुछ भी करने का। एंड दैट वॉज अ सीवियर क्राइम, मैन अटेम्प्ट टू मर्डर केस है, सीधा सीधा कैसे कर सकते हो आप?
0: बिल्कुल, तो जैसे JK कह रही है कि बिल्कुल खून खोल गया था, वो तस्वीरें जब आपने देखी, क्या पहला रिएक्शन था आपका और क्या लगा उस वक्त आपको, क्योंकि आप भी बहुत सालों से राइड कर रही है पवित्र, तो आप भी ऐसा कुछ फील करती होगी, फेस भी करती होगी?
5: देखिए, पहली बार देखते ही तो एक फीमेल राइडर को तो वही लगता है कि हम अगर उसकी जगह होते तो हमको भी सेम फील होता है। तो फर्स्टली तो एक बहुत खुंदक आई कि यू नो क्यों, कौन किसको जबरदस्ती ऐसे कैसे मार सकता है। लाइक यू नो, किसी को राइट नहीं है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो फॉर दैट मैटर। मगर एक जो कम्युनिटी होती है, बाइकिंग कम्युनिटी, हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं चाहे हम जानते हो नहीं जानते हो। तो उसके साथ जब हुआ तो मेरे को लग रहा है कि जब सेफ्टी की बात करें, प्रोटोकॉल वगैरह के हिसाब से बात करें, तो अगर आप अच्छे से भी राइड कर रहे हो और कहीं से कोई साइड से आके ऐसे मार के चले जाए, तो सेफ्टी तो कहीं भी नहीं है सिस्टम में, यू नो।
0: सो कभी एज अ फीमेल राइडर, आप भी बहुत सालों से राइड कर रही है, आपने भी अनसेफ फील किया है राइड करते वक्त? आप क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप सोलो राइड्स भी करती है।
5: हाँ एकदम। मैं एक बार याद है मेरे को, हम पहली राइड के लिए बहुत दूर गए थे खजुराहो, मेरा पहला राइड था और वो करीब 10 आवर्स का था। और मेरे लिए था कि ठीक है, यू नो चैलेंजिंग होता है बट कैसे रहेगा, बिकॉज ग्रुप के साथ जाते तो आपको लगता है ठीक है सब लोग हैं तो। बट एक स्ट्रेच आया था जहाँ पे मैं बहुत अकेली थी और सब लोग निकल गए थे। तो गिवन द सिचुएशन ना, आपको लगता है कि आप सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इतने बड़े हाईवे में, नॉट जस्ट एक्सीडेंट मतलब अदरवाइज ऑल्सो बींग अ वुमेन, हम इंडिया में सेफ तो वैसे ही फील नहीं करते, क्योंकि आई थिंक सिस्टम के साथ साथ हमें खुद भी, आप कितना भी आप स्ट्रांग रह लो, कॉन्फिडेंट रह लो कि हाँ आपके कनेक्शंस हैं, कुछ भी है, हाउ यू शो अप दैट ऑल्सो मैटर्स।
0: आप कोई अपना ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे जो आपने फेस किया हो, जब आपको वाकई में डर लगा हो, आपको लगा हो कि आज कुछ भी हो सकता था?
5: हाँ, तो एक बार क्या हुआ था, मैं इवनिंग में ऐसे ही निकल गई थी और मैंने गियर अप वगैरह कुछ नहीं करा था, क्योंकि हम जो लॉन्ग राइड्स के लिए जाते हैं तो गियर अप करते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो गियर अप एज बाइकर्स हमें इंपॉर्टेंट सेफ्टी के लिए होता ही है। बट कभी कभार जैसे शाम को निकल गए थोड़ा सा शॉर्ट राइड के लिए, तो मैं निकली थी, मेरे को याद है गुड़गांव इसी जगह पे गोल्फ कोर्स रोड पे ही, मेरे को याद है एक बंदे ने सेम चीज़ जो सिया के साथ हुआ, वो ही केम सो क्लोज विदाउट इंडिकेटर। तो मैंने कुछ नहीं करा, मैंने बस उसको बोला, जैसे वो आगे निकला आई स्टॉप माय बाइक उसके पास जाके मैंने बस उसको ये बोला, मैंने कहा आप इंडिकेटर दे सकते थे, बस इतना सा बोला मैंने। तो एक वो जो मेल ईगो होती है ना उसकी, वो इतनी हर्ट हो गई कि वो बंदा साइड में लगा के, और वो अपनी वाइफ के साथ था या गर्लफ्रेंड के साथ था, वो भी देख रही है। एंड यू नो व्हाट वाज अमेजिंग इज कि बीइंग अ फीमेल शी वाज नॉट स्पीकिंग अ वर्ड, वो कुछ ही नहीं बोल रही थी हमारे सपोर्ट में। वो बंदा बोल रहा है कि क्या करोगे, कर लो जो भी कुछ करना है। मैंने कहा अकड़ की बात नहीं है, आपको सिंपल सी चीज़ है, अगर आप इंडिकेटर दे देते तो हम भी सेफ्टी में है, ठीक है, आप चला रहे हो तो और भी चला रहे हो, सबकी रोड है ना ये। और मैं फिर वो मेरे को बोल रहा है आपको जो करना है कर लो, ऐसे मेरे को जो करना है कर लो तो नहीं, कर तो हम भी सकते हैं जो बहुत कुछ करना है, मगर जो गलत है है, और अगर नहीं चलानी आती ना तो घर पे बैठो, गाड़ी चलाने की जरूरत नहीं है। तो आई थिंक एज मच एज ये सब चीज़ें चलता रहेगा, अगर हम एज फीमेल स्टैंड नहीं लेंगे ना अपने लिए, और हमको ऐसा कॉन्फिडेंटली शो नहीं करेंगे ना कि यू नो कि जस्ट बिकॉज वो बोलेंगे तो हम लोग डोमिनेंट हो जाएंगे और हम लोग चुप हो जाएंगे, मेरे को हमारे की आवाज़ भी, क्योंकि मेरे को लगता है ऑफन एट टाइम्स हम लोग खुद इतना डर के रहते हैं ना कि यू नो अगर कुछ हो गया तो क्या हो गया, क्योंकि ये हमको बचपन से ही एक जो हम बैकग्राउंड से, देखो सबका एनवायरनमेंट अलग अलग होता है, तो मेरे को लगता है वो भी बहुत फ़र्क पड़ता है कि आप कैसे बैकग्राउंड से आए हो, आपकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है, कैसे आपको, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, तो मेरे तो बचपन से ही मैंने लड़कों के साथ खेला है, मैंने सब चीज़ लड़कों के साथ ही करी है। हाँ, मैंने ये जो फेस करा कि गर्ल्स अगेंस्ट बॉयज एंड ये सब चीज़ें, ये तो चलती रहेगी, ये इसमें कोई एंड नहीं है, मगर मेरे को लगता है हाउ यू शो अप ऑल्सो इवेंचुअली वो रिस्पेक्ट तब भी आ जाती है। तो कोई ऐसा नहीं है कि किसी का सबके अगेंस्ट होता है, बट हाँ जो गलत है वो तो है।
0: यहाँ पर इससे कहीं ना कहीं ये भी समझ में आता है, आप सब देख सकते हैं यहाँ पर कि हम लोग काफ़ी हैवी बाइक्स पर है चला रहे, तो ये ऑलरेडी चैलेंजिंग होता है हम लोगों के लिए, किस तरह की मशीन्स पर आप सेफ रहें, उसे अच्छे से चलाएं। लेकिन सबके बीच में जब सेफ्टी का इशू आ जाए या कोई मेन ईगो सामने आ जाए तो वो वाकई में बेहद परेशान करने वाला है कि इस चैलेंज को हम क्यों बेवजह झेल रहे हैं, क्यों नहीं लोग ये एक्सेप्ट कर लेते कि अगर हम चांद पर जा सकते हैं, अगर हम बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं, हम वैज्ञानिक बन सकते हैं, तो हम बाइक भी आसानी से चला सकते हैं। तो इस वक्त हम अपनी अपनी बाइक्स के साथ खड़े हुए हैं। अपनी बाइक के बारे में बताऊं, क्योंकि यहाँ पर बाइक्स के बारे में बात करना अब इसलिए ज़रूरी है, जिस तरह का इंसिडेंट हुआ है उसके लिए हम आपको बताएं। मेरी जो बाइक है ये हार्ले नाइटस्टर है, 250 किलो के आसपास का इसका वज़न है और ये आसान नहीं है इसको हैंडल करना, ये बैलेंसिंग होती है। मैं मुश्किल से 60 से 62 किलो के आसपास हूँ और इस बाइक को जब मैं चलाती हूँ तो सब सुनते हैं तो लगता है कि आप अपने से बहुत ज़्यादा 3 गुनी 4 गुनी ज़्यादा भारी बाइक को हैंडल कर रहे हैं, बट ये टेक्निक का काम होता है और बैलेंस का काम होता है। और साथ साथ जब आप अलर्ट होते हैं, आप फोकस्ड होते हैं, तो फिर ये मैटर नहीं करता कि आप कितने सीसी की बाइक चला रहे हैं।
3: ये मेरे पास भी मैट्योर 350 है, बट बाइक मैटर करता है, जितना हाई होगा उतना चलाने में मज़ा बढ़िया रहेगा। हम जो भारी हल्का ये मैटर यहाँ करता है, सोच हमारी सोच को मैटर करता है और जितनी भारी बाइक होती रोड को पकड़ के रखता है।
0: मैम एक्सेसरीज की भी यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर इस तरह से हम लोग अपने मोबाइल जो है वो माउंट कर लेते हैं, यहाँ से हम अपना नेविगेशन ऑन कर लेते हैं और जिसके चलते हम चला सकते हैं, देख सकते हैं, हम फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट्स भी होते हैं। इसके साथ ही आप ये देख सकते हैं ये 360 यहाँ पर लगा हुआ है। सिया का जो मामला हुआ उसको जब हमने देखा तो उसमें क्योंकि 360 लगा हुआ था इसीलिए वो आरोपी जो है वो काफ़ी ठीक से कैप्चर हुआ, उसकी जो गाड़ी का नंबर था वो ठीक से कैप्चर हुआ, जिसके चलते उसको आइडेंटिफाई करने में, गाड़ी के मालिक को आइडेंटिफाई करने में आसानी मिली। यहाँ पर हमारे साथ डुकाटी राइडर भी है, जेके।
6: हेलो,
0: फियरलेस राइडर है ये, मशहूर है ये। बताइए अपनी बाइक के बारे में।
6: सो ये डुकाटी की स्क्रैम्बलर 1100 है एंड स्टार्ट्स फ्रॉम 800 सीसी कैटेगरी, तो ये 1100 सीसी कैटेगरी में आ जाती है एंड इट्स अ रेट्रो स्टाइल, आप टूरिंग आराम से कर सकते।
0: राइडिंग आपके लिए क्या है?
3: मेडिटेशन, सिंपल मेडिटेशन, मेडिटेशन है। व्हेनेवर आई एम फीलिंग लोनली, रात को 2 बजे 3 बजे मैं निकल जाती हूँ।
0: और बड़ी बात ये है कि मैम 60 प्लस है जिया, यहाँ पे ये इंस्पिरेशन है हमें, हम मैम को देख के हमें ये लग रहा है, मैम आपको देख के देवी मैम ये हमें लग रहा है कि हमें ये सेज पर भी राइडिंग करनी है,
3: करनी है, मेरे को और करनी है
0: ना, आपको और करनी है। लेकिन जब आप इस तरह के इंसिडेंट सुनते हैं तो कहीं ना कहीं बड़ा दुख होता है कि इस मेंटालिटी के लोग अभी भी मौजूद हैं जिन्हें ये बर्दाश्त नहीं है कि लड़कियां इतनी बढ़िया बाइक्स चला रही हैं, इस तरह की प्रीमियम सुपर बाइक्स चला रही हैं। तो चलिए अब बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अगले स्टॉप पर चलते हैं। जो सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है, चर्चा में है, सिया, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम लेकर आएंगे। आप सिया आइए।
7: लाइक दिस
0: क्योंकि अब सिया चोटिल है तो इसलिए हम उन्हें ज़्यादा परेशान भी नहीं करना चाहते और अभी वो दोबारा बाइक पर बैठ भी पाएंगे। आप बैठिए प्लीज़ यहाँ पर। सिया सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे आप कैसी हैं?
7: अभी कुछ चोटें हैं, जैसे स्पेशली माय लेफ्ट लेग, जिससे मुझे थोड़ा अभी चलने में दिक्कत है एंड जिस तरीके से आई फेल ऑन अ रोड तो देयर इज अ इम्पैक्ट ऑन माय होल बॉडी, माय नेक, बैक एंड स्पेशली पेल्विस एरिया। सो आई एम स्टिल रिकवरिंग फिजिकली एंड आई डोंट नो व्हेन आई विल बी लाइक मेंटली free from that incident.
0: I understand. पर जब आप गाड़ी चला रही थी और जब वो शख्स आपके पास आया था तब पहली बातचीत क्या हुई थी आप दोनों की?
7: लाइक द फर्स्ट इनकाउंटर, वो जब मेरे साइड में आए, द थिंग दैट कि वो उन्होंने पहले थम्स अप दिखाया, यूजुअली पीपल डू व्हेन दे सी अस,
0: राइट?
7: सो माय फर्स्ट रिएक्शन वाज लाइक थैंक यू एंड व्हेन दे वर ट्राइंग टू स्टॉप मी द गाय हु वाज सिटिंग बिसाइड हिम they were doing same actions and they were like something like I want to come near to you, that's it, yeah, aage ruko, something like that. And wo sai pass apni gaadi leke aa rahe us time pe mujhe bahut zyada dar lag gaya ki like gaadi mein char ladke hain and wo pass mein aa rahe hain rukne ke liye bol rahe hain what's the intention. मुझे ऐसा लगता है कि वी ऑल नो व्हाट्स द बैड इंटेंशन व्हाट्स द गुड इंटेंशन व्हेन वी राइड ऑन अ रोड.
8: बिल्कुल.
7: सो आई फेल्ट दैट देयर इज सम बैड इंटेंशन एंड आई गॉट स्कैर्ड प्लस आई वाज ऑन अ मोटरसाइकिल एंड देयर वर फोर गाइज इन अ कार एंड वो पास आ रहे हैं तो फर्स्ट थिंग क्लिक इन माई माइंड कि मैं तेज चलाती हूँ आगे जाती हूँ वो यूजुअली पीछे हो जाएंगे.
8: मतलब आप थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना चाह रहे थे कि उनसे दूर हो जाएंगे तो शायद वो चले जाएं.
7: इवन मैंने उनको उस टाइम पे भी एक्शन करा कि आप दूर हो जाओ कि मतलब पास आओगे तो ऑब्वियसली मेरे को कुछ हो सकता है या मैं गिर सकती हूँ या मैं डिवाइडर में अंदर जा सकती हूँ. जब मुझे रियलाइज हुआ कि वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं देन मेरा फर्स्ट रिएक्शन ये था कि मैं थोड़ा स्पीड अप करती हूँ आगे जाऊंगी. तीन चार गाड़ियाँ आगे होंगी तो वो कितना चेस करेंगे. और मुझे लगा कि उनको पता चलेगा कि दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू देम और कि मुझे अकेला छोड़ दो तो वो रुक जाएंगे ऐसा कुछ. पर जब वो जब मैंने अपने साइड मिरर में देखा वो कंटिन्यूसली चेस करने की कोशिश कर रहे हैं एंड वो मतलब एकदम साथ साथ मेरे साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं और ज़्यादा डर गई. तो मैं बस ये कोशिश कर रही थी कि मैं ये रोड मतलब गोल्फ कोर्स वाला जो रोड है रेड लाइट से राइट ले लूँ बस एक बार. आई जस्ट एग्जिट दिस रोड एज सून एज पॉसिबल. पर वही मेट्रो स्टेशन के नीचे एक गाड़ी यू टर्न करके मिड लेन में आती है and I have to stop there, I have to slow down my speed.
8: Right.
7: And उसके बाद I was in a third lane and I was like around 40 की speed में या 35 ऐसे जो भी जब भी हम slow down हो जाते हैं then suddenly like in few seconds मुझे इतना time ही मिला कि मैं अपने mirror में भी देखूँ and और ये मुझे expected भी नहीं था कि कोई इतना कर सकता है.
8: बिल्कुल.
7: The last thing people can do is chase you, can pass comments to you, do actions with us. यही होता है.
8: बिल्कुल.
7: तो last हमें लगता है कि वो चले जाएंगे, कोई मार के नहीं जाएगा. That was so unexpected incident. वो few second में आया, मुझे realize नहीं हुआ. And the like next second I find myself on the road कि मैं बस गिर गई हूँ और मुझे कुछ realize नहीं होता कि क्या हुआ है मेरे साथ.
3: फिर वो बंदा गाड़ी लेके आया और पर्पस भी सिया को हीट किया और द मोमेंट हिट किया ये गिरी गिर के ये पीछे इसकी बाइक गई और ये लुढ़कती लुढ़कती गई.
8: बिल्कुल.
3: और वो मार के भाग गया. आई हैव सीन पूरा वीडियो मैंने.
8: बिल्कुल. और वो हम सब ने
9: सारे एंगल
8: कई बार देखा.
9: बिल्कुल. डेलिब्रेटली बहुत गंदे तरीके से इसको हिट किया और वो भागा है.
8: बिल्कुल.
9: एंड ही वाज नॉट इवन वरीड. रुका नहीं, देखा नहीं, समझा नहीं. इट वाज इंटेंशनल. ऑफ कोर्स.
5: अगर इतना ही वरीड होता और अगर इंटेंशनल नहीं होता तो भागता भी नहीं. तो अगर गलती करेगा तभी तो भाग रहा है ना वो. नहीं तो वो रुक के कर्टेसी होती है कि उसके घर में भी बहन माँ होंगी ना सबके घर में. तो अगर खुद की बहन या किसी के साथ होता तो शायद नहीं पता चलता जस्ट बिकॉज वो कोई और लड़की थी. अगर वो भी तो किसी की बेटी है किसी की कुछ लगती है ना.
8: मतलब इंसानियत के नाते ही आप रुक जाते.
5: अगर आप रुक सकते थे तो कर ही सकते थे मगर नहीं वो भाग गया. तो भाग गया वो क्लियरली इंटेंशनल था वो प्रूव हो चुका है उसमें.
8: बिल्कुल. वो और सबसे अच्छी बात ये रही कि आपके पास कैमरा था 360 आपने ऑन किया हुआ था. लेकिन सिया हम सब उस वक्त वो जब फुटेज देख रहे थे हम सब वरिड थे क्योंकि आपने जैकेट नहीं डाला हुआ था. तो हम लोगों को वाकई में बहुत टेंशन हुआ. हमने टीवी पर भी ये चर्चा है कि जो भी बाइकर्स आई कि वी वर जस्ट होपिंग यू नो कि कोई ऐसी इंजरी ना हो जाए जो आपको लाइफ टाइम के लिए परेशान कर दे. वो कर दे. डू यू फील देयर वाज अ मिस्टेक वहां पे. आई
7: एग्री जो आप कह रहे हो अबाउट द गियर्स. सो उस टाइम पे आई हैड माय राइडिंग शूज एंड माय ग्लव्स जिससे मेरा रेस्ट प्रोटेक्ट हुआ मेरा एंकल प्रोटेक्ट हुआ एंड आई हैव लाइक राइडिंग जैकेट मेरे पास रिविट का जैकेट है. एंड लाइक सीजन की वजह से कि थोड़ा बहुत गर्मी हो रहा है सो प्लस इवन आई वॉज नॉट वेल फ्रॉम पास्ट लाइक टू वीक्स, तो मेरे को वो घबराहट हो रही थी. सो आई वॉज दैट टाइम आई डिसाइडेड कि लेट्स नॉट वेयर जैकेट, मैं ज्यादा तेज नहीं चलाऊंगी, मैं अपनी लेन में रहूंगी. ठीक है, दैट वॉज माई माइंड सेट एंड आई अग्री दैट इट वॉज माई मिस्टेक दैट दैट डे आई वॉज नॉट वेयरिंग द जैकेट. आई अग्री कि वो उस दिन मुझे जैकेट पहनना चाहिए था, बट मुझे ये लगा एंड मुझे ये चीज उस दिन रियलाइज हुई कि बेशक आप ये जितना भी ट्राई करो कि आप सेफली चलोगे, आप अपनी लेन में चलोगे, आप अपनी स्पीड लिमिट मेंटेन करोगे, बट यू डोंट नो कि दूसरा वाला जो आपके साथ चल रहा है उसका क्या इंटेंशन है.
4: सो वी एंड स्पेशली फॉर द वुमन,
7: यस,
4: इफ वी आर इवन राइडिंग अ स्कूटी, आप टीजिंग है ही, आपको फॉलो करेंगे करेंगे, आपको परेशान करेंगे करेंगे, जान मूझ के करेंगे ताकि हम या तो गिर जाए या रुक जाए, और रुक जाए तो वो आगे हमारे को छेड़े या कुछ भी करे. सो ये मेंटेलिटी जो है ना, ये इसीलिए है क्योंकि हमारा लॉ इज नॉट वोटिंग फॉर
7: दैट. यस एक्चुअली
8: जी हाँ, ये आप भी फील करती हैं कि अगर कानून सख्ती से अपना काम करता तो लोग इस तरह की हरकतें करने से डरते.
5: डेफिनेटली डेफिनेटली, अभी मैंने बोला स्कूटी, मैं तो बोलती हूँ कि आप नॉर्मल रोड पे चल रहे हो तब भी ऐसा है, तब भी ऐसा है, आपको हिट करके चले जाएंगे, आपको टीज करके चले जाएंगे. मैंने बहुत सारे केसेस सुने हैं, आपका दुपट्टा खींच देंगे, रोल करते हुए चले जाएंगे, यू नो वो रोल कर रही है,
4: बचपन से हो रहा है. आई वाज लिटिल गर्ल, इतनी इतनी सी थी, एक लड़का आता है वो ब्रेस्ट पे हाथ मार के चला जाता है, एक आ रहा है वो इतने गंदे गंदे कमेंट्स गली में, आप अपनी घर की गली में ही हो जा रहे हो, इतना मतलब बचपन से वो हम स्केर्ड है ना, मतलब वो और उस पे इतना ज्यादा डर था. वो बंदा कम से कम, दो ऐसे जो ई टीजर्स थे मेरे कॉलोनी में घूमे थे, कम से कम वो महीने में चार से पांच बार चक्कर जरूर लगाते लगाते, एंड मैं इतना डर के रह रही थी ना, मुझे पता है. बट अब बड़े हो गए हैं तो चीजें थोड़ी एडवांस हो चुकी है, हमारे को भी डर का जो वो खौफ जो है वो निकल चुका है,
8: ठीक है.
4: बट स्टिल हम नहीं डरते, बट स्टिल कहीं ना कहीं वी आर विमेन.
8: बिल्कुल बिल्कुल,
4: हम क्या ही कर लेंगे, कोई एक लड़का भी आगे हमारा हाथ पकड़ लिया कुछ ऐसे करते.
8: घर वालों का पहला रिएक्शन क्या था, क्योंकि सबसे पहले माँ बाप इस बात से ही डरते हैं कि मत चलाओ बाइक, शुरुआत में सबको एक डर होता है जब लड़कियां बाइक चलाती हैं. आपने भी, हमने भी, सबने ये एक थोड़ा सा एक हेजिटेशन पेरेंट्स में महसूस किया है. जब ये हादसा हुआ तो किसी ने बोला कि यार अब मत चलाना, अब हमको डर बैठ गया.
7: बेसिकली जब ये इंसिडेंट हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैंने अप्रीलिया ली थी तो मेरे डैड का यही एक क्वेश्चन था कि इतनी सीसी की बाइक तुम दिल्ली के रोडों पे कैसे चलाओगे, लाइक ये कोई ऐसे रोड नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ढंग के रोड्स ही नहीं है, तो तुम कहाँ इतनी सीसी की बाइक लेके जाओगे. उनका तो पहला यही क्वेश्चन था जब उन्होंने देखा कि मैंने एक स्पोर्ट्स बाइक ली है.
8: अप्रिलिया R457 450 सीसी की बाइक होती है और करीब 195 किलो की ये बाइक होती है, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक स्पोर्ट्स एडवेंचर काइंड ऑफ अ बाइक है जो सिया चला रही थी. तो यहाँ पर यह भी साबित होता है कि दुबले पतले होने से, हैवी होने से मशीन नहीं चलती, मशीन दिमाग से चलती है, आपकी टेक्निक से चलती है, आपके तरीकों से चलती है कि आपको वो चलाना आना चाहिए. और भले ही सिया ने जैकेट नहीं पहनी थी लेकिन वो जो बाकी के रूल्स थे, नॉर्म्स थे, उनका वो पालन कर रही थी. और शायद नेक्स्ट टाइम सिया आप अब कभी जिंदगी में बिना जैकेट के या बिना राइडिंग गियर्स के नहीं जाएंगे.
7: बिल्कुल भी नहीं. मैंने एक लेसन मैंने खुद सीखा है कि बेशक मैं कितना भी सेफ चला लूं, बट डोंट ट्रस्ट समवन जो और रोड पे चल रहे हैं आपके साथ.
8: ठीक है,
7: वो कुछ भी कर सकते हैं.
8: लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों से ये भी समझना चाह रही हूँ कि ऐसी सिचुएशन में कई बार लगता है कि आप लड़ लो, कई बार लगता है कि आप क्या करो. मैम आप इतने सालों से, इतने डेकेड से आप बाइक चला रही है, मुझे ये भी आप लोगों को मैसेज देना है जो फीमेल राइडर्स हैं या जो मेल राइडर्स भी हैं कि जब

0: तब वो चेस करते हैं, अच्छा भाई ठीक है तेरे को हम दिखाते हैं टाइप्स,
1: ठीक है। लेकिन जी आपसे मैं समझना चाहूंगी, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि रुकना भी सेफ नहीं लगता, इट्स नॉट नेसेसरी कि ऑल द टाइम यू आर स्टॉपिंग एंड यू विल बी सेव्ड, इट्स नॉट लाइक दैट, देन क्या करना चाहिए?
2: ठीक है, मेरे को ऐसा लगता है कि शांत होइए, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि मेरे साथ वो हुआ है, थैंक गॉड अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, आई गॉट ऑनली एप्रिसिएशन, मुझे अच्छे लोग मिले, लेकिन अगर ऐसा होता है ठीक है आप साइड पे लगाइए बाइक, बट अपने अगल बगल कौन है वो भी देखिए, आप एक सुनसान जगह पे जा रही हूँ मैं कभी आपको सजेस्ट नहीं करूंगी वहां रुक जाइए, चार लोग थे सिया ने बताया, कुछ भी हो सकता था, हम रोज सुनते हैं
1: बिल्कुल
2: ठीक है, तो वहां मैं अगर ये अकेली कहीं जा रही होती तो मैं कभी इसको सलाह नहीं देती कि रुको, आप अपने हिसाब से अपने गियर्स पहनो, अपना पूरा सेफ्टी का ध्यान रखो और जितना हो सकता है अपने आप को बचाओ
1: जी,
2: दोनों तरीके से बाइकिंग से भी वैसे भी, यू नो द सिचुएशन आजकल चल रहा है
1: जी के, क्योंकि चैलेंजेस लड़कियां बहुत ज्यादा फेस कर रही हैं और सेफ्टी इशू, अब जब सिया का मामला आया तो कितनी सारी राइडर्स ने आके बताया कि क्या क्या हुआ है, गालियां बककर जा रहे हैं, हिट करके जा रहे हैं, कट मार के जा रहे हैं, वही जो ईगो की बात आई कि अगर लड़की ने स्पीड अप कर दिया है, लड़की आपसे थोड़ा सा आगे भी बढ़ गई है, वो भी लोगों को बर्दाश्त नहीं होता, जबकि आप जानते भी नहीं है एक दूसरे को, वो अपनी राइड कर रही है, वो अपनी आप अपनी गाड़ी चला रहे, कोई किसी से कम्पीट नहीं कर रहा है, खासकर हम जो राइडर्स हैं हम अपना एंजॉय करने के लिए, हम अपनी आजादी को एंजॉय करने के लिए बाइक चलाते हैं, हमें किसी को शो ऑफ नहीं करना है यहाँ पर,
3: एग्जैक्टली प्रॉब्लम ना एक्चुअली सारी लॉ की है,
1: हाँ।
3: अगर लॉ स्ट्रिक्ट हो जाए ना तो ये जो मेल ईगो है और इस तरीके की जो चीजें चल रही हैं, इतने ज्यादा क्राइम चल रहे हैं, ये सब बंद हो सकते हैं एक सेकंड में, बंद हो सकते हैं, पर नहीं, क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि लॉ स्ट्रिक्ट नहीं है, इट्स नॉट अबाउट इवन बाइक्स, अगर आप नॉर्मल चल भी रहे हो तो आप सेफ हो ही नहीं, ये जो मेल ईगो है ना एक, ये सबसे बड़ा गुनाह है, ये जो मेल ईगो जो किसको आप सही कर सकते हो, ये घर से ही होता है शुरू, जब घर में ही बाप दादा को आप मेल ईगो के साथ देख रहे हो, सब कुछ है, अगर उस चीज को बढ़ावती दी जा रही है तो मेल ईगो कहाँ जाएगी, वो तो और उत्पन्न होगी और बढ़ेगी और बढ़ती रहेगी, जितनी जनरेशन जाती रहेगी उनमें भी और बढ़ती रहेगी, मेल ईगो इज द कॉज, क्योंकि मेल ईगो के चक्कर में मैं खुद एक अटेम्प्ट टू मर्डर केस की विक्टिम हूं, जो मेरा केस अभी तक चल रहा है, 2019 में हुआ था एंड इट वाज फॉर की एक लड़की को मैंने मना कर दिया जिसको मैं शादी के लिए देख लेती, वो शादी नहीं कर सकती, तो उसने मेल ईगो के चक्कर में आगे मेरे स्टमक में चाकू मारे एक नहीं 6-7 बार,
1: माय गॉड
3: जी, सो मैं बता रही हूँ ये मेल ईगो कितना बड़ा प्रॉब्लम है, अगर बंदा अगर एक मेल अपनी ईगो में आता है तो क्या क्या कर जाता है, प्रॉब्लम क्या है, किसके लिए है? हमारे लिए है, एंड कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि हम इतने ज्यादा हेल्पलेस होते हैं, हम कुछ कर ही नहीं पाते यार,
1: देखिए यू गिव मी अ हग, यू हैव बीन थ्रू,
3: सीरियसली
1: रियली प्राउड ऑफ यू, वी ऑल आर प्राउड ऑफ यू रियली, और यहाँ पर देखिए जिस बच्ची का जिक्र जेके कर रही है, हमारे साथ यहाँ पर माँ बेटी भी है, बहुत खूबसूरत ये तस्वीर देखने को मिल रही है, कहाँ हम ये बात कर रहे हैं कि एक्सेप्टेंस नहीं है, और कहाँ देखिए एक नई राइडर भी भविष्य की यहाँ पर तैयार होती हुई नजर आ रही है, मैम क्या नाम है आपका?
4: सुषमा।
1: सुषमा आपका नाम क्या है बेटा?
4: रिद्धि।
1: रिद्धि आपको बाइक चलाना है बड़े होके? क्यों चलाना है? मम्मा की तरह बनना है, देखिए देखिए कितना बड़ा एग्जाम्पल है यहाँ पर, कहाँ हम पहुंच गए हैं और अभी भी कुछ लोग कहाँ रुके हुए हैं, अभी भी वो उन बेड़ियों में ही लड़कियों को जकड़ना चाहते हैं जिनसे हम बहुत पहले खुद को आजाद कर चुके हैं, ये शायद बहुत जल्दी समझना होगा। सुषमा जी आप सिया के सामने हैं, आप शायद आपने भी देखा होगा और हम सब परेशान हुए होंगे, क्या आप सिया से कहना चाहती है, क्या आपके मन में आया उन तस्वीरों को देखकर, आपकी आंखों में आंसू में मैं अभी देख रही हूँ।
5: एक्चुअली होता रहता है हम लोगों के साथ, नॉर्मली होता है तो मैं तो खुद एक ग्रुप राइन रन कर रही हूँ, तो लड़के जितने भी पास ऑन करते हैं तो वो ऐसे करते रहते हैं, तो अभी मेरी रिसेंटली फ्रेंड का भी एक्सीडेंट हुआ था, वो मुंबई में है, तो बस उनको देख के मुझे थोड़ा सा रहता है, तो जब लड़के होते हैं ना वो ऐसी चीजें करते रहते हैं, हम बाइक चलाने में, मैं अपनी बेटी को चाहती हूँ बाइक चलाने देना, बट ये जो इंसिडेंट्स होते हैं ना उसको देख के लगता है कि हाथ पैर तुड़वाने से अच्छा घर बैठे बढ़िया
1: सेफ रहे
5: बढ़िया, बट लेकिन मैं इसको चाहती हूँ अपने पैरों पर खड़ी हो कुछ हो, तो बस मैं सिया को यही कहती हूँ कि वो मेरी फ्रेंड की तो लेग पूरी टूट चुकी है, उसके 3-4 एक्सीडेंट हो ऑपरेशन हो चुके हैं, और पूरा मतलब उसका स्किन इधर से उतार के उधर लगाया है, तो टच वुड मैं सिया को देख के बहुत खुश हूँ कि वो बिल्कुल ठीक, मतलब मेरी फ्रेंड,
1: और इसीलिए सिया को हम देख रहे हैं लगातार, वो चोटिल है, वो दर्द में है, बावजूद उसके वो आ रही है, क्योंकि वो ये चाहती है, सिया ये चाहती है कि जो दूसरी फीमेल राइडर

0: है वो सिया के केस को देख के घर ना बैठ जाएं, वो डर ना जाएं, और इसीलिए सिया लगातार इस लड़ाई को लड़ रही है। सिया, ये भी मैं आपसे समझना चाहूंगी कि अभी जिस तरह से केस आगे बढ़ रहा है, हमने देखा पहले तो आरोपी किस तरह से फरार था, उसे पकड़ने में बहुत वक्त लग गया, जिसने कहीं ना कहीं हम सबको निराश किया। सिस्टम को लेकर हमारे भीतर नाराजगी थी कि इतना वक्त कैसे लग सकता है किसी एक दिल्ली NCR के इंसान को पकड़ने के लिए। क्या फीलिंग आ रही थी आपको, कहीं हेल्पलेसनेस लगने लगी थी
1: उस टाइम पे? जब बेसिकली जब इतना सब वो वीडियो वायरल हुआ, न्यूज़ पे चला, एंड उसके बाद जो है लड़के, मैं उनका वो न्यूज़ चैनल पे उनकी स्टेटमेंट सुनती हूँ कि वो सामने आके अपने लिए जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। मतलब हाउ समवन कैन गिव दिस काइंड ऑफ जस्टिफिकेशन कि आप इतना कुछ करके वहां से भाग गए। फर्स्ट ऑफ ऑल उनको इतना टाइम कैसे मिल रहा है कि वो जस्टिफिकेशन दे रहे हैं? लाइक डिपार्टमेंट एंड द सिस्टम हैज एवरी ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन अबाउट हिम, द नंबर ऑफ कार, और स्टिल वो मीडिया पे आके जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। सी, हम मतलब इमिडिएट एक्शन नहीं होता तभी एक वो चीज और वो डर नहीं है किसी में। और हमारे साथ जैसे जो हुआ है, जैसे आपने बताया एंड यू टोल्ड अस अबाउट योर फ्रेंड, क्योंकि वो उनमें डर नहीं है, एंड शायद से जब एक्शन होगा या पता चलेगा कि भाई ये चीज करने की इतनी साल की सजा है, तो इंसान सोचेगा 10 बार कि भाई मत करो, कैमरा है, कुछ भी हो सकता है। अगर हम अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं तो वो इंसान सोचेगा 10 बार वो इंसिडेंट करने से पहले, बिकॉज वो स्ट्रिक्ट एक्शन और वो डर नहीं
2: है। एक एक्शन और लेना चाहिए जो मुझे लगता है, इन जो ऐसे करते हैं, इनके माँ बाप चाहे कितने भी बूढ़े हो, चाहे कुछ भी हो, इनको भी कोर्ट में खींचना चाहिए।
0: देखिए, वो कहा जाता है ना कि एक पुरुष पढ़ता है तो सिर्फ पुरुष पढ़ता है, लेकिन जब एक महिला पढ़ती है ना तो एक पूरी पीढ़ी जो है ना वो एजुकेट करती है। तो ये फर्क है, ये फर्क है महिलाओं के होने का और महिलाओं के आगे बढ़ने का, और इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। आपने जब इन महिलाओं को आप सुन रहे हैं, ये कंडीशनिंग की बात है, बचपन से किस तरह से सिखाया जाता है, जो लड़के लड़कियों में फर्क किया जाता है, जब तक वो दूर नहीं होगा तब तक ये जो अलग भावना से देखने की जो रीत चली आ रही है ना लड़कियों को, वो खत्म नहीं होगी। 21वीं सदी में अगर सिया ये झेल रही है तो ये हम सबके लिए एक समाज के तौर पर, एक देश के तौर पर भी शर्म की बात है। सिया, आपको क्या लगा कंडीशनिंग की बात जो हम लोग कर रहे हैं कि अभी भी यहाँ पर बहुत जरूरत है लोगों को
1: बहुत
0: अपने अपनी विचार बदलने की, अपनी मानसिकता बदलने की?
1: बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे अभी 1-2 दिन से मैं खुद ये चीज देख रही हूँ कि कैसे लोग अब उनके सपोर्ट में आके बोल रहे हैं कि सर वो तो आप पलवल गांव में आके देखिए, उनको कितना लोग जानते हैं, उनका कैसा नेचर है। इनफैक्ट कल ही मैंने एक मतलब 3-4 लड़कियों का भी मैंने स्टेटमेंट सुना है कि वो कह रही हैं कि वो तो ऐसा कर ही नहीं सकते, आपने तो उनको क्रिमिनल बना दिया। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि आप वो कह रहे हैं कि मैं विक्टिम कार्ड प्ले कर रही हूँ या वो गलती से हो गया, मतलब ये सोचिए कि उनके साथ के जो उनके लोग हैं वो इस चीज का भी नहीं सोच रहे हैं कि वॉट इफ अगर मैं उस टाइम पे मर जाती। बीइंग अ गर्ल, अगर ये चीज आपके साथ होती, आप तो पलवल गांव में रहते हो, बीइंग अ गर्ल ये चीज अगर आपके साथ होती, या जो लड़के वहां खड़े हो रहे हैं उनकी बहन होती, या जो मतलब बूढ़े लोग हो रहे हैं उनकी बेटी होती, क्या आप उस टाइम पे भी यही स्टेटमेंट देते? अगर आज भगवान की दुआ से मैं बच गई हूँ, अगर मैं मर जाती,
3: जिस तरीके से उस आदमी ने,
1: एब्सोल्युटली अगर मैं मर जाती तो आपका स्टेटमेंट यही होता कि मैं विक्टिम कार्ड प्ले कर रही हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं झूठ बोल रही हूँ, आपने हमारे सर को फंसाने की कोशिश करी है।
2: आप एक चीज को नोटिस करना, जिस घर से ऐसे लड़के आते हैं उनके घर के लड़कियां को घर से निकलने नहीं दिया जाता है।
1: देखो, इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि कैसे आप उनको बड़ा करते हैं, क्या विचार देते हैं, क्या संस्कार देते हैं। ऑब्वियसली एंड मेरे घर में मुझे तो स्टार्टिंग से एक बेटे की तरह ट्रीट करा गया है, तो मैं मतलब एक लड़का लड़की सेम है, अगर जो मेरा भाई कर सकता है वो मैं भी कर सकती हूँ, तो कोई डिस्क्रिमिनेशन कोई मैंने कभी जिंदगी में फेस ही नहीं करा। तो ये हर एक अपनी अलग अलग घर की सोच की वो है, अगर जैसी आपकी मेंटालिटी होगी वैसी होगी। अगर शायद से वो लड़की की परवरिश ऐसी होती कि अगर मैं लड़का हूँ तो वो भी कर सकती है, तो शायद से वो इतना थॉट नहीं लेता कि वो लड़की बाइक चला रही है।
4: मेबी उन्होंने फर्स्ट टाइम ही देखा, उन्होंने फर्स्ट टाइम देखा और उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ या झेल ही नहीं पाए।
0: तो उस दिन गोल्फ कोर्स रोड पर जो हुआ, अगर उस स्थिति को, उस सिनेरियो को हम समझने की कोशिश करें, सिया इस तरह से जा रही थी, अचानक से यहाँ से एक बाइक आती है, उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि सिया का जो एंगल था वो जिस तरह से गिरी है, बाइक थैंकफुली बहुत दूर चली गई उनसे और सिया बिल्कुल ज़मीन पे गिर गई हैं। उसके बाद उनका हाथ, उनका पैर सब कुछ टिका है। इसमें अगर हम इंजरीज की बात करें, उनकी हाथ की जो कलाई की बोन है वो टूट सकती थी, उनकी एल्बो टूट सकती थी, उनका शोल्डर जा सकता था, उनकी टेल बोन, उनकी हिप बोन, ऐसी कई चीज़ें थी जो सिया को चोट लग सकती थी। इस सबसे ज़्यादा बड़ी बात ये भी है कि अगर पीछे से कोई गाड़ी आ रही होती तब क्या होता, सिया उसकी चपेट में भी आ सकती थी। ये इतना बड़ा हादसा हो सकता था, ये जानलेवा हो सकता था। अगर बाइक आगे नहीं जाती तो सिया बाइक के नीचे भी आ सकती थी। तो यहाँ पर पवित्र, जो सिनेरियो हमने देखा, जो स्थिति आपने देखी, आसान नहीं थी वो स्थिति, किस्मत अच्छी थी सिया की।
5: एकदम सही, एकदम सही। मेरे को वही लगा पहले देख के, जो वीडियो को देख के तो लगा कि बस सबसे पहले थैंक यू गॉड कि बच गई वो, क्योंकि यूजुअली जितना इंटेंसिटी से गिरी थी और बाइक इतना दूर गई है जिस हिसाब से वो पूरा स्किट कर रही है, इसमें बचना तो ना के बराबर। विदाउट द जैकेट इंजरीज तो मैंने बहुत राइडर्स का देखा भी है कि बैक, क्या बैक, हिप, नीज, एंकल सभी चला जाता है।
1: यस, जिस तरीके से वो गिरी थी, जो एंगल था, सबसे ज़्यादा जो इसको नुकसान पहुंच सकता था वो था सारा हमारा चेस्ट एरिया, स्टमक, द होल। और बताए क्या है, मैं खुद गिरी हूँ तो मैं आपको बता सकती हूँ, हमारे यहाँ पे बहुत फाइन नर्व होती है, अगर वो कट जाए तो आपका हाथ भी चलना बंद हो सकता है। तो वो जिस हिसाब से बची है, शी इज़ वेरी लकी।
0: बिल्कुल सिया, जब आप ये सब रिएक्शन सुन रही हैं, क्या है मन में?
1: मतलब जो सब कह रहे हैं ऑब्वियसली वो सच है, और सबसे बड़ी चीज़ दैट आई वॉज लकी, एंड द वन थिंग आई ऑलवेज डू, आई ऑलवेज कैरी अ रुद्राक्ष इन माय टर्टल बैग, ऑलवेज व्हेन आई राइड, जस्ट फॉर द प्रोटेक्शन। द ओनली एंड थिंग इज गॉड कैन सेव यू, एंड सेम थिंग हैपेंड विद मी। एंड जो हम इंसिडेंट बता रहे हैं ऑब्वियसली वो हो सकता था अगर मैं बाइक के साथ होती, जैसे मेरा नीचे का वो रेयर ब्रेक का वो बाहर निकला हुआ था, जिसकी वजह से पूरी चिंगारी निकली और वो पूरा टूट गया। सपोज मेरा लेग उसी में होता, मेरा पूरा नी ब्रेक हो जाता, मेरा राइट लेग जा सकता।
0: आप इस तरफ आ जाइए जी, तो मैम आप इस तरफ आ जाइए। हाँ,
1: लाइक एंड ऑल्सो वन थिंग, जो इनके पास टर्टल बैग है, आई वॉज हैविंग माई टर्टल बैग ऑन दिस थाई, उसके बाद भी आई हैड सो मच ऑफ इम्पैक्ट ऑन माई दिस थाई एंड especially this area. इतना होने के बाद उसमें काफी सामान था जो मैंने घर पे जाके रियलाइज किया कि जब वो फटा कि मेरी that thing protected my thigh.
6: गियर्स का काम होता है आपको ये जो bruises होते हैं ना उनसे बचाना, आपकी जो स्किन छिलती है गियर्स उसको सबसे ज्यादा बचाते हैं। बट अगर आप गिर रहे हो और वो जो एक धक्का लगता है हड्डी पे, जो बोन पे आता है, वो तो आएगा ही आएगा, वो गियर्स ही प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। बट गियर्स का मतलब ये होता है कि वो आपको bruises और कई बार मैसिव जो होता है उससे भी बचा लेते हैं। मैं कितनी बार गिरी हूँ, मैं उठी हूँ, मैंने बाइक उठाई और मैं निकल गई। And it is all because of the gears. कुछ नहीं होता।
0: तो ऐसे में हम यहाँ पर यही सजेस्ट कर रहे हैं हम सब कि अगर ऐसी सिचुएशन आए, सिया ने कोशिश की डिस्टेंस मेंटेन करने की, वही होता अगर वो उस आरोपी का ये इंटेंशन नहीं होता तो सिया आराम से आगे बढ़ चुकी थी, वो डिस्टेंस मेंटेन कर चुकी थी, वो बात वही खत्म हो जाती। उस आरोपी का क्योंकि ईगो हर्ट हुआ था, उसका इंटेंशन खराब था, उसने आके सिया को हिट किया। लेकिन सिया, एक जल्दी से यहाँ पर क्विकली मैं आपका ये जानना चाहूंगी, हम सब बाइक लवर्स हैं, हम सब बाइक राइडर्स हैं, बाइक कैसी है भाई?
1: बाइक में तो खर्चा आया है बहुत।
6: कोई बात नहीं, बाइक दोबारा से वैसी होती
0: है। लेकिन देखिए, आप ठीक है ना? आप ठीक है? चलो जल्दी से क्विक रिएक्शन
6: हो जाता है, इंसान में ऐसा नहीं होता।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जल्दी से मैं आपसे बहुत क्विक रिएक्शन चाहूंगी, क्या ऐसे हादसों से हमें डरने की जरूरत है? एक एक लाइन आप सबसे मुझे चाहिए।
6: नहीं, हमें डरने की जरूरत नहीं है, बस लॉ ठीक हो जाए और जितने भी ये मेल ईगो वाले हैं ना, ये सब डर जाए।
0: पवित्र,
7: मेरे को लगता है शो ऑफ करते रहो, चाहे कुछ भी हो, कितनी बार गिरो उठो। हम स्पोर्ट्स पर्सन भी रह जाए, मैं स्पोर्ट्स पर्सन मायसेल्फ, बहुत चीजें हुई है, बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन, ये सब चीजें चलती रहेगी। जिस दिन हमने स्टॉप कर दिया ना, आई थिंक उनको एनकरेजमेंट मिल जाएगा कि करते रहेंगे। तो आई थिंक हमको खड़े होकर, वी जस्ट शुड जस्ट गो फॉर इट, कुछ भी हो।
8: डेफिनेटली वी शुड नॉट यू नो गेट अफ्रेड ऑफ एनी थिंग, हमें बिल्कुल राइड करना चाहिए। मैं तो कहती हूँ वीकडे पे भी करो, वीकेंड्स पे भी करो, ठीक है, और इनसे नहीं डरना है, हमें करते रहना है, जैसा मैंने बताया स्टे काम, वाइजली डिसीजन लो वहां क्या करना है, लेकिन रुकना तो बनता ही नहीं है ना
0: मैम।
9: मैं चाहती हूँ कि सारी फीमेल्स बाइक चलाने लग जाएं ताकि

0: चीज नॉर्मल हो जाए और वो एक्सेप्ट कर ले और हमको नॉर्मली बिहेव करने दे।
1: आप कुछ कहना चाहोगे बेटा?
2: जी मेरा एक मैसेज है
3: जी,
2: अपने को बुलंद बनाओ। आपका बॉडी लैंग्वेज बोलना चाहिए वो डिस्टेंस, आपको हाथ नहीं उठाना, आपको गाली नहीं देना, आपका बॉडी लैंग्वेज बोलेगा बंदा वैसे ही डिस्टेंस ले लेगा। बंदा जो गलत काम करते ना उनका एक हार्मोन काम करता है डर।
3: बिल्कुल बिल्कुल,
2: या तो वो डराएगा या डरेगा। अब यू हैव टू चूज
3: कि आपको डरना है कि नहीं।
2: बॉडी लैंग्वेज, योर बॉडी लैंग्वेज विल,
4: ऐसे सिचुएशन में सबसे ज्यादा मेन पॉइंट होता है आपका अलर्ट होना।
3: बिल्कुल,
4: कुछ भी हो रहा है कैसे भी हो रहा है आप अलर्ट हो जाओ और आप इस सिचुएशन में जैसे एकदम से क्विकली डिसीजन होते हैं ना वो ले लीजिए।
3: बिल्कुल, जैसे हम बाइक चलाते हैं तो उस वक्त हम केयरफुल होते हैं, उतना अलर्ट रहना है। लास्ट क्वेश्चन सिया, आप डरी तो नहीं है? आगे हम आपको बाइक राइड करते हुए देखने वाले हैं।
5: इसलिए मैं देखो उस चीज से वो जो इंसान करके गया उससे तो ऑब्वियसली मैं डरने वाली नहीं हूँ। दैट्स द मेरा दूसरा रिएक्शन, जस्ट पोस्ट अ वीडियो एंड मेक हिम वायरल देश भर में, जो वो हो चुके हैं। बट इट विल टेक टाइम टू रिकवर, टू मेंटली रिकवर, बट लाइक आफ्टर सम टाइम आई विल कम बैक टू।
3: आप क्या फीमेल राइडर्स को, विमेन राइडर्स को मैसेज देना चाहते हैं?
5: मेरा यही मैसेज है दैट ये इंसिडेंट ऑब्वियसली सबके साथ हो सकता है, जो मैंने गलती करी, गेयर्स हम सबको पहनने चाहिए
3: जी,
5: जो मेरी एक मिस्टेक रही है। ऑब्वियसली किसी के लिए अपना पैशन छोड़ने की जरूरत नहीं है। देखो ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, सिस्टम को बदलना हमारी जिम्मेदारी है, सबको अवेयर करना, विच वी आर डूइंग
3: राइट।
5: एंड ये ऑब्वियसली हम सबको इंस्पायर करेंगे तभी सब निकलेंगे, बट अ स्मॉल रिक्वेस्ट फ्रॉम द सिस्टम कि आपकी जिम्मेदारी है कि हम भी सेफ रहें।
3: बिल्कुल, तो जब मशीन ये फर्क नहीं करती कि उसे लड़का चला रहा है लड़की चला रही है, तो आप क्यों फर्क कर रहे हैं? और हम यहाँ पर बता दें कि ऐसे घटनाओं से, ऐसे इंसिडेंट से हम डरने वाले नहीं है। सो 3 cheers for women riders, hip hip
6: hooray,
3: hip hip
6: hooray,
3: hip hip
6: hooray।
3: Sia, सबसे पहले आपको हम सब हक करना चाहते हैं। गाइस
7: कम कम कम,
8: वी ऑल विश यू स्पीडी रिकवरी।
9: राइट, एब्सोल्युटली।
10: You have seen him many times in the actual Sansad. Today it is Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju in People's Sansad. Don't forget to watch him at these times.
11: Please join People's Sansad.

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: गाइस मेरा तीसरा स्टोर अब एक्सपेंशन के लिए ना एक बैंक चाहिए। एनी सजेशंस? जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल
2: स्मॉल
3: अब पूरी पिक्चर देख लो। लोन ऑप्शंस बिग, सेविंग्स और एफडी पे इंटरेस्ट बिग, ब्रांच नेटवर्क बिग। अगर स्मॉल होता तो मैं साड़ में होता। और जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस।
0: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मी।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: थिंक 20 ईयर्स। पीएम साहब ने एकदम क्लियर हमें कहा था कि थिंक 20 ईयर्स एंड थिंक ऑफ द इकोसिस्टम। कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है ह्यूमन हिस्ट्री में, दिस इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स थिंग विच इज़ मैन्युफैक्चर्ड। आई गिव दिस एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव टू राइट योर नेम ऑन द नेल यू कैन राइट इट, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट ट्राई टू राइट द नेम्स ऑफ ऑल योर क्लासमेट्स इन ऑल योर क्लासेस ऑन दिस नेल, वुड दैट बी डिफिकल्ट? दैट वुड बी डिफिकल्ट। नाउ ट्राई राइटिंग द ऑल द टेक्स्ट बुक्स ऑन दिस नेल, दैट इज़ वॉट सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इज। दैट प्रिसीजन is very very difficult, so getting that precision required huge amount of effort. हमने वो effort लगाया और सबके साथ humility के साथ, बहुत ही एक हमारे देश में नहीं है industry, आप आइए हमको help कीजिए and we'll do whatever is needed to be done, और वो हमने किया।
1: आप जब दूसरे phase में जा रहे हैं, आप जो हमारा mission है उसके 2.0 वाले phase में आप जा रहे हैं, but कई सारे ऐसे अभी भी लोग हैं जो कहते हैं कि भाई यहाँ तो सिर्फ असेंबल हो रहा है, हम हमेशा मेक इन इंडिया की बात करते रहते हैं, बट दिस इज़ ओनली असेंबली। क्या कहेंगे आप उनको?
0: बहुत गलत बोलते हैं, क्योंकि उनको जानकारी नहीं है। पहली बात, अगर आप इस में जाओगे, आप देर आर सो मेनी पेविलियंस जहाँ पे इंडिया में डिज़ाइंड चिप्स आर नाउ गेटिंग एक्सपोर्टेड टू जापान, गेटिंग एक्सपोर्टेड टू यूरोप, गेटिंग सम ऑफ देम गेटिंग एक्सपोर्टेड इवन टू चाइना एंड टू US. These are the products which are getting designed and manufactured here. This is, and you can go and see. This is the reality. तो जो लोग नहीं जानते वो लोग allegations लगाएंगे, लगाना उनका काम है, but we are feeling that yes, we have reached a level where the foundation is now set. Now the time to build it in a big way has come.
1: But what are the specific measures and incentives that you're giving? You said आपने विश्व भर के जितने आपके जो ऐसी powers हैं उनको बोला है कि आप आइए, help us take this mission forward. But what are the incentives that you're offering to them?
0: देखो, incentives बाकी दुनिया जितनी देती है उतनी हम नहीं दे सकते, obviously because हमारे financial limitations अपने हैं, और जितना like there are countries which have invested close to $600 billion. हमारा इन्वेस्टमेंट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 13-15 बिलियन डॉलर्स टाइप का। फर्स्ट फेज वो 7-8 बिलियन डॉलर्स, दिस इज़ अबाउट 17-18 बिलियन डॉलर्स। बाकी कंट्रीज़ 100 बिलियन डॉलर्स से नीचे बात नहीं करती, लेकिन हमारे यहाँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग डिज़ाइन टैलेंट। डिज़ाइन टैलेंट इज़ गिविंग अस दैट लॉन्ग रनवे, दैट कॉन्फिडेंस एंड अ वेरी स्टेबल पॉलिसी। वी आर डिलीवरिंग मोर देन वॉट वी आर प्रोमिसिंग, and whatever interactions we have here, which gives them the confidence that yaar ye desh acha hai, is desh mein kaam karna chahiye.
1: And beyond, if we look beyond the basic silicon fabrication, where are the other areas where we are looking at a possible scope for expansion?
0: Huge scope of expansion in material and machines. Applied Material, which is one of the largest equipment manufacturing company, actually the largest equipment manufacturing company, they have announced $5 billion investment. US में उनका जो प्लांट है, उस प्लांट के बाहर US में भी कभी नहीं गए, वो पहली बार इंडिया में आ रहे हैं। दे हैव नेवर गॉन टू जापान, दे हैव नेवर गॉन टू साउथ कोरिया, नो अदर कंट्री दे हैव गॉन टू, और भारत में आ रहे हैं।
1: Why? Because they believe in the vision or in the mission? What was it that drove them?
0: It's a combination. They believe in the combination of all these things.
1: You know, when I was listening to the Prime Minister speak earlier, he said that India is always about dreaming big. You're going very measured, phase to phase way. But is there personally in your heart, you know, a vision that you see aage ja karke ye achieve karna hai, that this is going to be our ultimate goal? You know, people may be cynical, may laugh about it, but aap, what would be your fond hope ki this is what we'll achieve?
0: India ka apna GPU.
1: Apna GPU. और कितने टाइम में आपको बनेगा?
0: वो ड्रीम है और वो बनेगा।
1: और कितना टाइम में आपको?
0: देखो, एक रोड मैप है हमारे सामने, करेंगे उसको।
1: राइट नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस दैट यू फील? बिकॉज़ बाय नाउ यू हैव अ फेयर सेंस ऑफ यू नो वेयर इंडिया स्टैंड्स विज़िवी इट्स कैपेबिलिटीज, बट देयर आर अ फ्यू थिंग्स दैट आर रियलिस्टिकली टू बी कंसिडर्ड। फॉर एग्जाम्पल, रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी, द चैलेंजेस दैट आर यू नो फेसिंग अस। What realistically do you think are those challenges that one needs to first identify and then address?
0: I've been telling the industry very clearly, we have to compete in the global market.

0: market. Don't think of protections. We are not going to give you protections. Just don't think of protections. Compete on cost, compete on quality. Then only we'll have a sustainable industry. And that's why this entire industry, if you talk to anybody, from day one this has been our message. Day one. This industry is today thinking of exporting to Japan. Exporting, they are actually exporting to Japan, Korea, Taiwan, to China, to US. And that's what is most important, because that gives them the confidence, one. Second, that establishes India as a country which can produce a quality at a cost point, which gives the advantage to the customers. Then only customers would buy. Better quality and better cost, lower cost, right? Then only customers would buy. So this is what we are continuously focusing, and we are very careful in the selection of the participants. We don't want it to be a system where anybody can come in. No. We are very, very meticulously selecting the participants, so that the journey which happens over next 20, 30 years is a journey where we feel satisfied that yes, we developed a new industry in our country. Even, let me, with full humility, I'm saying, all the five units which have started commercial production, whatever capacity they can create is all fully booked already. The fab which will come in 2028, more than half of it is already booked now, even though the first production has not started. Because the world is looking at India in a very different way now. One, our Prime Minister's foreign policy has established India as a trusted partner. There is a lot of trust about India. Second, the methodical way in which we have rolled out and executed this program, that methodical way gives the confidence to the industry, and industry gives the confidence to their customers.
1: That you're a solid partner, but aapne ek bahut zaruri baat kahi ki jab aap job creation ki baat kar rahe hain, Tier 1, you are getting a very good response. But हमारे regional centers में, क्योंकि जब जब chips की बात करते हैं, एक तो लोगों के दिमाग में थोड़ा सा confusion होता है कि भाई chips से हमारी ज़िंदगी में क्या हो रहा है? Job creation is something that they can relate to. तो drone दीदी से लेकर के आपके नागपुर में बैठा हुआ एक लड़का भी सोच रहा है, when will I get to connect with this? ये हमारे regional centers में कब
0: expand? आप guess करो कि students जो chip design कर रहे हैं, जिनकी chips manufacture हुई है, सबसे छोटे से छोटा शहर आप इमेजिन करो,
1: छोटे से छोटा,
0: चलो छोटे
1: दिसपुर.
0: दिसपुर में बच्चों ने डिजाइन किया,
1: दिसपुर
0: में डिजाइन किया.
1: I would have never imagined, because I can say perhaps 80% people won't be able to.
0: बरमपुर में, बरमपुर में डिजाइन किया है,
1: बरमपुर में,
0: उड़ीसा के बरमपुर में डिजाइन किया है, जम्मू में डिजाइन किया है, पूरे देश भर में 400 यूनिवर्सिटीज इन Tier 2, Tier 3 से भी नीचे यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स ने डिज़ाइन किया एंड इंटरेक्टेड विद द स्टूडेंट्स. जो कॉन्फिडेंस उनके पास है, दुनिया में अगर आप ऐसा प्रोग्राम दुनिया में कहीं देखोगे तो यू वुडंट बी एबल टू काउंट मोर देन 20 यूनिवर्सिटीज़ जिसमें इस तरह का प्रोग्राम है. वी हैव डन इट इन 400 यूनिवर्सिटीज़. इमेजिन अ स्टूडेंट गोइंग टू द इंडस्ट्री एंड टेलिंग दैट आई हैव डिज़ाइन दिस चिप, आई हैव टेप्ड इट आउट एज इन मैन्युफैक्चर्ड इट एंड आई हैव यूज्ड इट इन अ बोर्ड, एक्चुअली टेस्टेड इट. इस तरह की कैपेबिलिटी बहुत कम है दुनिया में, एंड वी हैव गिवन देम इंडस्ट्री ग्रेड टूल्स, कैडेंस का, सिनॉप्सिस का, सीमेंस का, वी हैव गिवन देम इंडस्ट्री ग्रेड टूल्स. ऐसा नहीं कि जस्ट टेस्ट लैब, वैसा नहीं.
1: यू नो दिस इज सो फैसिनेटिंग, क्योंकि सर एक ऐसे वक्त पे हम बात कर रहे हैं जब सब लोग जेंजी की बात कर रहे हैं. एक ऐसा वक्त होता था जब एस्पिरेशन बस इतना होता था कि आप अपना इंजीनियर, डॉक्टर, शायद लॉयर बन जाएं, और अब आप कह रहे हैं कि दिसपुर या फिर बहरामपुर या फिर आई डोंट नो राव किला, बोलपुर में बच्चे बैठ करके, दिस इज, वुड यू से ऑल्सो द लैंग्वेज और द ग्रामर ऑफ जेंजी दैट एवरीवन कीप्स टॉकिंग अबाउट, एक वो भी जेंजी है.
0: हेमंत बिस्वा शर्मा जी कहते हैं ना कि मेरी राजनीति सेमी कंडक्टर है.
1: दैट्स ट्रू दो.
0: उन्होंने कहा मेरा कैंपेन सेमी कंडक्टर है. आसाम में हो रहा है प्लांट, इट्स अ फैंटास्टिक प्लांट, वर्ल्ड क्लास, जागी रोड में. आसाम से भी, गुवाहाटी से भी कितना दूर है. ये हो रहा आज, दैट्स अ रियलिटी. दैट्स व्हाट द इंडस्ट्री वाज सेइंग चार पाँच साल पहले जब आप लोगों ने लॉन्च किया था. वी यूज टू थिंक कि इंटेंशन है, 50-60 साल से इंडिया हैज़ बीन सेइंग दिस. आज है कॉन्फिडेंस.
1: आपने टेपिंग आउट की बात की, आपने इनॉग्रल स्पीच में द प्राइम मिनिस्टर सेड दैट tape out means that when it goes into production from design, but the work is not over. Phase one से phase two हो गया, but फिर भी work is not over.
0: अभी तो start हुआ है.
1: हाँ.
0: मैं तो कहता हूँ कि ये foundation है, और PM साहब ने जो कहा है वो exactly सही कहा है. ये just एक foundation है. अब तक foundation बनाना भी अपने आप में बहुत difficult था. लेकिन अब देखो बहुत सारे global challenges आएंगे. Remember जब Apple का manufacturing चालू हुआ था, तो कुछ लोगों ने food poisoning की. Reuters जैसी एक संस्था ने इतनी fake news चलाई कि मैरिड वुमेन को अलाउड नहीं करते, इस तरह की चीज़ें चलाई, इलेक्ट्रिसिटी के तार काटे गए, कई तरह के ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसमें पीपल हु डिडंट लाइक इंडिया टू कम अप एज अ मैन्युफैक्चरर, दे ट्राइड ऑल ट्रिक्स.
1: आप कह रहे हैं सबोटाज किया गया, इस तरीके
0: किया गया है,
1: तार काट करके
0: हर तरह से सबोटाज करने की कोशिश की गई. अब वो चैलेंज भी आएगा, अब हमें उस चैलेंज के लिए भी तैयार रहना चाहिए. अभी तो देखो ये बिगिनिंग है, एंड द वर्ल्ड हैज टेकन नोट ऑफ इट. सो वंस पीपल स्टार्ट फीलिंग कि यार ये एक नया देश इस इंडस्ट्री में आया है, तो देर विल बी पीपल हु सपोर्ट अस, बट देर विल बी ऑल्सो पीपल हु अपोज अस, एंड दे आर द वंस हु आर गोइंग टू कॉज प्रॉब्लम्स. आई हैव टोल्ड द एंटायर इंडस्ट्री बी प्रिपेयर्ड फॉर सच इंसिडेंट्स नाउ.
1: और ये सिर्फ फिजिकल सैबोटेज नहीं है, एक नैरेटिव का सैबोटेज.
0: नैरेटिव का सैबोटेज ये होगा, पक्का होगा, देखना
1: किस तरीके का, आप किस तरीके के ऐसे चैलेंजेस फोर्सी
0: करेंगे, साइबर अटैक्स करेंगे, लोग बहुत सारी फेक न्यूज़ डालेंगे, हर तरह का फिजिकल अटैक करने की भी कोशिश करेंगे. वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस, बिकॉज दिस इज अ स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्री. दिस इज नॉट एन इंडस्ट्री वेयर पीपल विल गिव इन वेरी वेरी मेथोडिकल, वेरी कॉग्निजेंट ऑफ द चैलेंजेस एंड डू इट.
1: फाइनली आई वांट टू आस्क यू सर, This is generally, I would assume, a very young industry.
0: It is.
1: जो आप डिज़ाइन की बात कर रहे हैं, जिन लोगों से आप इंटरेक्ट करते हैं, जो लोगों को मैं देख रही हूँ यहाँ पे, दे आर वेरी यंग. वॉट वुड यू लाइक टू से टू द यंग पीपल ऑफ आर कंट्री, एंड बिकॉज ऑल द वेरी मैनी डिपार्टमेंट्स दैट यू हैंडल, दे ऑल इन सम वे ऑर द अदर इंटरेक्ट विद द यंग पीपल ऑफ आर कंट्री. वॉट वुड यू से टू देम टूडे एज मिनिस्टर, एज समबडी हु हैज अ स्टेक in the growth of this country, what should they look forward to in the next 5 years?
0: One, there will be many more opportunities for semiconductor design, semiconductor manufacturing, semiconductor testing, semiconductor validation. It's a full value chain. Semiconductor equipment, materials, many more opportunities will come. Look at those opportunities, prepare for it. We'll help you from the ISM, from the mission, to help you prepare for that, one. Two, this is not an industry for people who are okay with taking shortcuts. This is an industry where you have to have real determination and discipline to be able to run it in a long term. I'll give you, there are multiple examples. Let me not give any personal example. So this is an industry which requires a lot of determination, a lot of discipline. So those who want to be in this industry, be prepared for a marathon.
1: No, please give me that personal example. It would be great to hear.
0: You have to be of that mindset where you go deep. It cannot be for people who just want to be in this industry for 1 year or 2 years. It's not for them. So youngsters, those who want to be part of it, think long term, go deep, really do deep dive. So,
1: final word. आपका जो एक video था जो बहुत लाखों लोगों ने देखा, जहाँ पे आप चिप एक्सप्लेन कर रहे थे, उसके पीछे थॉट क्या था? क्योंकि लोगों ने कहा यहाँ पर प्रॉपर किसी प्रोफेसर ने शायद इतने अच्छे से नहीं समझाया होगा जितना अश्विनी वैष्णव जी ने समझाया.
0: I enjoy that.
1: What was the thought behind it?
0: I just enjoy the subject because I like it. We got this semiconductor in the third year of our BTech program. So there was a book called J.P. Hayes, John P. Hayes. So just 3 or 4 chapters were there in the syllabus, and rest of the book was for masters and PhDs. But in the third year itself, I read the entire book. So I enjoy that subject.
1: Well, you can take a man out of his books, but you can't take the books out of the man. You know, the keera jisko kehte hai ki bhai, knowledge ka keera. Thank you very much, Mr. Ashwini Vaishnav, and always, it's a pleasure. And very best of luck. May phase 2 be even better than phase 1. Thank you.
2: Will the real Nara's Fufa please stand up? Everything from UPI to BRICS to AI summit to GDP, so many Naras, Fufas, and we're going to chat about

0: cuando está de ser.
1: देश का टायर, जेके टायर।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: descending into the valley where the damage has taken place. This is the Bhotekoshi River now. It used to be Trishuli downstream. It's now the Bhotekoshi. This is the first look that we saw by helicopter of the exact spot where the floods broke through. To my left over here, they were all homes. Ashwini, you see the bank of the river over here? They were all homes. None of them exist. They've been completely washed away. There is 100% destruction over here. 100%. There are no homes, no structures at all. As we go back towards Kathmandu, there's a helicopter right there. It's got dead bodies slung underneath it, is what we're told. Well, we're now in Trishuli, and it's in fact just on the banks of the Trishuli over here that a lot of the damage has taken place. Well, we are at one of the sites where there are rescue operations which are now taking place. The Nepalese army is over here. How is every minute absolutely critical in an operation like this? Time is not in your side.
1: We are more than 90 people here. So we are trying best.
0: With our reports, we hope to get and provide our viewers a bigger, better idea of the extent of the devastation and what the people of Nepal are going through. Vishnu Shom for NDTV.
2: By noon, the world has changed. The headlines tell you what happened. Breaking Ground tells you why. We break down the story. We demand answers.
3: There is a deathly silence around this makeshift mass burial ground here in Bharatpur district in Nepal.
4: I want you to reach out to the Maharashtra Chief Minister today through our channel and tell them what you've been through as a father.
5: Marne ke bada kya hoga?
4: As a journalist, I can say you're not alone.
2: So you can focus on what really matters. Watch Breaking Ground with me, Vedika Sood. Weekdays 12 to 2 p.m. only on NDTV, when it really matters.
6: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
7: Hello and welcome to Watch and Prime 5 with me, Raisha Sehgal. What's happening? How?
8: Sansad se people sansad ka safar. Ab logo ke beech mein. Aur yahan par main speaker.
9: Sansad jo parliament hai, wahan se zyada acha yuvaon ka sansad hai. यहाँ एनर्जी मिलता है।
8: देयर इज अ क्रिटिसिज्म यू नो बिकॉज़ यू अर्लियर इन फैक्ट यू डिफाइंड व्हाट अ दिमागी नक्सल इज। अब लोग कहते हैं कि जब भी सवाल पूछे जाने लगते हैं ना, जब भी कोई युवा खड़ा होता है, जब भी विपक्ष खड़ा होता है, कभी आप कह देते हैं दिमागी नक्सल, फिर आप कह देते हैं नाराज फूफा।
9: जो इंडिया का सपना को जो तोड़ने के लिए काम करता है तो उसको तो हम नक्सल माइंडसेट ही बताएंगे, तो दिमागी नक्सल है। अगर आप ओपोजिशन का एमपी है और आप ये जो कैटेगरी मैंने बताया उसमें आते हैं तो हम क्या कर सकते हैं?
8: नाराज तो कुछ लोग बड़े थे आपकी स्विमिंग से भी, दे वर चैलेंजिंग योर स्विमिंग टेक्निक।
9: कांग्रेस का एक प्रवक्ता ने कहा कि मैंने किरण रिजिजू ने हाफ नेकेड स्विमिंग किया है, बोलते तो मैंने कहा कि स्विमिंग क्या सूट बूट में स्विमिंग करते हैं क्या?
8: You had said, ये हमारा, मैं हूँ यहाँ का सबसे बड़ा खिलाड़ी।
9: मैं तो मेरा डोमेन है, मैं जहाँ एक्सपर्ट हूँ वहाँ चैलेंज नहीं करना चाहिए।
8: तो आपने कहा मैं सबसे बड़ा खिलाड़ी, लेकिन एक और खिलाड़ी हैं जिन्होंने
9: कौन है दूसरा खिलाड़ी?
8: हाँ, दिखाते हैं आपको उस खिलाड़ी का वीडियो। अब मेरे को लगता नहीं है कि आप उनको उनसे ज्यादा बड़ा खिलाड़ी, अपने क्या लग रहा है आपको कौन है ज्यादा बड़ा खिलाड़ी अब?
9: मेरा बॉस है।
8: आई सॉ वेरी नाइस वीडियो ऑफ योर्स जब आई थिंक आप वाजपेयी जी के साथ बैठे हुए थे और उनके साथ जो आपका इंटरेक्शन था।
9: हमने बीजेपी ज्वाइन किया लेकिन इलेक्शन हार गए। इलेक्शन हारने के बाद हम अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास गए तो मैंने जैसे ही कहा अटल जी मैं तो चुनाव हार गए हूँ क्या करूँ, बीच में तुरंत राम नाईक जी ने बोला अरे किरण तुम टेंशन मत लो, अटल जी भी पहले चुनाव हारे थे। तो फिर अटल जी ने कहा अरे राम नाईक जी का चेहरे तो सबको पहले चुनाव हारना चाहिए।
8: They are saying that even to ask these questions is our duty. सरकार हमारी सुन नहीं रही है, हम सुन नहीं रही है, अब हम सड़क पे सुन रहे
9: हैं। Instability create मत करो, everybody must be governed by the spirit of the constitution of India. उसके अंदर कुछ भी बोलो, आप कुछ भी बोल सकते हैं, आपका राइट है। बस देश का खिलाफ मत बोलो, हमको जितना गाली देना दे दो, मतलब देश का खिलाफ गाली मत बोलो।
5: सर जब डिलिमिटेशन होगा तो आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर तो 850 ऑलमोस्ट सीट होने वाली, तो सर जो बिहार को जो फ़ायदा होगा लोकसभा सीट बढ़ने से, सर सेम फायदा सदर्न स्टेट्स को नहीं होगा?
9: आपको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दो, आपका इन्फॉर्मेशन सही नहीं है।
8: एनीथिंग व्हिच इज टू योर माइंड, एनीथिंग डेडिकेटेड टू द यूथ, टू द यूथ।
9: मैं तो गाना गा देता हूँ, लोग तालियां भी बजाते हैं, बाद में मेरा बीबी मुझे डांटते हैं। तू ही मेरा जीवन, तूने तुझे जीने जग सा।

0: Hello and welcome. Thanks very much for joining us here on NDTV. I'm Padmaja Joshi. 25 years of the Prime Minister in public life and in People's Sansad, we do what we always do. We put the issues of the people, for the people, in the People's Sansad. And joining us today is Union Minister for Parliamentary Affairs and Minority Affairs, Shri Kiran Rijiju, here with us in People's Sansad, in front of a young bunch of fine young minds. Huge round of applause. So thank you so much. पहले सर ये बताइए संसद से पीपल्स संसद का सफर अब लोगों के बीच में और यहाँ पर मैं स्पीकर हूँ
1: वैसे तो संसद जो पार्लियामेंट है वहाँ से ज़्यादा अच्छा युवाओं का संसद है यहाँ एनर्जी मिलता है वहाँ थोड़ा टेंशन पैदा होता है यहाँ टेंशन फ्री है बच्चों के साथ युवाओं के साथ
0: ऐसा क्यों है क्यों वहाँ पर आपको संसद के अंदर नाराज फूफा मिलते हैं
1: ऐसा है अब जब बार बार आप फेल हो जाते हैं तो आप थोड़ा सा नाराज हो ही जाते हैं तो ये विपक्ष का गलती नहीं है माहौल ऐसा है इसलिए मैं यहाँ नकारात्मक मतलब नेगेटिव कोई बात नहीं करना चाहता हूँ जिंदगी में हारो जीतो खुश रहना चाहिए नाराज फूफा बन के रहने से कुछ नहीं मिलेगा
0: क्योंकि आज हम पीपल संसद में है देयर इज अ क्रिटिसिज्म यू नो बिकॉज़ यू अर्लियर इनफैक्ट यू डिफाइंड व्हाट अ दिमागी नक्सल इज अब लोग कहते हैं कि जब भी ये सवाल पूछे जाने लगते हैं ना जब भी कोई युवा खड़ा होता है जब भी विपक्ष खड़ा होता है कभी आप कह देते हैं दिमागी नक्सल फिर आप कह देते हैं नाराज फूफा क्यों
1: देखिए इसमें तो पॉलिटिक्स है लोग अपना नैरेटिव सेट करते हैं हम उसमें कुछ किसी को सलाह नहीं दे सकते हैं लेकिन आप अपना बात हम कह सकते हैं अब किसी को नक्सल क्यों बोलते हैं नक्सल का जो फाउंडेशन है उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ वो भारत का संविधान का खिलाफ अलग से व्यवस्था खड़ा करने का नक्सल मूवमेंट हुआ उनका अपना कोर्ट होते हैं आप देखे हैं गाँव वालों को पुलिस आर्मी वालों को पकड़ के ले के जाके वहाँ अपना कोर्ट में हियरिंग करके वही गोली मारते हैं वो भारत का संविधान को मानते नहीं हैं तो वो जो नक्सल या जो माओवाद जो विचारधारा रखने वाला भारत का संविधान को नहीं मानते हैं दूसरा उससे विकृत होकर के आगे निकल करके जम्मू कश्मीर को अलग करना है नॉर्थ ईस्ट इंडिया को अलग करना है उसमें आज़ादी का नाम से आज़ादी का स्लोगन लगाते हैं और कहते हैं कि सबको अपने अपने तरीके से भारत से अलग रहने का आज़ादी होना चाहिए तो ये जो है सेपरेटिज्म का माइंडसेट है ये दूसरे नंबर मैंने बताया तीसरा है जो भारत का ग्रोथ स्टोरी भारत जब तेज़ी से आगे बढ़ता है तो उसको रोकने के लिए तरह तरह का हथकंडे अपनाते हैं कोई हमारा इंडस्ट्रियल यूनिट है तो उसको बंद कराने के लिए एक इन्वायरमेंट के नाम में कहीं एजिटेशन चलवाना और जो अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है हाईवे बन रहा है उसको रोकने के लिए तो इंडिया का जो ग्रोथ स्टोरी है उसको रोकने के लिए वो ऑब्स्टेकल पैदा करते हैं तो इसलिए जो इंडिया का सपना का जो तोड़ने के लिए काम करता है तो उसको तो हम नक्सल माइंडसेट ही बताएंगे तो दिमागी नक्सल है तो इसलिए हमने क्लियरली बताया हमने ओपोजिशन को दिमागी नक्सल कभी नहीं कहा लेकिन अगर आप ओपोजिशन का एमपी है और आप ये जो कैटेगरी मैंने बताया उसमें आते हैं तो हम क्या कर सकते हैं
0: पर फिर आप डिसाइड कैसे करते हैं कि कौन नाराज फूफा है और कौन दिमागी नक्सल
1: नाराज फूफा तो प्रधानमंत्री जी ने कहा उसमें आप समझना होगा मैं बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्या है कि 2014 के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नाम से लोगों का समर्थन प्राप्त कर रहे हैं पीपल आर हैविंग फुल कॉन्फिडेंस इन द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर तो जो बार बार मोदी जी को सपोर्ट करते हैं बीजेपी एनडीए को बनाते हैं तो वो दूसरे पार्टी हार रहे हैं तो उनका हारना हम कैसे जिम्मेदार हैं वो तो वोट नहीं दिया लोग तो वो इलेक्शन हार रहे हैं तो इलेक्शन हार रहा है तो हमेशा नाराज हो करके गाली करना पार्लियामेंट में हंगामा पैदा करना फिर देश का खिलाफ बात करना तो ये नाराज जो होके बैठा हुआ है तो उसको एक डिस्क्रिप्शन दिया है, भारतीय परंपरा में नाराज फूफा कौन होता है वो तो आप भी अच्छा तरह से जानती है।
0: ये बताइए, नाराज तो कुछ लोग बड़े थे आपके स्विमिंग से भी, दे वर चैलेंजिंग योर स्विमिंग टेक्निक। फर्स्ट लेट्स सी व्हाट इट इज दैट यू नो रियली सेट द कैट अमंग द पिजन्स व्हेन यू पुट अ पिक्चर ऑफ योरसेल्फ स्विमिंग, अ वीडियो ऑफ योरसेल्फ स्विमिंग। पहले आप ये बताइए, हैव वी सेटल्ड दिस डिबेट, हु इज अ बेटर स्विमर, इज इट यू और इज दिस मिस्टर राहुल गांधी हु इज अ बेटर स्विमर, हैज दिस क्वेश्चन बीन सेटल्ड?
1: ये बहुत खतरनाक नदी में मैंने स्विम किया है, यहाँ समझ में नहीं आएगा क्योंकि अभी मॉनसून का समय का इफेक्ट है, अभी भी पानी देखिए आप ब्लू कलर नहीं है, थोड़ा गंदा पानी, मतलब फ्लडेड है, पानी काफ़ी बड़ा है और कम से कम 25 फीट डेप्थ है, तो यहाँ स्विमिंग करना कोई आसानी नहीं है। मैं तो गांव में था, सोशल मीडिया में तो डलवा दिया, दो दिन बाद मैं जब दिल्ली पहुंचा तो पता चला ये वीडियो तो वायरल हो चुके हैं, मुझे तो मालूम नहीं, बड़ा पॉलिटिक्स हो गया। लेकिन क्या है, हम जब यहाँ स्विमिंग करने गए, स्विमिंग मतलब मैं वहाँ काम के लिए गए थे, तो मैंने कहा कि थोड़ा सा एक घंटे के लिए हम स्विमिंग करते हैं, बचपन में हम यही स्विम करते थे। तो एक दिन पहले किसी का मौत हो गई, पानी में डूब के मर गए, तो मैंने स्विमिंग करते समय एक कैप्शन लगाया वार्निंग कि अगर आपको स्विमिंग नहीं आता है तो कृपया आप इस तरह के नदी में स्विम ना करें, ये मैंने लिख करके वीडियो डाला, नहीं तो मैं कूद गया बाकी भी सब कूद जाएंगे तो इससे गलत हो सकता है, तो मैंने वार्निंग दे करके कूदा नदी में, तो मैं तो डाल दिया वो तो वार्निंग, मैं तो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए डाला है। कांग्रेस पार्टी को मिर्ची लग गया, वो कह रहे कि किरण रिजिजू जो स्विमिंग कर रहे हैं वो तो राहुल गांधी का नकल कर रहे हैं, बोलते हैं। अरे राहुल गांधी जी जब नदी देखा नहीं है, मैं तब खिलाड़ी बन चुके थे, मैं ये नदी जो है हमारा गांव के, ये तो बचपन से हम क्लास 5-6 में ही मैंने इस नदी को पार किया, मैं स्विमिंग में बहुत उस्ताद हूँ। तो मैंने कहा कि मैं यहाँ का बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ, मुझे चैलेंज मत करना, और मैं ट्रेनिंग लेकर के स्विमिंग नहीं करता। तो कांग्रेस ने ट्रोलिंग शुरू कर दिया, दूसरा कहा कि किरण रिजिजू को स्विमिंग करने के लिए टेक्निक आता नहीं है, टेक्निक ठीक नहीं है, स्विमिंग करना नहीं आता है,
0: क्यों? मैंने बोला बेली फ्लॉप कर रहे हैं,
1: अरे वो गंदे नदी में सर ऐसे डाइव मारेंगे, पत्थर में लग गया सर फूट गया तो क्या करेंगे, ये जो हेड डाउन जो जंप करते हैं वो क्लीन स्विमिंग पूल या क्लीन नदी में करते हैं, गंदे नदी में ऐसे सर नहीं दबाते, ये लोग मालूम नहीं है। और तीसरा जो है, मैंने ये कहा कि हम तो ट्रेनिंग लिया नहीं है, राहुल गांधी जी तो वो सिल्वर स्पून में पैदा हुए हैं तो उसको तो हर चीज़ का ट्रेनिंग मिल जाते हैं, हम लोग तो कहाँ ट्रेनिंग लेंगे, हम तो जंगल पहाड़ में पैदा हुए हैं, हम तो ओरिजिनल आदमी हैं, तो हमारे लिए ट्रेनिंग का जरूरत नहीं है। मैंने थोड़ा आपत्ति इसलिए किया कि कांग्रेस का एक प्रवक्ता ने कहा कि मैंने किरण रिजिजू ने हाफ नेकेड स्विमिंग किया है, बोलता है, तो मैंने कहा कि स्विमिंग क्या सूट बूट में स्विमिंग करते हैं क्या, आप सोचिए उनके सोच। तो बाद में मैंने कहा कि चलो ठीक है, वो कांग्रेस पार्टी है काफी नाराज है, तो मेरे स्विमिंग को भी वो एक्सेप्ट नहीं कर पाया, अदरवाइज ये तो स्पोर्ट ही है, जिंदगी में इतना काय को
0: टेंशन। But now that is going to stick to you, because you had said ये हमारा, मैं हूँ यहाँ का सबसे बड़ा खिलाड़ी।
1: मैं तो मेरा डोमेन है वो, मैं जहाँ एक्सपर्ट हूँ वहाँ चैलेंज नहीं करना चाहिए, ये जंगल पहाड़ नदी खतरनाक से खेलना, एडवेंचरस लाइफस्टाइल, ये तो मेरा जिंदगी का शैली है, ये मेरा स्टाइल कैरेक्टर है, यहाँ कोई मुझे चैलेंज नहीं कर सकते हैं।
0: खतरों के खिलाड़ी। Anyone who wants to ask questions, I'm saying right at the outset, let's get it started because I want to get in the People's Sansad. Kisi ka mic off nahin kiya jata hai. Boliye bhai, khade hoke. Yes, you please.
2: Good afternoon, Honorable Sir. Sir, my name is Zornas. I'm a computer science engineering student at MIT University. Sir, coming from Manipur, my question is, Sir, as a representative from Arunachal Pradesh, how do you view the role of youth of India's Northeast in terms of contributing to and benefiting from the Viksit Bharat vision, particularly in terms of infrastructure and connectivity development in Northeast?
1: This is a very good question. Most of the students who are below the age of 25 years, they may not realize what was the situation before 2014. It's been 12 years plus. When I was member of parliament in opposition party, I used to raise questions in the parliament as an opposition MP those days. What I used to raise questions are answered today. The youth of Northeast are extremely talented. Of course, Indian youth are very talented, but the Northeast youth are a bit adventurous, vibrant, and very talented. But because of lack of opportunities, most of the Northeastern youth are going out of the region to either study or seek opportunities or maybe doing jobs. In the journey of Viksit Bharat, the strength of Northeast, the youth, can play a very critical role. Number one, we have established critical infrastructure in Northeast itself. Every Northeastern districts and a border point is now connected with double lane national highways. Most of the border areas are now connected, which used to be walking, you know, for days. Like my village used to be 2 days walk. When I was sitting member of parliament during Congress regime, so when I became member of parliament, I got the road sanction, and now today I can reach same day from Delhi to my village. Because we have got airport, then the highway, road to my village. So the hard infrastructure is already laid. Now, on top of that, the soft infrastructure, the education, the health, different opportunities to be created are being laid. All green shoots are coming up. Imagine semiconductor facility coming up in Northeast. These were unthinkable few years back. So now, once we finish with the hard infrastructure laid with the soft, we will have greater integration in the economic growth. Hospitality industries, different sectors, productivity will enhance. It will become a manufacturing hub. People will come, go, connectivity will enhance, thereby creating jobs, creating opportunities for the youth. And then you generate the wealth for the nation. That is how the youth are engaged and you become integral part of the growth story of India.
0: But sir, I want to ask you one more thing. You know, because when you was talking about the Northeast, the Prime Minister used a phrase, Dil aur Delhi ki duri. So, you have reduced the distance from Delhi, you have made greenfield airports, you have made highway. Ek dil ki duri bar bar. You know, every now and then you have such episodes, what happened in Delhi, a musician, you know, in an altercation, he was beaten to death. There was harassment, racial profiling. Kya dil ki duri kam hui hai? Aur agar nahi hui hai, to kyun nahi hui hai?
1: Do baate hai aapko samajhna hoga. I'll have to speak in Hindi or English.
0: Both, whatever you're comfortable.
1: So, isme do baatein hain, wo aapko samajhna hoga. Northeast ke log thoda emotional hote hain. To bhavak hote hain, emotional. To agar aapko dhyan nahi diya Delhi se, to wo mayus ho jate hain. I was Minister of State for Home Affairs for 5 years, from 2014 to 2019. Before me, the groups of Northeastern region who are involved in militancy, how did they go into jungle? Maan lo ek chota community hai Northeast mein, 5,000 bhi ho sakta hai, 50,000, 1,00,000 ho sakta hai. One community, because Northeast has multiple communities and tribes. So each community has its own unique problems. Sunne wala koi nahi tha Delhi mein. मान लो 50,000 का कोई कम्युनिटी है, उनके प्रतिनिधि दिल्ली में आए, they are waiting in Delhi for weeks and weeks, nobody in the Home Ministry or Government of India is giving time. एक Joint Secretary भी सोचते कि यार कहाँ ये छोटा सा कम्युनिटी आया है, मेरा पास समय नहीं है, मैं तो भारत सरकार का सेक्रेटरी हूँ, Joint Secretary हूँ, time नहीं देते हैं, वो इंतजार करके करके मायूस होके, एक महीने के बाद दिल्ली में कोई सुनने वाला नहीं है, वापस जाते हैं और इमोशनली गन पकड़ लेता है, बम फेंकता है, सोचता है कि गन से बम से शायद सुन लेंगे. तो ऐसा करके करके नॉर्थ ईस्ट में मिलिटेंसी इतना ज़्यादा बढ़ गया, इतना ज़्यादा मिलिटेंसी आ गए कि नॉर्थ ईस्ट का ग्रोथ पे असर पड़ने लग गया. पीस विल ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी, तो शांति था ही नहीं. तो ऐसा करते करते कुछ सुनने वाला नहीं था, तो हम लोगों ने सुनना शुरू किया. मेरे पास तो एक आदमी भी आएगा तो भी मैं मिलता था. एक मैं आपको रिकॉर्ड के लिए बता दूं, एक कम्युनिटी के कुछ मिलिटेंट ग्रुप बंदूक लेकर के जंगल में ट्रेनिंग लेकर के चले गए. वो बाद में टॉक चला, हमने सीज फायर किया, मेरे को मिला और वो सरेंडर कर लिया. पिछले 12 साल में लगभग 10,000 से ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट के लोग जो मिलिटेंसी में इन्वॉल्व थे बंदूक के साथ सरेंडर कर चुके हैं. तो ये मामूली अचीवमेंट नहीं है. मणिपुर में मेते कुकी और नागा कुकी में जो थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट एथनिक क्लैश जो हुए हैं उससे थोड़ा सा धक्का लगा है. मुझे तकलीफ भी हो रहे हैं क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग होकर के कई कारण है, कारण यहाँ जिक्र करने का अभी समय नहीं है. उसको छोड़ के, मणिपुर को छोड़ के बाकी पूरा नॉर्थ ईस्ट में अभी मिलिटेंट फ्री हो गया. आप सोच के देखिए, जो कदम कदम हर 10 किलोमीटर में बंद कोल, वहाँ बंदूक गोली का आवाज़ सुनते थे, आज शांति है. तो ये जो इमोशनली जो पीएम ने कनेक्ट किया वो सिर्फ हमने पहले बताया रोड, बिजली, पानी, एयरपोर्ट, सब रेलवे बनाया, वो है हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर. दिल से दिल जोड़ना भी उतना ही जरूरी है. तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा दी अस्थ लक्ष्मी, दी 8 states बींग डिस्क्राइब्ड एज अस्थ लक्ष्मी, वी मस्ट रीच आउट टू देम. वाई शुड दे ओनली कम टू दिल्ली? एवरी मंथ 15 मिनिस्टर्स, 5 कैबिनेट मिनिस्टर एंड 10 मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स आर बाउंड टू गो टू नॉर्थ ईस्ट. इट्स ए मस्ट. प्राइम मिनिस्टर ने ये एक तरीके से फरमान जारी किया है, सारा मंत्री नॉर्थ ईस्ट जाना है और जाके आना नहीं, सोना है वहाँ दूर दराज में डिस्ट्रिक्ट में जाके सोना है. तो ये जो दिल से दिल जोड़ने का काम किया है उससे बहुत करीब हो गया. सो हमने
0: जो
1: फिजिकल जोड़ा और दिल भी जोड़ा.
0: जो बच्चे वहाँ से यहाँ दिल्ली में आते हैं, जो यहाँ ऑडियंस में बैठे हुए हैं, उनको आप क्या कहेंगे?
1: इनके लिए मैं वही कहना चाहता हूँ कि जो इतने साल 50 साल तक हम पिछड़ा बहुत बैकवर्ड रहे हैं, पिछले 12 सालों में जो हमने गति पकड़ा है, बी एश्योर्ड, बी कॉन्फिडेंट. आई एम टेलिंग यू एज ए एल्डर एंड एज ए कैबिनेट मिनिस्टर, एज ए सीनियर मिनिस्टर फ्रॉम कमिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, आई मस्ट टेल यू द डेस्टिनी इज गोइंग टू बी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड. आवर नॉर्थ ईस्ट यूथ विल नॉट रिक्वायर टू स्ट्रगल फॉर बेसिक थिंग्स. वी विल एंश्योर दैट every north eastern region part, every state is as vibrant as any progressive state in the country.
0: You know, you spoke of ministers going to the northeast. I want to actually show one video. आपने कहा मैं सबसे बड़ा खिलाड़ी हूँ, लेकिन एक और खिलाड़ी हैं जिन्होंने
1: खिलाड़ी
0: दिखाते हैं आपको उस खिलाड़ी का वीडियो. अब मेरे को लगता नहीं है कि आप उनको उनसे ज्यादा बड़ा खिलाड़ी. अपने क्या लग रहा है आपको, कौन है ज्यादा बड़ा खिलाड़ी अब?
1: मेरा बॉस है.
3: ये है आपकी बाबा.
0: Prime Minister in Sikkim और गोल भी मार दिया. बताइए कौन है बड़ा खिलाड़ी?
1: देखिए प्राइम मिनिस्टर के बारे में तो लगभग सब जान ही चुके हैं. आई हैव नेवर सीन ए पर्सन सो डिसिप्लिन इन लाइफ, सो फोकस एंड फिट एज मोदी जी. व्हेन आई वाज मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, प्राइम मिनिस्टर टोल्ड मी, किरण जी जो खेलो इंडिया चल रहा है, वी स्टार्टेड खेलो इंडिया, जो खेलो इंडिया चल रहा है वो खिलाड़ियों के लिए है. अब पूरे इंडियंस को फिट बनाना है. एवरी इंडियन मस्ट बी फिट. इफ यू आर फिट यू कैन मेक योर कंट्री फिट एंड फाइन. तो फिर दैट फिट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड. आई थॉट अबाउट कि प्राइम मिनिस्टर वांट्स द फिटनेस कल्चर टू प्रिवेल ऑल अराउंड. सो द बेस्ट थिंग वुड बी फिट इंडिया मूवमेंट वेयर वी ब्रिंग अलॉन्ग एवरीबॉडी. और आप देखो अभी फिटनेस के लिए जागरूकते आए हैं. एवरीवेयर पीपल आर नाउ फिटनेस फ्रीक. कोई साइकिल से चल रहे हैं, कोई मैराथन कर रहे हैं, कोई क्लाइंबिंग कर रहे हैं, कोई जंप मार रहा है, कोई वॉकिंग कर रहा है. यू कैन डू एनीथिंग बट लाइफ हैज़ टू बी एक्टिव. No matter how brilliant you are mentally, if you are not physically fit, then you will put yourself into trouble.
0: You know, I saw a very nice video of yours. जब I think आप वाजपेयी जी के साथ बैठे हुए थे और उनके साथ जो आपका interaction था, ऐसा ही कोई interaction आपका पहला कोई प्रधानमंत्री के साथ जो आपको याद हो? You know, which you really take away जब आपको कुछ एक बात वहाँ पर when you know so कहते हैं कि एक बात it stayed with you.
1: नहीं एक तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ मैं तो बहुत यंग छोटा था बहुत मैच्योर भी नहीं था लेकिन मैंने इलेक्शन लड़ा और हार गए. बीजेपी को नॉर्थ ईस्ट में उस समय कोई जानते भी नहीं थे और कोई वोट देते भी नहीं थे. मैं तो काफ़ी करीबी से बीजेपी को देखा है. नेशनलिस्ट पार्टी है, ये पार्टी सरकार में आएगा तो बॉर्डर एरिया हमारा जो दूर दराज के लोगों को ध्यान रखेगा, इंडिया फर्स्ट, थोड़ा जोश होगा. कांग्रेस से हम कोई उम्मीद नहीं था तो हमने बीजेपी ज्वाइन किया लेकिन इलेक्शन हार गए. इलेक्शन हारने के बाद हम अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास गए. मैं बहुत दुखी भी था, अटल जी मैं तो चुनाव हार गया है. तो हमारे साथ में राम नाईक जी बैठे हुए थे, पेट्रोलियम मिनिस्टर थे और बाद में यूपी का गवर्नर बने. तो मैंने जैसे ही कहा अटल जी मैं तो चुनाव हार गए हूँ क्या करूँ, बीच में तुरंत राम नाईक जी ने बोला अरे किरण तुम टेंशन मत लो, अटल जी भी पहले चुनाव हारे थे. तो फिर अटल जी ने कहा अरे राम नाईक जी का चले तो सबको पहले चुनाव हारना चाहिए क्या. तो फिर मुझे कमीशन में लाया, काम करने का मौका दिया. मैं पार्टी का नेशनल सेक्रेटरी था लेकिन मैं कमीशन में 5 ईयर्स काम किया. लेकिन 2004 में मैं पूरा तैयारी से काम किया, लोगों ने फिर भारी मतदान किया, मुझे वेरी यंग एज में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया. और जिस तरीके से मैंने काम किया, आप शायद उस समय थी, मुझे ख्याल नहीं आ रहा है, 2008 में पूरा मीडिया के एक कॉन्क्लेव हुआ, मीडिया के आपस में एक वोटिंग हुआ हु इज द बेस्ट यंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. तो मैं खुशी से बताना चाहता हूँ कि मुझे दिया गया है बेस्ट यंग पार्लियामेंट्रियन. आई वॉज वेरी एक्टिव. मैं इसलिए एक्टिव भी था, एक तो जरूरी भी था और मैं इसको एक ड्यूटी के हिसाब से मानता हूँ. हमारा प्रदेश अरुणाचल प्रदेश जो है बहुत बड़ा प्रदेश है, पॉपुलेशन कम है तो 2 MP है. मैं सोचता था उत्तर प्रदेश का 80 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, बिहार का 40 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, महाराष्ट्र का 48 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, एक साथ आने से तो हिल जाते हैं. हमारे तो 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, मैं नहीं बोलूंगा तो और कौन बोलेंगे. तो मैंने तय किया पहला ही दिन कि मैं भले अकेला हूं लेकिन मैं 20 MP का बराबर बोलेगा मैं.
0: क्या बात.
1: तो मैंने काफी मेहनत किया.
0: Yes, this young lady here.
4: What legislative or policy reforms do you think necessary to further ease access to entrepreneurship, justice or public service opportunities for young citizens?
1: Excellent question. There are 3 parts in Ministry of Law and Justice. So when I was law minister, I had focus in 3 sectors. One is the Department of Law, which means all things we do must be legal. Every action of the government must be legally tenable. So I focus on the legality of the entire conduct of the government. Second is the legislative branch, that is called Department of Legislative, and that is where you draft the laws. How you draft the law is very

0: When you talk about rule of law, you must ensure that the justice must be delivered at the doorstep of the citizens. My priority as a law, Minister of Law and Justice that time was to bridge the gap between justice and common man. If a common man struggles to obtain justice, that is most unfortunate. And in India, more than 5 crore cases are pending in different courts. Some of the cases are as old as 20, 30 years waiting for the justice to come. Many people have left this world. Justice never came. So I thought as a Minister of Law and Justice, I must ensure that judiciary must take the lead role.
1: Mm.
0: Why judges should only decide on important critical cases? There are so many cases which are not in the glaring media image, but they are extremely important for the person to get the basic justice. So, to do that, strengthening of the infrastructure, like good courts, mobile justice delivery system, the Lokayukt, the Lok Adalats, all other peripheral things which are required to strengthen the justice delivery system. And then also, I had a very close interaction with the judges to ensure that a judge should not struggle in delivering justice. Appointment of the judges, giving them facilities, and for the first time, 7 crore amount was passed by the cabinet to strengthen the infrastructure in the judiciary, from the lower courts right up to Supreme Court. We did so much. So I feel that being a big country, most populous nation in the world, we do have challenges, but our government is doing the best, and the amount of money allocated and the infrastructure built from 1947 to 2014.
1: Mm.
0: And since Modi ji became Prime Minister 2014 to now, we have built and allocated more than double of what was done in last 68 years.
1: Mm.
0: We have done much more.
1: Because you know, sir, jab hota ye hai ki when the wheels of justice move slowly, people start losing patience. Abhi dekhiye kya hua. Log aisa kehne lage hain ki ab faisla sansad mein nahi, sadak pe hoga. क्या कहेंगे इसको? लोग कहते हैं भैया बहुत हो गया, अब हम जनता का फैसला करेगी, सड़क पे फैसला होगा।
0: एनार्किस्ट जो होते हैं वो ये सब सोचते हैं कि भले हम चुनाव हार जाए लेकिन मैं सड़क से तय करूंगा कि कानून क्या होना चाहिए देश का। तो डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? बेसिक टेनेट्स ऑफ डेमोक्रेसी इज एवरी सिटीजन रूल देमसेल्फ थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। द इलेक्टोरल कॉलेज इज डिफाइंड बाय द पार्लियामेंट। एवरीबॉडी वोट्स। So in a way, the citizens govern themselves through their elected government and elected representatives.
1: But क्या youth भी ये believe करता है? क्योंकि जो youth जंतर मंतर पर उतरता है, वो कहता है आप हमारी बात नहीं सुन रहे हो, हम अपनी बात खुद करें।
0: ऐसा सब youth नहीं है, कुछ misguided youth होते हैं, तो उसको भी सीधा करना होगा ना, उसको भी समझाना होगा। सीधा मतलब मैं डंडा मार के नहीं बोल रहा हूँ, समझाना है प्यार से। क्या है कि ये unfortunate भी है, I am giving a very serious note. There are many civilizations in the world, Chinese civilization, Japanese, Indian civilizations, Europe mein bhi hai. To kabhi China mein aap suna hai kya wo Zenzi ya Western concept hote hai? India mein hi kyun hai? Kyunki basically our knowledge is English fit. British common law, English common law, American influence kafi hota hai. तो ये जो सोशल मीडिया में जो लोग ज़्यादा रहते हैं तो उनको एक तरीके से ये वेस्टर्न कंसेप्ट है, जेंजी हमारा कंसेप्ट है नहीं, हम तो युवा बोलते हैं, यूथ, एडल्ट एंड सीनियर्स। तो ये जेंजी कहाँ से घुसा दिया बीच में? पूरा डेफिनेशन के साथ इस साल पैदा होने वाला को अल्फा जेंजी। तो ये कंसेप्ट पैदा करके रेस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा आपका राइट को फोकस कर दिया है, जबकि बैलेंस होना चाहिए। जब जॉन एफ कैनेडी ने अमेरिका में कहा था 1960 का प्रेसिडेंशियल एड्रेस में कि आस्क नॉट व्हाट अमेरिका कैन गिव यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर अमेरिका। तभी तो यू सुपरस्टार बना, सुपर पावर बना है वो देश। हम जितना मांगता है कि मेरे लिए क्या कर रहा है सरकार या देश, ये भी तो पूछो कि मैं देश के लिए क्या कर रहा हूं। वो दोनों

0: होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट विच कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज, बट फंडामेंटल ड्यूटी इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट।
1: बट दे आर सेइंग दैट इवन टू आस्क दीस क्वेश्चंस इज आवर ड्यूटी। सरकार हमारी सुन नहीं रही है, हम सुन नहीं रही है, अब हम सड़क पे सुनेंगे,
0: ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो हम बच्चे हैं, समझाएंगे अच्छा से, हम अपने लोग हैं। देखो मिसगाइडेड हो जाते हैं बच्चे जो है आजकल, माँ बाप से ज़्यादा सोशल मीडिया से ज्ञान लेता होगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि टीचर और माँ बाप से ज्ञान लेना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हम लोग मैं गांव से पैदल जाके डिस्ट्रिक्ट में जा करके दो दिन के बाद एक किताब मिलता था लाइब्रेरी से पढ़ के, फिर तीन दिन के बाद वापस जाके देना, तो एक्वायर नॉलेज वॉज सो डिफिकल्ट। हियर इन द वेरी इंस्टेंट केसेस यू आर एक्वायरिंग नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन विच कैन बी मिस इन्फॉर्मेशन। तो इसलिए यूथ ऑफ इंडिया मस्ट एंश्योर दैट इनस्टेबिलिटी क्रिएट मत करो, रूल ऑफ लॉ शुड फॉलो द नॉर्म्स दैट एवरीबडी मस्ट बी गवर्न बाय द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसके अंदर कुछ भी बोलो, आप कुछ भी बोल सकते हैं, आपका राइट है, बस देश का खिलाफ मत बोलो। हमको जितना गाली देना दे दो, मगर देश का खिलाफ गाली मत दो, बस।
2: सर हम आपको रेगुलरली वॉच करते हैं संसद टीवी। मेरा क्वेश्चन है सर, डीलिमिटेशन जो अभी चल रहा है लोकसभा में, बिल पास नहीं हो पाया था, पर सर जैसे बिहार जैसा स्टेट है जहाँ पे 40 लोकसभा सीट है, और सर सेम अपन कंपेयर करते हैं तमिलनाडु की, वो भी अभी 40 है, पर सर जब डीलिमिटेशन होगा तो आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर तो 850 ऑलमोस्ट सीट होने वाली, तो सर जो बिहार को जो फ़ायदा होगा लोकसभा सीट बढ़ने से, सर सेम फ़ायदा सदर्न स्टेट्स को नहीं होगा? तो नहीं सर, उतना नहीं होगा। तो सर गवर्नमेंट ऐसे क्या मेजर्स ले रही है जैसे कि सदर्न स्टेट डिस्प्रोपोर्शनली अफेक्ट ना हो, जिन्होंने पॉपुलेशन को कंट्रोल रखे हैं जब से हम आजाद हुए पिछले 70 साल।
1: आप कौन से स्टेट से हो?
2: मध्य प्रदेश।
1: नाइस, देखिए वो ठीक मध्य में बैठे और दोनों का ख्याल है, मध्य प्रदेश।
0: बात कर रहे हैं आप।
2: यस सर, तो मेरा सवाल ये कि मतलब जो भी स्टेप सरकार ले वो सदर्न स्टेट्स को डिस्प्रोपोर्शनली।
0: ऐसा है, आपको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, आपका इन्फॉर्मेशन सही नहीं है, और अमिती यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला इन्फॉर्मेशन सही रखना ज़रूरी है, क्योंकि आप आगे देश को भी समझाना है, समाज को भी। डिलिमिटेशन जो हम लोगों ने प्रपोज किया वो वुमेन रिजर्वेशन से लिंक्ड है।
2: यस,
0: हमने ये कहा कि अभी 543 लोकसभा सीट्स है वर्तमान में लोकसभा में, उसको हम 50% बढ़ाएंगे। जो 50% बढ़ाएंगे, इसका कैसे आप अर्थ निकल सकता है कि तमिलनाडु को कम होगा बिहार को ज़्यादा होगा? बिहार का 40 सीट से तमिलनाडु का 39 है, 40 नहीं है, तमिलनाडु का 39 है। और जब 50% बढ़ेगा तो 40 वाला 60 होगा, जाहिर सी बात है, सिंपल कैलकुलेशन। यूपी का अभी 80 सीट है तो 120 हो जाएगा, जिसका दो सीट है वो 3 हो जाएगा। इतना सिंपल एरिथमेटिक। पॉलिटिकली इसको डिरेल करने के लिए कुछ लोगों ने गलत तरीके से दुष्प्रचार किया है, मगर बाद में क्लियर हो गया। अभी तो लगभग मैक्सिमम जो पार्टी उसमें अगेंस्ट में वोट किए थे सब बोला कि नहीं, उसमें कांग्रेस पार्टी ने बहुत झूठ फैलाया, अब क्लियर हो गया, ज़्यादातर लोग अब समर्थन करेंगे अगले बार बिल लाने से। तो इसलिए किसी भी स्टेट को हम नुकसान नहीं पहुँचाना है और हम नहीं पहुँचाएंगे। फंडामेंटल बात क्या है? द इलेक्टोरल सिस्टम इज ऑल अबाउट प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन, एक आदमी एक वोट, यही है ना फंडा डेमोक्रेसी में, कि आप 10 करोड़ का मालिक है तो आपको दो वोट तो नहीं हो जाएगा। बिलियनियर भी वन वोट, आम आदमी भी वन वोट। तो इसमें आप सोचिए, किसी किसी स्टेट में एक MLA कॉन्स्टिट्यूंसी में 400,000 वोटर है, किसी किसी जैसे लक्षद्वीप में एक MP है 53,000 वोट्स है। तो ये ज्योग्राफी के लिए भी फर्क होता है। तीसरा, एक पद्मजा मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, इंडिया सबसे चैलेंजिंग MPs के लिए मैं बोल रहा हूँ, ब्रिटेन में 70,000 वोटर में एक MP है, और ब्रिटेन का पॉपुलेशन इज 65 मिलियन, एंड ईच मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन ब्रिटेन रिप्रेजेंट 70,000 पीपल। इन इंडिया ईच मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिप्रेजेंट 2.5 मिलियन पीपल। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में ईच मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिप्रेजेंट

0: 12,000 people, 13,000 people. Here we represent 2.25 lakhs. तो इंडिया में वैसे हम पॉपुलेशन यूके से 50 गुना ज्यादा, उनका एमपीए 620, हमारे एमपीए 543, फिर भी बोलता है हमारे एमपी कम ज्यादा है, क्यों बढ़ाना है? ये देखिए एक बेसिक, हम ये नहीं कह रहे ना कि एमपी 543 से हम 10,000 बनाने जा रहे हैं, मुश्किल से 816 या 820 के आसपास जाएंगे. वो तो बनता है, वी आर द मोस्ट पॉपुलस नेशन ऑन द अर्थ, इतना तो बनता
1: सर,
0: है.
1: हाल फिलहाल में होने वाला है ये, क्योंकि बड़ी सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज है कि अभी प्रोरोग नहीं किया गया है तो अभी ले आएंगे, अभी ले आएंगे, पता नहीं कब रिजिजू जी हमें बिना बताए ये बिल चुपके से ले आएंगे.
0: नहीं, वो अभी हम आपको बोलेंगे तो पूरा हंगामा हो जाएगा आज. मैं बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन
1: संसद में ही तो हंगामा होता है.
0: नहीं, प्रोरोग तो इसलिए नहीं किया कि कभी कभी पहले भी हुए, ये फर्स्ट टाइम नहीं है. हम जब पार्लियामेंट खत्म करते हैं तो साइनेडाई करते हैं फॉर एडजॉर्नमेंट, अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना, लेकिन अभी हम उसको प्रोरोग नहीं किया तो ये कोई पहले बार नहीं है. जब चाहे पार्लियामेंट बुला सकते हैं,
1: अभी बुलाएंगे हाल फिलहाल में,
0: वो हम नहीं कहेंगे, लेकिन बुलाने का प्रावधान है.
1: मतलब ऐसा तो नहीं है कि नंबर का वेट हो रहा है?
0: नहीं नहीं, मैं इतना दीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि रूल के बात है तो बुलाने का प्रावधान है.
1: सर ये बताइए कि यू नो व्हेनेवर वी हैव एनालाइज्ड द नंबर्स एंड नाउ सडनली एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट दिस जेन जी वोट, बट आई रिमेंबर MY वाज समथिंग दैट वी ट्रैक्ड इन इलेक्शंस थ्रू आउट एंड इवन इन द 2014 इलेक्शंस. आई रिमेंबर पोस्टपोन एनालिसिस फाउंड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ यूथ, स्पेशली स्किल्ड एंड एजुकेटेड यूथ, वॉज वोटिंग फॉर द बीजेपी. व्हाई इज दैट? What do you think are the factors that work there, and has that changed on the ground now after all these protests and Jantar Mantar uprising?
0: See, the aspiration of the youth has increased tremendously. Social media started trickling down around 2008, 9, 10 in Facebook, and slowly then Twitter came, then Instagram and all. When we came to power, when Modi ji became Prime Minister, the social media started at large scale. So the aspiration of the youth have risen. So the youth of that time, which could not gain enough of opportunity for themselves, they thought we need a new leader. India could not become a developed nation in last 70 years. तो ये हकीकत है ना? 1947 में हम आजादी प्राप्त किए हैं. अमीर तो नहीं हुआ ना? ये तो मेरे कहने से आपका कहने से क्या होगा? India is not a rich country. India is not a developed country. ये तो हकीकत है. कौन करेंगे इंडिया को अमीर ताकतवर देश, कौन बनाएंगे? हमारे पास कोई लक्ष्य भी तो नहीं था ना. देयर वाज नो सेट टारगेट, व्हेन विल इंडिया बिकम रिच एंड पावरफुल एंड डेवलप्ड. तो पीपल स्टार्टेड थिंकिंग, स्पेशली द यूथ, कि भाई आपका जिंदगी तो चले गए हैं पुराने लोग, आप इंडिया तो अमीर राष्ट्र नहीं बन पाया, हमारा जीवन काल में इंडिया मस्ट बी रिच पावरफुल एंड प्रॉस्पेरस. ये तो ठान लिया. तो सबने देखा कि ये मोदी जी के लीडरशिप में ही हो पाएगा.
1: आपको लगता है
0: दैट इज हाउ द यूथ ऑफ इंडिया इन अ मैसिव स्केल वोटेड फॉर मोदी जी एंड ही क्रिएटेड रिकॉर्ड. एंड देन आफ्टर 2014 द टारगेट वाज सेट 2047 इंडिया विल बी डेवलप्ड नेशन एंड देन सो मेनी स्टेप्स आर टेकन ऑन द वे वन बाय वन आफ्टर अनदर. So that is how I feel the youth are feeling, that if they have to realize their dreams, that they need a visionary statesman, a great leader like Modi ji to continue to lead us. And that is true today. India is the fastest growing economy in the world.
1: Do you think
0: that? हम तो रोते थे उस समय. अरे इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ इतना पीछे, चाइना जैसे हम कब ग्रो करेंगे? हम भी कब इंडोनेशिया जैसे, सिंगापुर जैसे हम भी कब ग्रो करेंगे? We used to dream. And today is the reality. I think everybody is, ये किस्मत वाले हैं आप लोग, वेरी लक्की. इन आवर टाइम व्हेन यू आर द लीडिंग यूथ ऑफ दिस कंट्री, इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. ये तो किस्मत की बात है ना.
1: ओके, दिस यंग मैन हियर.
2: सर, मी बीइंग अ स्टूडेंट हियर एट एमिटी, अपार्ट फ्रॉम दैट, एक मैं गौरवान्वित स्वयंसेवक भी हूँ. आपके लिए एक सवाल जो मैं पूछना चाहूँगा, दैट यू बीइंग द मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, हाउ डिफिकल्ट डू यू फाइंड इट कि सभी पार्टियों के बीच में आप वो समन्वय बना पाएं? क्योंकि संसद के कई सत्रों में हम देख रहे हैं कि संसद कई दिनों तक नहीं चलती. तो जब संसद ही नहीं चलेगी तो फिर फैसले संसद में नहीं तो कैसे सड़क पर तो हो नहीं सकते जैसा पद्मजा जी ने कहा।
1: सर मैं इसमें एक सवाल जोड़ना चाहती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। हम कल ही एक डिस्कशन कर रहे थे टीवी पे, जहाँ पे एक पत्रकार हैं बहुत वरिष्ठ, उन्होंने कहा कि देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ कम्युनिकेशन, सरकार और विपक्ष अब एक दूसरे से बात ही नहीं करते। फनी थिंग इज हमने पीपल्स संसद इसलिए शुरू की क्योंकि पिछले पार्लियामेंट सेशन में संसद में डिस्कशन हो ही नहीं पा रहा था। क्यों ये ब्रेकडाउन है?
0: ब्रेकडाउन नहीं बोलेंगे, हमारा बात वो नहीं मानते उनके बाद हम नहीं मानते, ये हो सकता है, ब्रेकडाउन नहीं है, डिसएग्रीमेंट है। देखिए नंबर वन मैं क्लैरिफाई कर देता हूं, पार्लियामेंट नहीं चलता है ऐसा नहीं है। हाँ डिबेट कम होता है या डिबेट नहीं होता ये बोलिए, क्योंकि सरकार मेजोरिटी है, हम चाहेगा तो बिल हम एनी टाइम पास कराते ही हैं। मान लो हमको बजट पास करना है, बजट पास नहीं करेंगे तो देश का खर्चा कहाँ से आएगा, सैलरी कहाँ से आएगा, आपका यहाँ जो इतना आपको माँ बाप पैसा भेजते हैं वो कहाँ से आएगा? तो बजट तो पास करना ही, दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट। तो विपक्ष हंगामा करने से भी हम तो पारित करना ही है, देश को तो चलाना है, तो पार्लियामेंट नहीं चलता ऐसा नहीं। लेकिन जो भी बिल पार्लियामेंट में पास करता है थोड़ा स्क्रूटनी होना चाहिए, एक्सटेंसिव डिबेट्स एंड डिस्कशन मस्ट बी कैरिड आउट टू एंश्योर दैट द लेजिस्लेटिव प्रोसेस इज प्रॉपरली डन एंड ईच मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन गिव देयर इनपुट्स। तो कभी कभी क्या होता है कि हम बिजनेस एडवाइजरी बैठते हैं, हम कहते हैं कि मान लो ये हम एक बिल को लाने जा रहे हैं, हम मान लो स्पोर्ट्स का बिल लेने जा रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि कितना घंटा चर्चा करना चाहिए। तो अपोजिशन से हम पूछते हैं, मेरा काम है पूछना, तो मैं पूछता हूँ, तो अपोजिशन कांग्रेस वाला कम्युनिस्ट वाला कहेंगे कि इस पर हम 6 घंटा चाहते हैं चर्चा, तो हम कहते हैं कि ठीक है 6 घंटा ठीक है, तो फाइनल कर लिया। जब चर्चा करने के लिए बिल टेबल करते हैं वो दूसरा इशू लेकर के हंगामा शुरू कर देते हैं, प्लाकार्ड लेकर के गाला गाली जिंदाबाद मुर्दाबाद शुरू हो जाते हैं। मैंने कहा कि आप हंगामा कर रहे हैं बाहर कीजिए, या तो पार्लियामेंट में बिल पास होने दीजिए। वो हंगामा करते हैं, तो एक दिन हमने स्थगित कर दिया, अगले दिन फिर हम बिल टेबल करते हैं, फिर स्थगित हो जाता है। तो थर्ड डे में हम थोड़ा सा नाराज हो जाते हैं, हम कहते हैं कि आप चर्चा के लिए तैयार कीजिए नहीं तो हम पारित कर देंगे। वो नहीं मानते, फिर हम मजबूरी में पारित करते हैं। तो पार्लियामेंट ठप नहीं होते हैं,
1: पर कभी ऐसा होता है बाद में जाके उनसे पूछते हैं कि भाई तुमने तो मेरे चेंबर में कुछ और बोला था बाहर जाके, ऐसा
0: होता है। मैंने कहीं कहा कि वो लोग कहा राजनीति है, वो तो मजबूरी से। अब कभी कभी कांग्रेस का नेता कहते हैं कि हम तो चाहते हैं लेकिन मेरा नेता ने मना किया, क्या करो। तो फिर ऐसे होता है राजनीति में। देखिए पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में अगर पार्लियामेंट में हंगामा होता है तो ये कोई नई बात नहीं है,
1: क्योंकि ना मैं जब ब्रेकडाउन की बात कर रही हूँ, आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल। यहाँ पे कितने लोग हैं, हाउ मेनी पीपल आर हियर हु आर कैरिंग कैश ऑन देम, रेज योर हैंड्स। हार्डली एनीवन, इफ यू सी ऑलमोस्ट बेली व्हाट 10-20%, बिकॉज नाउ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैव स्टार्टेड डूइंग डिजिटल ट्रांजैक्शन UPI। येट व्हेन यू ब्रिंग इन द MDR एंड द एंटायर डिबेट अराउंड बिकम्स, लोग कहते हैं हमें सरकार पे विश्वास ही नहीं है कि आज आप 4% पे टैक्स लगा रहे हो, कल आप 100% लोगों के डिजिटल ट्रांजैक्शन पे, देयर इज जस्ट अ लैक ऑफ ट्रस्ट। बार बार हम जब पूछते हैं ना विपक्ष से, वो बार बार एक ही चीज बोलते हैं, हम सरकार को ट्रस्ट नहीं कर सकते।
0: लोग उसको ट्रस्ट नहीं करते इसलिए वो अपोजिशन में बैठे हैं, हमको ट्रस्ट करते हैं इसलिए हम तो सत्ता में सरकार चला रहे हैं। देखिए जब हम सर्विस लेते हैं तो सर्विस का चार्ज देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ये फ्री कल्चर जो अरविंद केजरीवाल जो फैलाते हैं बीमारी, ये नहीं करना चाहिए, लोगों को कमज़ोर बीमारी बना देंगे। हर चीज़ उस जमाने में गुरुजी का वो ये दक्षिणा भी होता है ना, हर चीज़ का कीमत होता है, फ्री में कोई चीज़ नहीं होता है, आराम हराम होता है। आपको अगर सर्विस अच्छा चाहिए तो आपको पे करना होगा, लेकिन इतना पे करना है जितना आप दे सकते हैं। अगर सरकार इतना अनथॉटफुल है और एग्जॉर्बिटेंट रेट और ये सब लगाएंगे तो पब्लिक नाराज हो जाएंगे। लेकिन अपोजिशन का नैरेटिव में नहीं जाना है कि आप कोई संस्था, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई बॉडी बनाया तो वो जिंदा रखना चाहिए ना। अगर आप 100 रुपया का ट्रांजेक्शन करता है और आपको 5 रुपया काट लिया, तब तो आप कह सकते हैं अरे बहुत ज़्यादा हो गया। बेयर मिनिमम जो सर्विस चार्ज लगता है वो तो हर देश में हर समाज में लगता है। इसको लेकर के मुझे लगता है कि अपोजिशन का प्रोपोगंडा में हमको पढ़ना नहीं चाहिए। अगर बहुत चीज जो है अनबेरेबल है या बिल्कुल ये जायज नहीं है तो फिर जनता के पास बोलने का अधिकार है. तो सरकार तो जनता का बात सुनता ही है हमेशा.
1: On a final note, I want to ask you, sir, आपने हमने शुरुआत में when we began, we said कि आपने एक reply किया था अपने trollers को कि मैं यहाँ का खिलाड़ी हूँ. और आपके कई हमने different aspects देखे हैं, you know, the athlete, the swimmer, motorcycle rider, but there is one which we are not going to let you go without, which is that of a very accomplished singer. I was surprised to find out. तो आपका एक बहुत हाल फिलहाल का वीडियो वायरल जा रहा था जब कोई बात बिगड़ जाए जब आप गा रहे थे. अगर आप anything which is to your mind, anything dedicated to the youth, anything that you off the top of your head want to dedicate.
0: You want me to sing?
1: Yes, please.
0: गाना तो अभी मूड में नहीं हो ना. गाना गाने के लिए मूड में होना जरूरी है.
1: Applause.
0: अरे उसके लिए मैं नहीं कह रहा.
1: An artist is only encouraged and put in the mood by his audience.
0: ऐसा है, मैं बहुत sporty आदमी हूँ. मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन क्या है कभी कभी मैं तो गाना गा देता हूँ, लोग तालियां भी बजाते हैं, बाद में मेरा बीबी मुझे डांटते हैं. कहते कि तुमको गाना गाने के लिए बोला है, तुम एक लाइन नमूना गाना चाहता, तुम पूरा स्टेंजा का गाने का क्या जरूरत है. बोलता है वैसे तो मैं गाना गाता नहीं हूँ, लेकिन ऐसे शाम को कभी फेस्टिवल वगैरह में मैं गाता हूँ, लेकिन वो अपने लिए मस्ती के लिए. मैं एक लाइन गा देता हूँ
1: प्लीज, एंड आई अश्योर आई विल कॉल अप मैम एंड से इस बार डांटिए मत.
0: मैं आधा से गा देता हूँ, लंबा गाने का इतना पेशेंस बच्चों में नहीं होगा. तू जो के

आजा तेरे आंचल में प्यार से मैं भर दूं, प्यार से मैं भर दूं खुशियां जा।

0: तुझे ढूंढे जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। बहुत मेहनत से गाया मैंने।
1: सर जब आपने कहा था यहाँ का खिलाड़ी मैं हूँ, आई थिंक ऑल ऑफ अस वुड अग्री टू दैट। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू इन द पीपल्स संसद।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
2: देश का टायर जेके टायर।
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
3: अरे मेरे राजा।

0: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज।
1: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
0: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
2: डॉक्टर रोमा मैनुअल वाइंडिंग, चार लोगों के पास है
3: कुछ इससे भी अनोखा।
2: कमला पसंद, सिर्फ एक अनोखा स्वाद, कमला पसंद पान मसाला।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा,
4: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
5: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा क्या स्वाद है।
6: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: principle for this transition?
1: So I'll start with what one of the CEOs said. He said 2 years back when he came here for the first time, he came here thinking that, yes, this is a country which has an intention to develop the semiconductor industry. And he says that in just 2 years from the first visit, he's looking at execution which has happened. 5 plants already doing commercial production out of the 12 plants which we approved in the Semicon 1.0. Lot of ecosystem partners coming here already. Very good progress on the talent development. Phenomenal. 70,000 design engineers trained. So the magnitude that they have seen in the first phase of the Semicon gives the entire world the confidence that India is ready for to be a major player in the semiconductor industry. And that's not just one person or two persons. The entire semiconductor industry who have visited, the difference from the, let's say, the 4 years before when we started this entire program to now is from dreams or aspirations to intention to will they be able to do to confidence. That change we have seen in the last...
0: You've seen that confidence.
1: Absolutely.
0: Because, you know, when you look around you, the sheer scale of what you have put up, it's mind-blowing. What is the kind of feedback that you get from people? You know,
1: we have 600 exhibits here, 600 pavilions here. Countries like Singapore, countries like Japan, South Korea, they have come in large numbers. And each one of them says, and in fact, this kind of, this magnitude, you won't find in many countries.
0: Yeah.
1: Maybe in Japan, you'll find similar. Maybe in South Korea, you'll find similar. Maybe in China, you'll find similar. No other country would find this kind of, each and every part of the value chain is present here today. Each and every part of the value chain.
0: Mm.
1: So that's what gives the confidence. The feedback is very positive. People believe that whatever we said, we have delivered. So somebody was saying the say-do ratio is very high.
0: Mm.
1: So whatever you said has been done. More has been done than what we actually promised in the Semicon 1.0. Mm. So that is what gives confidence. Yes, but I believe, frankly, I believe that this is just the foundation.
0: Were you nervous when you set out to, when you set out on this mission, when it was starting? And let's be very honest, a lot of people were very cynical. They said, you know, India is miles behind the rest of the world. There is no way we are going to catch up. Kitna humne investment kiya hai. You know, this is more shoshebazi than actual deliverables. Now, when you see all, you know, the world converging over here, what do you feel now? And what is the difference between when you had started to when you see around you today at Yashobo?
1: So, I still believe that we have just set the foundation.
0: Mm.
1: Whatever we have done is probably more than what we would have done in 70 years. But still, it is just the foundation. It is just the foundation.
0: Mm.
1: And this is the time when we have to put in the extra efforts to really take off, build the industry over and above what we have been able to do in the first 5 years of this program or first 4 years of this program. Now we have to build it on the 6 pillars. Mm. The 6 pillars are pillar number 1. Is design capability. First version, we had about 105 startups who could get into deep tech design, and about 20 of them got VC funding. We expected, we'll be very happy if we get 1 VC funding. We got 20, fine. But this time we have to think bigger. So we are targeting 200 VC funded startups in deep tech semiconductor design as a part of the Semicon 2.0. Second pillar is materials and machines. And that's very important because I'll give you the example of Japan. Japan used to be the largest semiconductor manufacturer for many decades. Then they lost out to South Korea and Taiwan and then to China. A few years ago, when they decided to come back in this space, they could very quickly come up because the ecosystem was there. And ecosystem is very complex, more than 500 gases, chemicals. And these are very, very, very, very, very pure. Very pure as in, out of 10 crore particles, only 1 particle can be impure. So imagine a city like Delhi and just 1 square meter area can be faulty. So that kind of purity is there. So getting the materials and machines is extremely important, and we have got extremely good response on that, much more than what I expected ever. Third is getting more fabs. Fourth is getting more ATMP units, and we'll be focusing more on the advanced packaging. Because Moore's law is out. Now it's advanced packaging which is adding the value. And advanced packaging is very complex, but we must get it. We got one of the technologies which is world's latest technology, three-dimensional packaging. That plant is now getting constructed as part of Semicon 1.0. But we have to work a lot more focused on the advanced packaging. Fifth pillar is R&D, and sixth pillar is talent. In the first version, we focused more on the design talent. So we trained 70,000 students, engineers, in 400 universities. If you count a similar program outside China, I don't know.
0: I remember you had raised a target of about 1 lakh students. You're already 70% there.
1: Yeah, yeah. So that's like 1 lakh was one decade. This is in four years, we have been able to do 70,000. So it's good. But this time we'll be having an equally large target for the technicians. So we are taking 1 lakh technicians to be trained. And we have got a very good input from the industry. A program which is very structured program, L1 program, L2 program, L3 program, L4 program. So very structured program. We'll be very soon launching it for our youngsters. And I can very clearly see, given what is happening around, easily more than 1 lakh jobs will be created in the semiconductor ecosystem in the coming years. In coming 3 to 4 years itself.
0: You know, and I keep noticing, sir, bar-bar aap jo ek shabd ka istamal kar rahe hain, ecosystem. Rather than focus only on fab, kyunki Pradhan Mantri ne bhi jab apni yahan par apna opening bhashan diya tha, unhone kaha tha ki ecosystem creation bahut zaruri hai. Abhi tak ye ecosystem hamare desh mein kyun nahi tha? Aur kya aapne aisa alag kiya hai pehle ki sarkaron se, pehle ke jo the regimes which were there earlier, what have you done differently and why this इतना ज्यादा फोकस इकोसिस्टम पर क्यों है, क्यों ये जरूरी है हमारे देश के लिए?
1: इकोसिस्टम बहुत ज्यादा जरूरी है. जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको जापान का, जापान में इकोसिस्टम होने के कारण दे कुड वेरी इमीडिएटली कम अप. इकोसिस्टम नहीं होता, देयर आर सो मेनी कंट्रीज व्हिच हैव फेल्ड. और उनके फेलियर के पीछे एक ही रीजन था कि उन्होंने जस्ट कहा कि एक फैब लेके आ जाओ, बाकी सब अपना आप हो जाएगा. नहीं,
0: हमारे देश में क्यों नहीं बना बेका की इकोसिस्टम?
1: तो सेमीकंडक्टर का प्रोग्राम ही तो अभी चालू हुआ है. सेमीकंडक्टर का प्रोग्राम ही अभी चालू हुआ.
0: तो आपने क्या डिफरेंट किया कि अब इकोसिस्टम, मतलब
2: थॉट अबाउट द इकोसिस्टम,
0: द पॉसिबिलिटी वाज ऑलवेज देयर दैट सच इकोसिस्टम कैन एग्जिस्ट इन आवर कंट्री. व्हाट डिड यू डू डिफरेंटली फ्रॉम अर्लियर?
1: वी थॉट वेरी मेथोडिकली. वी लिस्टेड आउट ऑल द थिंग्स व्हिच गो इनटू सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इकोसिस्टम. सो व्हाट आर दोस थिंग्स? फॉर एग्जांपल, वन ऑफ द फर्स्ट एक्सरसाइजेस दैट वी डिड वाज 250 specialty chemicals which go into semiconductor industry. Un sab ki lambi ek list banai. Kaun unke manufacturers hai? We contacted all of them. We invited all of them to come to India. They were like surprised ki somebody is inviting them to India. Then we came to the material manufacturers. Each and every consumable which goes into semiconductor manufacturing. Un sab logon ko bulaya, un sab ki list banai. Sabko invite kiya India mein, sabke saath baatcheet ki. Kya dikkat hai aapko? क्या कर सकते हो, पार्टनर्स किस तरह के चाहिए, क्या आपको फैसिलिटीज चाहिए, वो सारी चीज़ें उनके साथ डिटेल में डिस्कस की. फिर इक्विपमेंट, ऑल द मशीन्स विच गो इनटू इट, एंड आई पर्सनली विजिटेड ऑल द अबाउट 35 वॉट मशीन मेकर्स. उनसे गए, बातचीत की, क्या आपको यहाँ पे डिफिकल्टी आती है. प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स. हाउ टू क्रिएट दैट इकोसिस्टम ऑफ प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग? किस तरह के लोग हैं जिनके साथ उनको काम करना है? वो सारी चीज़ें जब काम की. देखो, इस प्रोग्राम की बिगनिंग में प्रधानमंत्री जी ने बहुत क्लियरली हमको कहा था, डोंट टेक शॉर्टकट्स, इवन इफ इट गेट्स डिलेड बाय अ फ्यू इयर्स, डोंट वरी, बट डू समथिंग विच विल बी गुड फॉर द कंट्री फॉर नेक्स्ट 20 इयर्स. थिंक 20 इयर्स. पीएम साहब ने एकदम क्लियर हमें कहा था कि थिंक 20 इयर्स एंड थिंक ऑफ द इकोसिस्टम. कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है ह्यूमन हिस्ट्री में. दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स थिंग विच इज़ मैन्युफैक्चर. आई गिव दिस एग्जाम्पल. If you have to write your name on the nail, you can write it. It's not very difficult. But try to write the names of all your classmates in all your classes on this nail. Would that be difficult? That would be difficult. Now try writing all the textbooks on this nail. That is what semiconductor manufacturing is. That precision is very, very difficult. So getting that precision required huge amount of effort. हमने वो एफर्ट लगाया और सबके साथ ह्यूमिलिटी के साथ. बहुत ही एक हमारे देश में नहीं है इंडस्ट्री, आप आइए हमको हेल्प कीजिए एंड वील डू व्हाटएवर इज नीडेड टू बी डन. और वो हमने किया.
0: आप जब दूसरे फेज में जा रहे हैं, आप जो हमारा मिशन है उसके 2.0 वाले फेज में आप जा रहे हैं, बट कई सारे ऐसे अभी भी लोग हैं जो कहते हैं कि भाई यहाँ तो सिर्फ असेंबल हो रहा है, हम हमेशा मेक इन इंडिया की बात करते रहते हैं, बट दिस इज ओनली असेंबली, क्या कहेंगे आप उनको?
1: बहुत गलत बोलते हैं, क्योंकि उनको जानकारी नहीं है। पहली बात, अगर आप इस में जाओगे, आप देर आर सो मेनी पेविलियंस जहाँ पे इंडिया में डिजाइंड चिप्स आर नाउ गेटिंग एक्सपोर्टेड टू जापान, गेटिंग एक्सपोर्टेड टू यूरोप, गेटिंग सम ऑफ देम गेटिंग एक्सपोर्टेड इवन टू चाइना एंड टू यूएस। दीज आर द प्रोडक्ट्स विच आर गेटिंग डिजाइंड एंड मैन्युफैक्चर्ड हियर। दिस इज, एंड यू कैन गो एंड सी, दिस इज द रियालिटी। तो जो लोग नहीं जानते वो लोग एलिगेशंस लगाएंगे, लगाना उनका काम है, बट वी आर फीलिंग दैट यस, वी हैव रीच्ड अ लेवल वेयर द फाउंडेशन इज नाउ सेट, नाउ द टाइम टू बिल्ड इट इन अ बिग वे हैज कम।
0: बट व्हाट आर द स्पेसिफिक मेजर्स एंड इंसेंटिव्स दैट यू आर गिविंग? यू सेड आपने विश्व भर के जितने आपके जो ऐसी पावर्स हैं उनको बोला है कि आप आइए, हेल्प अस टेक दिस मिशन फॉरवर्ड, बट व्हाट आर द इंसेंटिव्स दैट यू आर ऑफरिंग टू देम?
1: देखो, इंसेंटिव्स बाकी दुनिया जितनी देती है उतनी हम नहीं दे सकते, ऑब्वियसली, बिकॉज हमारे फाइनेंशियल लिमिटेशंस अपने हैं, और जितना लाइक देयर आर कंट्रीज विच हैव इन्वेस्टेड क्लोज टू $600 बिलियन, हमारा इन्वेस्टमेंट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 13-15 बिलियन डॉलर्स टाइप का। फर्स्ट फेज वॉज $7-8 बिलियन, दिस इज अबाउट $17-18 बिलियन। बाकी कंट्रीज $100 बिलियन से नीचे बात नहीं करती, लेकिन हमारे यहाँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग डिज़ाइन टैलेंट। डिज़ाइन टैलेंट इज गिविंग अस दैट लॉन्ग रनवे, दैट कॉन्फिडेंस, एंड अ वेरी स्टेबल पॉलिसी। वी आर डिलीवरिंग मोर देन वॉट वी आर प्रोमिसिंग, एंड वॉट एवर इंट्रैक्शंस वी हैव विद द इंडस्ट्री, वी आर गोइंग विद द ह्यूमिलिटी विच गिव्स देम द कॉन्फिडेंस दैट यार ये देश अच्छा है, इस देश में काम करना चाहिए।
0: And you know, beyond, if you look beyond the basic silicon fabrication, where are the other areas where we're looking at a possible scope for expansion?
1: Huge scope of expansion in material and machines, Applied Material, which is one of the largest equipment manufacturing company, actually the largest equipment manufacturing company. They have announced $5 billion investment. US mein unka jo plant hai, us plant ke bahar, US में भी कभी नहीं गए वो, पहली बार इंडिया में आ रहे। दे हैव नेवर गॉन टू जापान, दे हैव नेवर गॉन टू साउथ कोरिया, नो अदर कंट्री दे हैव गॉन टू, और भारत में आ रहे।
0: व्हाई? बिकॉज़ दे बिलीव इन द विजन और इन द मिशन? व्हाट वाज इट दैट ड्रॉप?
1: इट्स अ कॉम्बिनेशन, दे बिलीव इन द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस थिंग्स।
0: You know, when I was listening to the Prime Minister speak earlier, he said that India is always about dreaming big. You're going very

0: करेंगे उस।
1: राइट नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस दैट यू फील, बिकॉज बाय नाउ यू हैव अ फेयर सेंस ऑफ यू नो वेयर इंडिया स्टैंड्स विज़वी इट्स कैपेबिलिटीज, बट देयर आर अ फ्यू थिंग्स दैट आर रियलिस्टिकली टू बी कंसिडर्ड, फॉर एग्जाम्पल रिलायबिलिटी।
0: दिस इंडस्ट्री इज टूडे थिंकिंग ऑफ एक्सपोर्टिंग टू जापान, एक्सपोर्टिंग, दे आर एक्चुअली एक्सपोर्टिंग टू जापान, कोरिया, ताइवान, टू चाइना, टू US, एंड दैट्स वॉट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज दैट गिव्स देम द कॉन्फिडेंस, वन, सेकेंड दैट establishes India as a country which can produce a quality at a cost point which gives the advantage to the customers, then only customers would buy. Better quality and better cost, lower cost, right? Then only customers would buy. So this is what we are continuously focusing, and we are very careful in the selection of the participants. We don't want it to be a system where anybody can come in. No, we are very, very meticulously selecting the participants so that the journey which happens over next 20, 30 years is a journey where we feel satisfied that yes, we developed a new industry in our country. Even, let me, with full humility, I'm saying, all the 5 units which have started commercial production, whatever capacity they can create is all fully booked already. The fab which will come in 2028, more than half of it is already booked now, even though the first production has not started. Because the world is looking at India in a very different way now. One, our Prime Minister's foreign policy has established India as a trusted partner. There is a lot of trust about India. Second, the methodical way in which we have rolled out and executed this program, that methodical way gives the confidence to the industry, and industry gives the confidence to their customers.
1: That you're a solid partner. But आपने एक बहुत जरूरी बात कही कि जब आप job creation की बात कर रहे हैं, tier 1 you are getting a very good response, but हमारे regional centers में, क्योंकि जब chips की बात करते हैं, एक तो लोगों के दिमाग में थोड़ा सा confusion होता है कि भाई chips से हमारी जिंदगी में क्या हो रहा है. Job creation is something that they can relate to. तो drone दीदी से लेकर के आपके नागपुर में बैठा हुआ एक लड़का भी सोच रहा है, When will I get to connect with this? ये हमारे regional centers में कब
0: expand? आप guess करो कि students जो chip design कर रहे हैं, जिनकी chips manufacture हुई है, सबसे छोटे से छोटा शहर आप imagine करो.
1: छोटे से छोटा.
0: चलो.
1: छोटे. दिसपुर.
0: दिसपुर में बच्चों ने design किया.
1: दिसपुर
0: में design किया.
1: Wow. I would have never imagined, because I can say perhaps 80% people won't be able to.
0: बरमपुर में. बरमपुर में design किया है.
1: बरमपुर में.
0: उड़ीसा के बरमपुर में डिजाइन किया है, जम्मू में डिजाइन किया है, पूरे देश भर में 400 यूनिवर्सिटीज इन टीयर 2, टीयर 3 से भी नीचे यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स ने डिजाइन किया ना, इंटरेक्टेड विद द स्टूडेंट्स. जो कॉन्फिडेंस उनके पास है, दुनिया में अगर आप ऐसा प्रोग्राम दुनिया में कहीं देखोगे तो यू वुडंट बी एबल टू काउंट मोर देन 20 यूनिवर्सिटीज जिसमें इस तरह का प्रोग्राम. वी हैव डन इट इन 400 यूनिवर्स. तो इमेजिन अ स्टूडेंट गोइंग टू द इंडस्ट्री एंड टेलिंग दैट I have designed this chip, I have taped it out as in manufactured it, and I have used it in a board, actually tested it. Is tarah ki capability bahut kam hai duniya mein. And we have given them industry grade tools, Cadence ka, Synopsys ka, Siemens ka, we have given them industry grade tools. Aisa nahi ki just test lab waisa.
1: You know, this is so fascinating, क्योंकि सर एक ऐसे वक्त पे हम बात कर रहे हैं जब सब लोग जेंजी की बात कर रहे हैं. एक ऐसा वक्त होता था जब एस्पिरेशन बस इतना होता था कि आप अपना इंजीनियर, डॉक्टर, शायद लॉयर बन जाएं. और अब आप कह रहे हैं कि दिसपुर या फिर बहरामपुर या फिर आई डोंट नो राव किला, बोलपुर में बैठ करके, दिस इज, वुड यू से also the language or the grammar of Gen Z that everyone keeps talking about, ek wo bhi Gen Z hai.
0: Hemant Gupta Sharma ji kehte hai na ki meri rajneeti semiconductor hai.
1: That's true though.
0: Unhone kaha mera campaign semiconductor hai. Assam mein ho raha hai plant. It's a fantastic plant, world class, Jagi Road mein. Assam se bhi, Guwahati se bhi kitna dur hai. Ye ho raha aaj. That's a reality. That's what the industry was saying. 4-5 साल पहले जब आप लोगों ने लॉन्च किया था, वी यूज टू थिंक कि इंटेंशन है. 50-60 साल से इंडिया हैज बीन सेइंग दिस. आज है कॉन्फिडेंस.
1: आपने टेपिंग आउट की बात की. आपने इनॉग्रल स्पीच में द प्राइम मिनिस्टर सेड दैट टेप आउट मींस दैट व्हेन इट गोज इनटू प्रोडक्शन फ्रॉम डिजाइन, बट द वर्क इज नॉट ओवर. फेज 1 से फेज 2 हो गया.

0: फिर भी वर्क इज नॉट ओवर।
1: अभी तो स्टार्ट हुआ है।
0: हाँ
1: मैं तो कहता हूँ कि ये फाउंडेशन है, और पीएम साहब ने जो कहा है वो एग्जैक्टली सही कहा है, ये जस्ट एक फाउंडेशन है। अब तक फाउंडेशन बनाना भी अपने आप में बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन अब देखो बहुत सारे ग्लोबल चैलेंजेस आएंगे। रिमेम्बर जब एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग चालू हुआ था तो कुछ लोगों ने फूड पॉइजनिंग की, रॉयटर्स जैसी एक संस्था ने इतनी फेक न्यूज चलाई कि मैरिड वुमेन को अलाउड नहीं करते, इस तरह की चीजें चलाई, इलेक्ट्रिसिटी के तार काटे गए, कई तरह के ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसमें पीपल हु डिडंट लाइक इंडिया टू कम अप एज अ मैन्युफैक्चरर, दे डिड, दे ट्राइड ऑल ट्रिक्स।
0: आप कह रहे हैं सबोटाज किया गया इस तरीके,
1: किया गया है
0: तार काट करके,
1: हर तरह से सबोटाज करने की कोशिश की। अब वो चैलेंज भी आएगा, अब हमें उस चैलेंज के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अभी तो देखो ये बिगिनिंग है एंड द वर्ल्ड हैज टेकन नोट ऑफ इट, सो वंस पीपल स्टार्ट फीलिंग कि यार ये एक नया देश इस इंडस्ट्री में आया है, तो देयर विल बी पीपल हु सपोर्ट अस, बट देयर विल बी आल्सो पीपल हु अपोज अस, एंड दे आर द वंस हु आर गोइंग टू कॉज प्रॉब्लम्स। आई हैव टोल्ड द एंटायर इंडस्ट्री बी प्रिपेयर्ड फॉर सच इंसिडेंट्स नाउ।
0: और ये सिर्फ फिजिकल सैबोटेज नहीं है, एक नैरेटिव का
1: सैबोटेज ये होगा, पक्का होगा, देखना
0: किस तरीके का, आप किस तरीके के ऐसे चैलेंजेस फोर्सी
1: करेंगे, साइबर अटैक्स करेंगे, लोग बहुत सारी फेक न्यूज डालेंगे, हर तरह का फिजिकल अटैक करने की भी कोशिश करेंगे। वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस बिकॉज दिस इज अ स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री, दिस इज नॉट एन इंडस्ट्री वेयर पीपल विल गिव इन सो इजीली, राइट? सो वी हैव टू मेक आवर स्पेस, वी हैव टू बी वेरी वेरी मेथोडिकल, वेरी cognizant of the challenges and do it.
0: Finally, I want to ask you, sir, this is generally, I would assume, a very young industry.
1: It is.
0: जो आप डिजाइन की बात कर रहे हैं, जिन लोगों से आप इंटरैक्ट करते हैं, जो लोगों को मैं देख रही हूँ यहाँ पे, they are very young. What would you like to say to the young people of our country? And because all the very many departments that you handle, they all in some way or the other interact with the young people of our country. What would you say to them today as minister, as somebody who has a stake in the growth of this country, what should they look forward to in the next 5 years?
1: One, there will be many more opportunities for semiconductor design, semiconductor manufacturing, semiconductor testing, semiconductor validation. It's a full value chain. Semiconductor equipment, materials, many more opportunities will come. Look at those opportunities, prepare for it. We'll help you from the ISM, from the mission, to help you prepare for that. One. Two, this is not an industry for people who are okay with taking shortcuts. This is an industry where you have to have real determination and discipline to be able to run it in a long term. I'll give you, there are multiple examples. Let me not give any personal example. So this is an industry which requires a lot of determination, a lot of discipline. So those who want to be in this industry, be prepared for a marathon.
0: No, please give me that personal example. It would be great to hear.
1: You have to be of that mindset where you go deep. It cannot be for people who just want to be in this industry for 1 year or 2 years. It's not for them. So youngsters, those who want to be part of it, think long term, go deep, really do deep dive. So,
0: final word. आपका जो एक वीडियो था जो बहुत लाखों लोगों ने देखा, जहाँ पे आप चिप एक्सप्लेन कर रहे थे, उसके पीछे थॉट क्या था? क्योंकि लोगों ने कहा यहाँ पर प्रॉपर किसी प्रोफेसर ने शायद अच्छे से नहीं समझाया होगा जितना अश्विनी वैष्णव जी ने समझाया।
1: I enjoyed that. What
0: was the thought behind it?
1: I just enjoyed the subject because I like it. We got this semiconductor in the third year of our BTech program. So there was a book called J.P. Hayes, John P. Hayes. So just 3 or 4 chapters were there in the syllabus, and rest of the book was for masters and PhDs. But in the third year itself, I read the entire book. So I enjoy that subject.
0: Well, you can take a man out of his books, but you can't take the books out of the man. You know, the keera jisko kehte hai ki bhai, knowledge ka keera. Thank you very much, Mr. Ashwini Vaishnav, and always it's a pleasure. And very best of luck. May phase 2 be even better than phase 1. Thank you.
2: The next chapter of the NDTV Golf Pro-Am begins here. Bigger, bolder, teeing off across India. The calls of champions. The conversation of leaders. The NDTV AM Green IGPL Golf Pro-Am. Season announcement, 19 September.

0: to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network. Teeing off across India. The course of champions. The conversation of leaders. The NDTV AM Green IGPL Golf Pro-Am. Season announcement, 19 September.
1: Hello and welcome. Thanks very much for joining us here on NDTV. I'm Padmaja Joshi. 25 years of the Prime Minister in public life and in People's Sansad, we do what we always do. We put the issues of the people, for the people, in the People's Sansad. And joining us today is Union Minister for Parliamentary Affairs and Minority Affairs, Shri Kiran Rijiju, here with us in People's Sansad, in front of a young bunch of fine young minds. Huge round of applause. So thank you so much. पहले सर ये बताइए संसद से पीपल्स संसद का सफर अब लोगों के बीच में और यहाँ पर मैं स्पीकर हूँ
2: वैसे तो संसद जो पार्लियामेंट है वहाँ से ज़्यादा अच्छा युवाओं का संसद है यहाँ एनर्जी मिलता है वहाँ थोड़ा टेंशन पैदा होता है यहाँ टेंशन फ्री है बच्चों के साथ युवाओं के साथ
1: ऐसा क्यों है क्यों वहाँ पर आपको संसद के अंदर नाराज फूफा मिलते हैं
2: ऐसा है अब जब बार बार आप फेल हो जाते हैं तो आप थोड़ा सा नाराज हो ही जाते हैं तो ये विपक्ष का गलती नहीं है माहौल ऐसा है इसलिए मैं यहाँ नकारात्मक मतलब निगेटिव कोई बात नहीं करना चाहता हूँ जिंदगी में हारो जीतो खुश रहना चाहिए नाराज फूफा बन के रहने से कुछ नहीं मिलेगा
1: क्योंकि आज हम पीपल संसद में है देयर इज अ क्रिटिसिज्म यू नो बिकॉज़ यू अर्लियर इनफैक्ट यू डिफाइंड व्हाट अ दिमागी नक्सल इज अब लोग कहते हैं कि जब भी सवाल पूछे जाने लगते हैं ना जब भी कोई युवा खड़ा होता है जब भी विपक्ष खड़ा होता है कभी आप कह देते हैं दिमागी नक्सल फिर आप कह देते हैं नाराज फूफा क्यों
2: देखिए इसमें तो पॉलिटिक्स है लोग अपना नैरेटिव सेट करते हैं हम उसमें कुछ किसी को सलाह नहीं दे सकते हैं लेकिन आप अपना बात हम कह सकते हैं अब किसी को नक्सल क्यों बोलते हैं नक्सल का जो फाउंडेशन है उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ वो भारत का संविधान का खिलाफ अलग से व्यवस्था खड़ा करने का नक्सल मूवमेंट हुआ उनका अपना कोर्ट होते हैं आप देखे हैं गांव वालों को पुलिस आर्मी वालों को पकड़ के ले के जाके वहाँ अपना कोर्ट में हियरिंग करके वही गोली मारते हैं वो भारत का संविधान को मानते नहीं हैं तो वो जो नक्सल या जो माओवाद जो विचारधारा रखने वाला भारत का संविधान को नहीं मानते हैं दूसरा उससे विकृत होकर के आगे निकल करके जम्मू कश्मीर को अलग करना है नॉर्थ ईस्ट इंडिया को अलग करना है उसमें आज़ादी का नाम से आज़ादी का स्लोगन लगाते हैं और कहते हैं कि सबको अपने अपने तरीके से भारत से अलग रहने का आज़ादी होना चाहिए तो ये जो है सेपरेटिज्म का माइंडसेट है ये दूसरे नंबर मैंने बताया तीसरा है जो भारत का ग्रोथ स्टोरी भारत जब तेज़ी से आगे बढ़ता है तो उसको रोकने के लिए तरह तरह का हथकंडे अपनाते हैं कोई हमारा इंडस्ट्रियल यूनिट है तो उसको बंद कराने के लिए एक इन्वायरमेंट के नाम में कहीं एजिटेशन चलवाना और जो अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है हाईवे बन रहा है उसको रोकने के लिए तो इंडिया का जो ग्रोथ स्टोरी है उसको रोकने के लिए वो ऑब्स्टेकल पैदा करते हैं तो इसलिए जो इंडिया का सपना का जो तोड़ने के लिए काम करता है तो उसको तो हम नक्सल माइंडसेट ही बताएंगे तो दिमागी नक्सल है तो इसलिए हमने क्लियरली बताया हमने ओपोजिशन को दिमागी नक्सल कभी नहीं कहा लेकिन अगर आप ओपोजिशन का एमपी है और आप ये जो कैटेगरी मैंने बताया उसमें आते हैं तो हम क्या कर सकते हैं
1: पर फिर आप डिसाइड कैसे करते हैं कि कौन नाराज फूफा है और कौन दिमागी नक्सल
2: नाराज फूफा तो प्रधानमंत्री जी ने कहा उसमें आप समझना होगा मैं

0: ज़्यादा लंबा चौड़ा यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूँगा। क्या है कि 2014 के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नाम से लोगों का समर्थन प्राप्त कर रहे हैं। पीपल आर हैविंग फुल कॉन्फिडेंस इन द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो जो बार बार मोदी जी को सपोर्ट करते हैं, बीजेपी एनडीए को बनाते हैं, तो वो दूसरे पार्टी हार रहे हैं, तो उनका हारना हम कैसे जिम्मेदार हैं? वो तो वोट नहीं दिया लोग, तो वो इलेक्शन हार रहे हैं। तो इलेक्शन हार रहा है तो हमेशा नाराज़ हो करके गाली करना, पार्लियामेंट में हंगामा पैदा करना, फिर देश का खिलाफ बात करना, तो ये नाराज़ जो होके बैठा हुआ है तो उसको एक डिस्क्रिप्शन दिया है। भारतीय परंपरा में नाराज फूफा कौन होता है वो तो आप भी अच्छा तरह से जानती है।
1: ये बताइए, नाराज तो कुछ लोग बड़े थे आपके स्विमिंग से भी, दे वर चैलेंजिंग योर स्विमिंग टेक्निक। फर्स्ट लेट्स सी व्हाट इट इज दैट यू नो रियली सेट द कैट अमंग द पिजन्स व्हेन यू पुट अ पिक्चर ऑफ योरसेल्फ स्विमिंग, अ वीडियो ऑफ योरसेल्फ स्विमिंग। पहले आप ये बताइए, हैव वी सेटल्ड दिस डिबेट, हु इज अ बेटर स्विमर, इज इट यू और इज दिस मिस्टर राहुल गांधी हु इज अ बेटर स्विमर? हैज दिस क्वेश्चन बीन सेटल्ड?
0: ये बहुत खतरनाक नदी में मैंने स्विम किया है, यहाँ समझ में नहीं आएगा क्योंकि अभी मॉनसून का समय का इफेक्ट है। अभी भी पानी देखिए आप, ब्लू कलर नहीं है, थोड़ा गंदा पानी, मतलब फ्लडेड है, पानी काफ़ी बड़ा है और कम से कम 25 फीट डेप्थ है, तो यहाँ स्विमिंग करना कोई आसानी नहीं है। मैं तो गांव में था, सोशल मीडिया में तो डलवा दिया। दो दिन बाद मैं जब दिल्ली पहुंचा तो पता चला ये वीडियो तो वायरल हो चुके हैं, मुझे तो मालूम नहीं, बड़ा पॉलिटिक्स हो गया। लेकिन क्या है, हम जब यहाँ स्विमिंग करने गए, स्विमिंग मतलब मैं वहाँ काम के लिए गए थे, तो मैंने कहा कि थोड़ा सा एक घंटे के लिए हम स्विमिंग करते हैं, बचपन में हम यही स्विम करते थे। तो एक दिन पहले किसी का मौत हो गई, पानी में डूब के मर गए, तो मैंने स्विमिंग करते समय एक कैप्शन लगाया, वार्निंग, कि अगर आपको स्विमिंग नहीं आता है तो कृपया आप इस तरह के नदी में स्विम ना करें। ये मैंने लिख करके वीडियो डाला, नहीं तो मैं कूद गया, बाकी भी सब कूद जाएंगे, तो इससे गलत हो सकता है। तो मैंने वार्निंग दे करके कूदा नदी में, तो मैं तो डाल दिया, वो तो वार्निंग, मैं तो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए डाला है। कांग्रेस पार्टी को मिर्ची लग गया, वो कह रहे कि किरण रिजिजू जो स्विमिंग कर रहे हैं वो तो राहुल गांधी का नकल कर रहे हैं, बोलते हैं। अरे राहुल गांधी जी जब नदी देखा नहीं है, मैं तब खिलाड़ी बन चुके थे। मैं ये नदी जो है हमारा गांव के, ये तो बचपन से हम क्लास 5-6 में ही मैंने इस नदी को पार किया, मैं स्विमिंग में बहुत उस्ताद हूँ। तो मैंने कहा कि मैं यहाँ का बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ, मुझे चैलेंज मत करना, और मैं ट्रेनिंग लेकर के स्विमिंग नहीं करता हूँ। तो कांग्रेस ने ट्रोलिंग शुरू कर दिया, दूसरा कहा कि किरण रिजिजू को स्विमिंग करने के लिए टेक्निक आता नहीं है, टेक्निक ठीक नहीं है, स्विमिंग करना नहीं आता है।
1: क्यों? मैंने बोला बेली फ्लॉप कर रहे हैं,
0: अरे वो गंदे नदी में सर ऐसे डाइव मारेंगे, पत्थर में लग गया सर फूट गया तो क्या करेंगे? ये जो हेड डाउन जो जंप करते हैं वो क्लीन स्विमिंग पूल या क्लीन नदी में करते हैं, गंदे नदी में ऐसे सर नहीं दबाते, ये लोग मालूम नहीं है। और तीसरा जो है, मैंने ये कहा कि हम तो ट्रेनिंग लिया नहीं है, राहुल गांधी जी तो वो सिल्वर स्पून में पैदा हुए हैं, तो उसको तो हर चीज़ का ट्रेनिंग मिल जाते हैं, हम लोग तो कहाँ ट्रेनिंग लेंगे, हम तो जंगल पहाड़ में पैदा हुए हैं, हम तो ओरिजिनल आदमी हैं, तो हमारे लिए ट्रेनिंग का जरूरत नहीं है। मैंने थोड़ा आपत्ति इसलिए किया कि कांग्रेस का एक प्रवक्ता ने कहा कि मैंने किरण रिजिजू ने हाफ नेकेड स्विमिंग किया है, बोलता है। तो मैंने कहा कि स्विमिंग क्या सूट बूट में स्विमिंग करते हैं क्या? आप सोचिए उनके सोच। तो बाद में मैंने कहा कि चलो ठीक है, वो कांग्रेस पार्टी है, काफी नाराज है, तो मेरे स्विमिंग को भी वो एक्सेप्ट नहीं कर पाया। अदरवाइज ये तो स्पोर्ट ही है, जिंदगी में इतना काय को
1: टेंशन। बट नाउ दैट इज गोइंग टू स्टिक टू यू, बिकॉज़ यू हैड सेड ये हमारा, मैं हूं यहां का सबसे बड़ा खिलाड़ी।
0: मैं तो मेरा डोमेन है वो, मैं जहां एक्सपर्ट हूं वहां चैलेंज नहीं करना चाहिए। ये जंगल पहाड़ नदी खतरनाक से खेलना, एडवेंचरस लाइफस्टाइल, ये तो मेरा जिंदगी का शैली है, ये मेरा स्टाइल कैरेक्टर है, यहाँ कोई मुझे चैलेंज नहीं कर सकते हैं।
1: खतरों के खिलाड़ी,

0: anyone who wants to ask questions, I'm saying right at the outset, let's get it started because I want to get in the people's Sansad. Kisi ka mic off nahi kiya jata hai. Boliye bhai, khade hoke. Yes, you please.
1: Good afternoon, Honorable Sir. Sir, my name is Zornas. I'm a computer science engineering student at MIT University. Sir, coming from Manipur, my question is, Sir, as a representative from Arunachal Pradesh, how do you view the role of youth of India's Northeast in terms of contributing to and benefiting from the Viksit Bharat vision, particularly in terms of infrastructure and connectivity development in Northeast?
2: This is a very good question. Most of the students who are below the age of 25 years, they may not realize what was the situation before 2014. It's been 12 years plus. When I was member of parliament in opposition party, I used to raise questions in the parliament as an opposition MP those days. What I used to raise questions are answered today. The youth of Northeast are extremely talented. Of course, Indian youth are very talented, but the Northeast youth are a bit adventurous, vibrant, and very talented. But because of lack of opportunities, most of the Northeastern youth are going out of the region to either study or seek opportunities or maybe doing jobs. In the journey of Viksit Bharat, the strength of Northeast, the youth, can play a very critical role. Number one, we have established critical infrastructure in Northeast itself. Every Northeastern districts and a border point is now connected with double lane national highways. Most of the border areas are now connected, which used to be walking, you know, for days. Like my village used to be 2 days walk. When I was sitting member of parliament during Congress regime. So when I became member of parliament, I got the road sanctioned, and now today I can reach same day from Delhi to my village. Because we have got airport, then the highway, road to my village. So the hard infrastructure is already laid. Now, on top of that, the soft infrastructure, the education, the health, different opportunities to be created are being laid. All green shoots are coming up. Imagine semiconductor facility coming up in Northeast. These were unthinkable few years back. So now, once we finish with the hard infrastructure laid with the soft, we will have greater integration in the economic growth, hospitality industries, different sectors, productivity will enhance, it will become a manufacturing hub, people will come, go, connectivity will enhance, thereby creating jobs, creating opportunities for the youth, and then you generate the wealth for the nation. That is how the youth are engaged and you become integral part of the growth story of India.
0: But sir, I want to ask you one more thing. You know, because when he was talking about the Northeast, the Prime Minister used a phrase, Dil aur Dilli ki duri. So, you have Dilli ki duri kam kar di hai, aapne greenfield airports bana di hai, aapne highway. Ek Dil ki duri bar bar. You know, every now and then you have such episodes, what happened in Delhi, a musician, you know, in an altercation, he was beaten to death. There was harassment, racial profiling. Kya Dil ki duri kam hui hai? Aur agar nahi hui hai, to kyun nahi hui hai?
2: Do baate hai aapko samajhna hoga. I'll have to speak in Hindi or English.
0: Both, whatever you come.
2: So, isme do baatein hain, wo aapko samajhna hoga. Northeast ke log thoda emotional hote hain. To bhavak hote hain, emotional. To agar aapko dhyan nahi diya Delhi se, to wo mayus ho jate hain. I was Minister of State for Home Affairs for 5 years, from 2014 to 2019. Before me, the groups of Northeastern region who are involved in militancy, how did they go into jungle? Maan lo ek chota community hai Northeast mein, 5,000 bhi ho sakta hai, 50,000, 1 lakh ho sakta hai. One community, because Northeast has multiple communities and tribes. So each community has its own unique problems. Sunne wala koi nahi tha Delhi mein. मान लो 50,000 का कोई कम्युनिटी है, उनके प्रतिनिधि दिल्ली में आए, they are waiting in Delhi for weeks and weeks. Nobody in the Home Ministry or Government of India is giving time. एक Joint Secretary भी सोचते हैं कि यार कहाँ ये छोटा सा कम्युनिटी आया है, मेरा पास समय नहीं है, मैं तो भारत सरकार का सेक्रेटरी हूँ, Joint Secretary हूँ, time नहीं देते हैं. वो इंतजार करके करके मायूस होके एक महीने के बाद दिल्ली में कोई सुनने वाला नहीं है, वापस जाते हैं और इमोशनली गन पकड़ लेता है, बम फेंकता है, सोचता है कि गन से बम से शायद सुन लेंगे। तो ऐसा करके करके नॉर्थ ईस्ट में मिलिटेंसी इतना ज़्यादा बढ़ गया, इतना ज़्यादा मिलिटेंसी आ गए कि नॉर्थ ईस्ट का ग्रोथ पे असर पड़ने लग गया। पीस विल ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी, तो शांति था ही नहीं। तो ऐसा करते करते कुछ सुनने वाला नहीं था, तो हम लोगों ने सुनना शुरू किया। मेरे पास तो एक आदमी भी आएगा तो भी मैं मिलता था। एक मैं आपको रिकॉर्ड के लिए बता दूं, एक कम्युनिटी के कुछ मिलिटेंट ग्रुप बंदूक लेकर के जंगल में ट्रेनिंग लेकर के चले गए। वो बाद में टॉक चला, हमने सीज फायर किया, मेरे को मिला और वो सरेंडर कर लिया। पिछले 12 साल में लगभग 10,000 से ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट के लोग जो मिलिटेंसी में इन्वॉल्व थे बंदूक के साथ सरेंडर कर चुके हैं। तो ये मामूली अचीवमेंट नहीं है। मणिपुर में मेते कुकी और नागा कुकी में जो थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट एथनिक क्लैश जो हुए हैं उससे थोड़ा सा धक्का लगा है, मुझे तकलीफ भी हो रहे हैं क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग होकर के कई कारण है, कारण यहाँ जिक्र करने का अभी समय नहीं है। उसको छोड़ के, मणिपुर को छोड़ के बाकी पूरा नॉर्थ ईस्ट में अभी मिलिटेंट फ्री हो गया। आप सोच के देखिए, जो कदम कदम हर 10 किलोमीटर में बंद कोल, वहाँ बंदूक गोली का आवाज़ सुनते थे, आज शांति है। तो ये जो इमोशनली जो पीएम ने कनेक्ट किया वो सिर्फ हमने पहले बताया रोड, बिजली, पानी, एयरपोर्ट, सब रेलवे बनाया, वो है हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। दिल से दिल जोड़ना भी उतना ही जरूरी है। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा दी अस्थ लक्ष्मी, दी 8 स्टेट्स बींग डिस्क्राइब्ड एज अस्थ लक्ष्मी, वी मस्ट रीच आउट टू देम, वाई शुड दे ओनली कम टू दिल्ली। एवरी मंथ 15 मिनिस्टर्स, 5 कैबिनेट मिनिस्टर एंड 10 मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स आर बाउंड टू गो टू नॉर्थ ईस्ट, इट्स ए मस्ट। प्राइम मिनिस्टर ने ये एक तरीके से फरमान जारी किया है, सारा मंत्री नॉर्थ ईस्ट जाना है, और जाके आना नहीं, सोना है वहाँ दूर दराज में डिस्ट्रिक्ट में जाके सोना है। तो ये जो दिल से दिल जोड़ने का काम किया है उससे बहुत करीब हो गया। सो हमने जो फिजिकल जोड़ा और दिल भी जोड़ा।
0: जो बच्चे वहाँ से यहाँ दिल्ली में आते हैं, जो यहाँ ऑडियंस में बैठे हुए हैं, उनको आप क्या कहेंगे?
2: इनके लिए मैं वही कहना चाहता हूँ कि जो इतने साल 50 साल तक हम पिछड़ा बहुत बैकवर्ड रहे हैं, पिछले 12 सालों में जो हमने गति पकड़ा है, बी एश्योर्ड, बी कॉन्फिडेंट, आई एम टेलिंग यू एज ए एल्डर एंड एज ए कैबिनेट मिनिस्टर, एज ए सीनियर मिनिस्टर फ्रॉम कमिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, आई मस्ट टेल यू द डेस्टिनी इज गोइंग टू बी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड। आवर नॉर्थ ईस्ट यूथ विल नॉट रिक्वायर टू स्ट्रगल फॉर बेसिक थिंग्स, वी विल एंश्योर दैट every north eastern region part every state is as vibrant as any progressive state in the country.
0: You know, you spoke of ministers going to the northeast. I want to actually show one video. आपने कहा मैं सबसे बड़ा खिलाड़ी हूँ, लेकिन एक और खिलाड़ी हैं जिन्होंने
2: खिलाड़ी
0: दिखाते हैं आपको उस खिलाड़ी का वीडियो। अब मेरे को लगता नहीं है कि आप उनको उनसे ज्यादा बड़ा खिलाड़ी, अपने क्या लग रहा है आपको, कौन है ज्यादा बड़ा खिलाड़ी अब?
2: मेरा बॉस है।
3: ये है आपकी बाबा,
0: प्राइम मिनिस्टर इन सिक्किम, और गोल भी मार दिया। बताइए कौन है बड़ा खिलाड़ी?
2: देखिए प्राइम मिनिस्टर के बारे में तो लगभग सब जान ही चुके हैं। आई हैव नेवर सीन ए पर्सन सो डिसिप्लिन इन लाइफ, सो फोकस एंड फिट एज मोदी जी। व्हेन आई वाज मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, प्राइम मिनिस्टर टोल्ड मी, किरण जी जो खेलो इंडिया चल रहा है, वी स्टार्टेड खेलो इंडिया, जो खेलो इंडिया चल रहा है वो खिलाड़ियों के लिए है। अब पूरे इंडियंस को फिट बनाना है, एवरी इंडियन must be fit. If you are fit, you can make your country fit and fine. So fear that Fit India movement started, I thought about ki Prime Minister wants the fitness culture to prevail all around. So the best thing would be Fit India movement where we bring along everybody. And aap dekho abhi, fitness ke liye jagrukti aaye hai. Everywhere people are now fitness freak. Koi cycle se chal rahe hai, koi marathon kar rahe hai, koi climbing kar rahe hai, koi jump mar rahe hai, koi walking kar rahe hai. You can do anything. But life has to be active. No matter how brilliant you are mentally, if you are not physically fit, then you will put yourself into trouble.
0: You know, I saw a very nice video of yours. Jab I think aap Vajpayee ji ke saath baithe hue the aur unke saath jo aapka interaction tha. Aisa hi koi interaction aapka pehla koi pradhanmantri ke saath jo aapko yaad ho. You know, which you really take away jab aapko kuch ek baat wahan par, when you know, so kehte hai ki ek baat, it stayed with you.
2: Nahi, ek to Atal Bihari Vajpayee ji ke saath main to bahut young, chota tha, bahut matured bhi nahi tha. लेकिन मैंने इलेक्शन लड़ा और हार गए. बीजेपी को नॉर्थ ईस्ट में उस समय कोई जानते भी नहीं थे और कोई वोट देते भी नहीं थे. मैं तो काफ़ी करीबी से बीजेपी को देखा है. नेशनलिस्ट पार्टी है, ये पार्टी सरकार में आएगा तो बॉर्डर एरिया हमारा जो दूर दराज के लोगों को ध्यान रखेगा, इंडिया फर्स्ट, थोड़ा जोश होगा. कांग्रेस से हम कोई उम्मीद नहीं था तो हमने बीजेपी ज्वाइन किया, लेकिन इलेक्शन हार गए. इलेक्शन हारने के बाद हम अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास गए. मैं बहुत दुखी भी था, अटल जी मैं तो चुनाव हार गया है. तो हमारे साथ में राम नाईक जी बैठे हुए थे, पेट्रोलियम मिनिस्टर थे और बाद में यूपी का गवर्नर बने. तो मैंने जैसे ही कहा, अटल जी मैं तो चुनाव हार गए हूँ, क्या करूँ, बीच में तुरंत राम नाईक जी ने बोला, अरे किरण तुम टेंशन मत लो, अटल जी भी पहले चुनाव हारे थे. तो फिर अटल जी ने कहा, अरे राम नाईक जी का चले तो सबको पहले चुनाव हारना चाहिए क्या. तो फिर मुझे कमीशन में लाया, काम करने का मौका दिया. मैं पार्टी का नेशनल सेक्रेटरी था लेकिन मैं कमीशन में 5 इयर्स काम किया. लेकिन 2004 में मैं पूरा तैयारी से काम किया, लोगों ने फिर भारी मतदान किया, मुझे वेरी यंग एज में मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट बनाया. और जिस तरीके से मैंने काम किया, आप शायद उस समय थी, मुझे ख्याल नहीं आ रहा है. 2008 में पूरा मीडिया के एक कॉन्क्लेव हुआ, मीडिया के आपस में एक वोटिंग हुआ, हु इज द बेस्ट यंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. तो मैं खुशी से बताना चाहता हूँ कि मुझे दिया गया है बेस्ट यंग पार्लियामेंट्रियन. आई वॉज वेरी एक्टिव. मैं इसलिए एक्टिव भी था, एक तो जरूरी भी था और मैं इसको एक ड्यूटी के हिसाब से मानता हूँ. हमारा प्रदेश अरुणाचल प्रदेश जो है बहुत बड़ा प्रदेश है, पॉपुलेशन कम है तो 2 MP है. मैं सोचता था उत्तर प्रदेश का 80 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, बिहार का 40 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, महाराष्ट्र का 48 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, एक साथ आने से तो हिल जाते हैं. हमारे तो 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, मैं नहीं बोलूंगा तो और कौन बोलेंगे. तो मैंने तय किया पहला ही दिन कि मैं भले अकेला हूं लेकिन मैं 20 MP का बराबर बोलेगा मैं.
0: क्या बात.
2: तो मैंने काफी मेहनत किया.
0: Yes, this young lady here.
4: What legislative or policy reforms do you think necessary to further ease access to entrepreneurship, justice or public service opportunities for young citizens?
2: Excellent question. There are 3 parts in Ministry of Law and Justice. So when I was law minister, I had focus in 3 sector. One is the Department of Law, which means all things we do must be legal. Every action of the government must be legally tenable. So I focus on the legality of the entire conduct of the government. Second is the legislative branch, that is called Department of Legislative, and that is where you draft the laws. How you draft the law is very technical. You must be correct in language, framing of the languages, using of the appropriate words, comma, everything. So that is called department in the legislative branch. The third one is the Justice Department, which deals with the court. appointment of the judges, working of the judicial system, the High Court, Supreme Court. So that is dealing with the justice fraternity. When you talk about rule of law, you must ensure that the justice must be delivered at the doorstep of the citizens. My priority as a Minister of Law and Justice that time was to bridge the gap between justice and common man. If a common man struggles to obtain justice, that is most unfortunate. And in India, more than 5 crore cases are pending in different courts. Some of the cases are as old as 20, 30 years waiting for the justice to come. Many people have left this world. Justice never came. So I thought as a Minister of Law and Justice, I must ensure that judiciary must take the lead role. Why judges should only decide on important critical cases? There are so many cases which are not in the glaring media image, but they are extremely important for the person to get the basic justice. So, to do that, strengthening of the infrastructure like good courts, mobile justice delivery system, the Lokayuk, the Lok Adalats, all other peripheral things which are required to strengthen the justice delivery system. And then also I had a very close interaction with the judges to ensure that a judge should not struggle in delivering justice. Appointment of the judges, giving them facilities, and for the first time, 7 crore amount was passed by the cabinet to strengthen the infrastructure in the judiciary, from the lower courts right up to Supreme Court. We did so much. So I feel that being a big country, most populous nation in the world, we do have challenges, but our government is doing the best, and the amount of money allocated and the infrastructure built from 1947 to 2014. And since Modi ji became Prime Minister 2014 to now, we have built and allocated more than double of what was done in last 68 years. We have done much more.
0: Because you know, sir, jab hota ye hai ki when the wheels of justice move slowly, people start losing patience. Abhi dekhiye kya hua. Log aisa kehne lage hain ki ab faisla sansad mein nahi sadak pe hoga. Kya kahenge? So, log kehte hain bhai ab bahut ho gaya. Ab hum janta faisla karegi. Sadak pe faisla hoga.
2: Anarchist jo hote hain wo ye sab sochte hain ki bhale hum chunav haar jaye lekin main sadak se tay karunga ki kanun kya hona chahiye desh ka. To democracy ka kya matlab hai? Basic tenets of democracy is every citizen rule themselves through elected representatives. The electoral college is defined by the parliament. Everybody votes. So in a way, the citizen govern themselves through their elected government and elected representatives.
0: But kya youth bhi ye believe karta hai? Kyunki jo youth jantar mantar par utarta hai, wo kehta hai, aap hamari baat nahi sun rahe ho, hum apni baat khud karein.
2: Aisa sab youth nahi hai, kuch misguided youth hote hai, to usko bhi seedha karna hoga na, usko bhi samjhana hoga. Seedha matlab, main danda maar ke nahi bol raha hu, samjhana hai pyar se. Kya hai ki, ye unfortunate bhi hai. I am giving a very serious note. There are many civilizations in the world, Chinese civilization, Japanese, Indian civilizations, Europe mein bhi hai. To kabhi China mein aap suna hai kya wo Zenzi ya Western concept hote hai? India mein hi kyun hai? Kyunki basically our knowledge is English fit. British common law, English common law, American influence kafi hota hai. तो ये जो सोशल मीडिया में जो लोग ज़्यादा रहते हैं तो उनको एक तरीके से ये वेस्टर्न कंसेप्ट है, जेंजी हमारा कंसेप्ट है नहीं. हम तो युवा बोलते हैं, यूथ, एडल्ट एंड सीनियर्स. तो ये जेंजी कहाँ से घुसा दिया बीच में पूरा डेफिनेशन के साथ, इस साल से इस साल पैदा होने वाला को अल्फा जेंजी. तो ये कंसेप्ट पैदा करके रेस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा आपका राइट को फोकस कर दिया है. जबकि बैलेंस होना चाहिए. जब जॉन एफ कैनेडी ने अमेरिका में कहा था 1960 का प्रेसिडेंशियल एड्रेस में कि आस्क नॉट व्हाट अमेरिका कैन गिव यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर अमेरिका. तभी तो यू सुपरस्टार बना है, सुपर पावर बना है वो देश. हम जितना मांगता है कि मेरे लिए क्या कर रहा है सरकार या देश, ये भी तो पूछो कि मैं देश के लिए क्या कर रहा हूं. वो दोनों होता है. तो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट विच कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज, बट फंडामेंटल ड्यूटी इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट.
0: बट दे आर सेइंग दैट इवन टू आस्क दीस क्वेश्चंस इज आवर ड्यूटी. सरकार हमारी सुन नहीं रही है, हम सुन नहीं रही है, अब हम सड़क पे सुनेंगे.
2: ऐसा हो ही नहीं सकता है. तो हम बच्चे हैं, समझाएंगे अच्छा से, हम अपने लोग हैं. देखो मिसगाइडेड हो जाते हैं बच्चे जो है आजकल, माँ बाप से ज़्यादा सोशल मीडिया से ज्ञान लेता होगा. लेकिन मैं कहता हूँ कि टीचर और माँ बाप से ज्ञान लेना कभी नहीं छोड़ना चाहिए. क्योंकि हम लोग मैं गाँव से पैदल जाके डिस्ट्रिक्ट में जा करके दो दिन के बाद एक किताब मिलता था लाइब्रेरी से पढ़ के, फिर तीन दिन के बाद वापस जाके देना. तो एक्वायर नॉलेज वॉज सो डिफिकल्ट. Here in the very instant cases you are acquiring knowledge and information, which can be misinformation. So isliye youth of India must ensure that instability create mat karo. Rule of law should follow the norms, that everybody must be governed by the spirit of the constitution of India. Uska andar kuch bhi bolo, aap kuch bhi bol sakte hain, aapka right hai. Bas desh ka khilaf mat bolo. हमको जितना गाली देना दे दो, मगर देश के खिलाफ गाली मत दो बस.
5: द जेंटलमैन हियर. सर हम आपको रेगुलरली वॉच करते हैं संसद टीवी में. मेरा क्वेश्चन है सर, डिलिमिटेशन जो अभी चल रहा है लोकसभा में, बिल पास नहीं हो पाया था, पर सर जैसे बिहार जैसे स्टेट है जहाँ पे 40 लोकसभा सीट है, और सर सेम अपन कंपेयर करते हैं तमिलनाडु की, वो भी अभी 40 है, पर सर जब डिलिमिटेशन होगा तो आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर तो 850 ऑलमोस्ट सीट होने वाली. तो सर जो बिहार को जो फ़ायदा होगा लोकसभा सीट बढ़ने से, सर सेम फ़ायदा सदर्न स्टेट्स को नहीं होगा? तो नहीं सर, उतना नहीं होगा. तो सर गवर्नमेंट ऐसे क्या मेजर्स ले रही है जैसे कि सदर्न स्टेट डिस्प्रोपोर्शनली अफेक्ट ना हो, जिन्होंने पॉपुलेशन को कंट्रोल रखे हैं जब से हम आजाद हुए पिछले 70 साल.
0: आप कौन से स्टेट से हो?
5: मध्य प्रदेश.
0: नाइस. देखिए वो ठीक मध्य में बैठे हैं और दोनों का ख्याल है. मध्य प्रदेश
2: बात कर रहे हैं आप?
5: यस सर. तो मेरा सवाल ये है कि मतलब जो भी स्टेप सरकार ले वो सदर्न स्टेट्स को डिस्प्रोपोर्शनल
2: है. आपको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, आपका इन्फॉर्मेशन सही नहीं है. और अमिटी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला इन्फॉर्मेशन सही रखना ज़रूरी है, क्योंकि आप आगे देश को भी समझाना है, समाज को भी. डिलिमिटेशन जो हम लोगों ने प्रपोज किया वो वुमेन रिजर्वेशन से लिंक्ड है.
5: यस.
2: हमने ये कहा कि अभी 543 लोकसभा सीट्स है वर्तमान में लोकसभा में, उसको हम 50% बढ़ाएंगे. जब 50% बढ़ाएंगे इसका कैसे आप अर्थ निकल सकता है कि तमिलनाडु को कम होगा बिहार को ज़्यादा होगा? बिहार का 40 सीट से तमिलनाडु का 39 है, 40 नहीं है, तमिलनाडु का 39 है. और जब 50% बढ़ेगा तो 40 वाला 60 होगा, जाहिर सी बात है, सिंपल कैलकुलेशन. यूपी का अभी 80 सीट है तो 120 हो जाएगा, जिसका दो सीट है वो 3 हो जाएगा. इट्स अ सिंपल अरिथमेटिक. पॉलिटिकली इसको डिरेल करने के लिए कुछ लोगों ने गलत तरीके से दुष्ट प्रचार किया है, मगर बाद में क्लियर हो गया. अभी तो लगभग मैक्सिमम जो पार्टी उसमें अगेंस्ट में वोट किए थे सब बोला कि नहीं नहीं उसमें कांग्रेस पार्टी ने बहुत झूठ फैलाया. अब क्लियर हो गया, ज़्यादातर लोग अब समर्थन करेंगे अगले बार बिल लाने से. तो इसलिए किसी भी स्टेट को हम नुकसान नहीं पहुंचाना है और हम नहीं पहुंचाएंगे. फंडामेंटल बात क्या है? द इलेक्टोरल सिस्टम इज ऑल अबाउट प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन. एक आदमी एक वोट, यही है ना फंडा डेमोक्रेसी में, कि आप 10 करोड़ का मालिक है तो आपका दो वोट तो नहीं हो जाएगा. बिलियनियर भी वन वोट, आम आदमी भी वन वोट. तो इसमें आप सोचिए किसी किसी स्टेट में एक MLA कॉन्स्टिट्यूंसी में 400,000 वोटर है, किसी किसी जैसे लक्षद्वीप में एक MP है 53,000 वोट्स है. तो ये ज्योग्राफी के लिए भी फर्क होता है. तीसरा एक पद्मजा मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ. इंडिया सबसे चैलेंजिंग MPs के लिए मैं बोल रहा हूँ. ब्रिटेन में 70,000 वोटर में एक MP है, और ब्रिटेन का पॉपुलेशन इज 65 मिलियन. एंड each member of parliament in Britain represents 70

0: 20,000 people. In India, each member of parliament represents 2.5 million people. Scandinavian countries, each member of parliament represents 12,000 people, 13,000 people. Here we represent 2.25 lakhs. So India, वैसे हम population UK से 50 गुना ज़्यादा, उनका MPA 620, हमारे MPA 543, फिर भी बोलता है हमारा MP कम ज़्यादा है, क्यों बढ़ाना है? ये देखिए एक basic, हम ये नहीं कह रहे हैं ना कि MP 543 से हम 10,000 बनाने जा रहे हैं, मुश्किल से 816 या 820 के आसपास जाएंगे, वो तो बनता है, we are the most populous nation on the earth. इतना तो बनता
1: सर हाल फिलहाल में होने वाला है ये, क्योंकि बड़ी सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज है कि अभी प्रोरोग नहीं किया गया है तो अभी ले आएंगे, पता नहीं कब रिजिजू जी हमें बिना बताए ये बिल चुपके से ले आएंगे.
0: नहीं, वो अभी हम आपको बोलेंगे तो पूरा हंगामा हो जाएगा आज. मैं बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन
1: संसद में ही तो हंगामा होता है.
0: नहीं, प्रोरोग तो इसलिए नहीं किया कि कभी कभी पहले भी हुए, ये फर्स्ट टाइम नहीं है. हम जब पार्लियामेंट खत्म करते हैं तो साइनेडाई करते हैं फॉर एडजॉर्नमेंट, अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना, लेकिन अभी हम उसको प्रोरोग नहीं किया तो ये कोई पहले बार नहीं है. जब चाहे पार्लियामेंट बुला सकते हैं,
1: अभी बुलाएंगे हाल फिलहाल में,
0: वो हम नहीं कहेंगे, लेकिन बुलाने का प्रावधान है.
1: मतलब ऐसा तो नहीं है कि नंबर का वेट हो रहा है?
0: नहीं नहीं, मैं इतना दीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि रूल के बात है तो बुलाने का प्रावधान है.
1: सर ये बताइए कि यू नो व्हेनेवर वी हैव एनालाइज्ड द नंबर्स एंड नाउ सडनली एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट दिस जेन जी वोट, बट आई रिमेंबर MY वाज समथिंग दैट वी ट्रैक्ड in the elections throughout, and even in the 2014 elections, I remember postponed analysis found that a large number of youth, especially skilled and educated youth, was voting for the BJP. Why is that? What do you think are the factors that work there, and has that changed on the ground now after all these protests and Jantar Mantar uprising?
0: See, the aspiration of the youth has increased tremendously. Social media started trickling down around 2008, 2009, 2010 in Facebook, and slowly then Twitter came, then Instagram and all. When we came to power, when Modi ji became prime minister, the social media started at large scale. So the aspiration of the youth have risen. So the youth of that time, which could not gain enough of opportunity for themselves, they thought we need a new leader. India could not become a developed nation in last 70 years. तो हकीकत है ना, 1947 में हम आज़ादी प्राप्त किए हैं, अमीर तो नहीं हुआ ना. ये तो मेरे कहने से, आपका कहने से क्या होगा, इंडिया इज नॉट अ रिच कंट्री, इंडिया इज नॉट अ डेवलप्ड कंट्री, ये तो हकीकत है. कौन करेंगे इंडिया को अमीर, ताकतवर देश कौन बनाएंगे? हमारे पास कोई लक्ष्य भी तो नहीं था ना, देयर वॉज नो सेट टारगेट, व्हेन विल इंडिया बिकम रिच एंड पावरफुल एंड डेवलप्ड. तो पीपल स्टार्टेड थिंकिंग, स्पेशली द यूथ, कि भाई आपका जिंदगी तो चले गए हैं पुराने लोग, आप इंडिया तो अमीर राष्ट्र नहीं बन पाया, हमारा जीवन काल में इंडिया मस्ट बी रिच पावरफुल एंड प्रोस्पेरस. ये तो ठान लिया, तो सबने देखा कि ये मोदी जी के लीडरशिप में ही हो पाएगा.
1: आपको लगता है
0: दैट इज हाउ द यूथ ऑफ इंडिया इन अ मैसिव स्केल वोटेड फॉर मोदी जी एंड ही क्रिएटेड रिकॉर्ड. एंड देन आफ्टर 2014 द टारगेट वॉज सेट 2047, India will be developed nation, and then so many steps are taken on the way, one by one, one after another. So that is how I feel the youth are feeling, that if they have to realize their dreams, that they need a visionary statesman, a great leader like Modi ji to continue to lead us. And that is true today. India is the fastest growing economy in the world.
1: Do you think
0: that? तो रोते थे उस समय, अरे इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ इतना पीछे, चाइना जैसे हम कब ग्रो करेंगे, हम भी कब इंडोनेशिया जैसे, सिंगापुर जैसे हम भी कब ग्रो करेंगे. वी यूज टू ड्रीम एंड टुडे इज अ रियलिटी. आई थिंक एवरीबॉडी इज, ये किस्मत वाले हैं आप लोग, वेरी लक्की. In our time, when you are the leading youth of this country, India is the fastest growing economy in the world. It's the kismat ki baat hai na.
1: Okay, this young man here.
2: Sir, me being a student here at Amity, apart from that, ek main gaurvanvit swayamsevak bhi hoon. आपके लिए एक सवाल जो मैं पूछना चाहूँगा, दैट यू बीइंग द मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, हाउ डिफिकल्ट डू यू फाइंड इट कि सभी पार्टियों के बीच में आप वो समन्वय बना पाएं, क्योंकि संसद के कई सत्रों में हम देख रहे हैं कि संसद कई दिनों तक नहीं चलती. तो जब संसद ही नहीं चलेगी तो फिर फैसले संसद में नहीं तो कैसे सड़क पर, तो

0: सकते जैसा पद्मजा जी ने कहा।
1: सर मैं इसमें एक सवाल जोड़ना चाहती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। हम कल ही एक डिस्कशन कर रहे थे टीवी पे, जहाँ पे एक पत्रकार हैं बहुत वरिष्ठ, उन्होंने कहा कि देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ कम्युनिकेशन, सरकार और विपक्ष अब एक दूसरे से बात ही नहीं करते। फनी थिंग इज हमने पीपल संसद इसलिए शुरू की क्योंकि पिछले पार्लियामेंट सेशन में संसद में डिस्कशन हो ही नहीं पा रहा था। क्यों ये ब्रेकडाउन है?
2: ब्रेकडाउन नहीं बोलेंगे, हमारा बात वो नहीं मानते, उनके बात हम नहीं मानते, ये हो सकता है, ब्रेकडाउन नहीं है, डिसएग्रीमेंट है। देखिए नंबर वन मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ, पार्लियामेंट नहीं चलता है ऐसा नहीं है। हाँ डिबेट कम होता है या डिबेट नहीं होता ये बोलिए, क्योंकि सरकार मेजोरिटी है, हम चाहेगा तो बिल हम एनी टाइम पास कराते ही हैं। मान लो हमको बजट पास करना है, बजट पास नहीं करेंगे तो देश का खर्चा कहाँ से आएगा, सैलरी कहाँ से आएगा, आपका यहाँ जो इतना आपको माँ बाप पैसा भेजते हैं वो कहाँ से आएगा। तो बजट तो पास करना है, दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट। तो विपक्ष हंगामा करने से भी हम तो पारित करना ही है, देश को तो चलाना है, तो पार्लियामेंट नहीं चलता ऐसा नहीं। लेकिन जो भी बिल पार्लियामेंट में पास करता है थोड़ा स्क्रूटनी होना चाहिए, एक्सटेंसिव डिबेट्स एंड डिस्कशन मस्ट बी कैरिड आउट टू एंश्योर दैट द लेजिस्लेटिव प्रोसेस इज प्रॉपरली डन एंड ईच मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन गिव देयर इनपुट्स। तो कभी कभी क्या होता है कि हम बिजनेस एडवाइजरी बैठते हैं, हम कहते हैं कि मान लो ये हम एक बिल को लाने जा रहे हैं, हम मान लो स्पोर्ट्स का बिल लेने जा रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि कितना घंटा चर्चा करना चाहिए। तो अपोजिशन से हम पूछते हैं, मेरा काम है पूछना, तो मैं पूछता हूँ, तो अपोजिशन कांग्रेस वाला कम्युनिस्ट वाला कहेंगे कि इस पर हम 6 घंटा चाहते हैं चर्चा, तो हम कहते हैं कि ठीक है 6 घंटा ठीक है, तो फाइनल कर लिया। जब चर्चा करने के लिए बिल टेबल करते हैं वो दूसरा इशू लेकर के हंगामा शुरू कर देते हैं, प्लाकार्ड लेकर के गाला गाली जिंदाबाद मुर्दाबाद शुरू हो जाते हैं। मैंने कहा कि आप हंगामा कर रहे बाहर कीजिए, या तो पार्लियामेंट में बिल पास होने दीजिए। वो हंगामा करते हैं, तो एक दिन हमने स्थगित कर दिया, अगले दिन फिर हम बिल टेबल करते हैं, फिर स्थगित हो जाता है। तो थर्ड डे में हम थोड़ा सा नाराज हो जाते हैं, हम कहते हैं कि आप चर्चा के लिए तैयार कीजिए नहीं तो हम पारित कर देंगे। वो नहीं मानते, फिर हम मजबूरी में पारित करते हैं। तो पार्लियामेंट ठप नहीं होते हैं,
1: पर कभी ऐसा होता है बाद में जाके उनसे पूछते हैं कि भाई तुमने तो मेरे चेंबर में कुछ और बोला था, बाहर जाके ऐसा
2: होता है। मैंने कहीं कहा कि वो लोग कहा राजनीति है, वो तो मजबूरी से। अब कभी कभी कांग्रेस का नेता कहते हैं कि हम तो चाहते हैं लेकिन मेरा नेता ने मना किया, क्या करो। तो फिर ऐसे होता है राजनीति में। देखिए पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में अगर पार्लियामेंट में हंगामा होता है तो ये कोई नई बात नहीं है,
1: क्योंकि ना मैं जो ब्रेकडाउन की बात कर रही हूँ, आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल। यहाँ पे कितने लोग हैं, हाउ मेनी पीपल आर हियर हु आर कैरिंग कैश ऑन देम, रेज योर हैंड्स। हार्डली एनीवन, इफ यू सी ऑलमोस्ट बेली व्हाट 10-20%, बिकॉज नाउ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैव स्टार्टेड डूइंग डिजिटल ट्रांजैक्शन, UPI। येट व्हेन यू ब्रिंग इन द MDR एंड द एंटायर डिबेट अराउंड बिकम्स, लोग कहते हैं हमें सरकार पे विश्वास ही नहीं है कि आज आप 4% पे टैक्स लगा रहे हो, कल आप 100% लोगों के डिजिटल ट्रांजैक्शन पे, देयर इज जस्ट अ लैक ऑफ ट्रस्ट। बार बार हम जब पूछते हैं ना विपक्ष से, वो बार बार एक ही चीज बोलते हैं, हम सरकार को ट्रस्ट नहीं कर सकते,
2: लोग उसको ट्रस्ट नहीं करते इसलिए वो अपोजिशन में बैठे हैं। हमको ट्रस्ट करते हैं इसलिए हम तो सत्ता में सरकार चला रहे हैं। देखिए जब हम सर्विस लेते हैं तो सर्विस का चार्ज देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ये फ्री कल्चर जो अरविंद केजरीवाल जो फैलाते हैं बीमारी, ये नहीं करना चाहिए, लोगों को कमज़ोर बीमारी बना देंगे। हर चीज़ उस जमाने में गुरुजी का वो ये दक्षिणा भी होता है ना, हर चीज़ का कीमत होता है, फ्री में कोई चीज़ नहीं होता है, आराम हराम होता है। आपको अगर सर्विस अच्छा चाहिए तो आपको पे करना होगा, लेकिन इतना पे करना है जितना आप दे सकते हैं। अगर सरकार इतना अनथॉटफुल है और एग्जॉर्बिटेंट रेट और ये सब लगाएंगे तो पब्लिक नाराज हो जाएंगे। लेकिन अपोजिशन का नैरेटिव में नहीं जाना है कि आप कोई संस्था, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई बॉडी बनाया तो वो जिंदा रखना चाहिए ना। अगर आप 100 रुपया का ट्रांजेक्शन करता है और आपको 5 रुपया काट लिया, तब तो आप कह सकते हैं अरे बहुत ज़्यादा हो गया। बेयर मिनिमम जो सर्विस चार्ज लगता है वो तो हर देश में हर समाज में लगता है। इसको लेकर के मुझे लगता है कि अपोजिशन का प्रोपोगंडा में हमको पढ़ना नहीं चाहिए। अगर बहुत चीज जो है अनबेरेबल है या बिल्कुल ये जायज नहीं है तो फिर जनता के पास बोलने का अधिकार है. तो सरकार तो जनता का बात सुनता ही है हमेशा.
1: On a final note, I want to ask you, sir, आपने हमने शुरुआत में when we began, we said कि आपने एक reply किया था अपने trollers को कि मैं यहाँ का खिलाड़ी हूँ. और आपके कई हमने different aspects देखे हैं, you know, the athlete, the swimmer, motorcycle rider. But there is one which we are not going to let you go without, which is that of a very accomplished singer. I was surprised to find out. तो आपका एक बहुत हाल फिलहाल का video viral जा रहा था जब कोई बात बिगड़ जाए जब आप गा रहे थे. अगर आप anything which is to your mind, anything dedicated to the youth, anything that you off the top of your head want to dedicate.
2: You want me to sing?
1: Yes, please.
2: गाना तो अभी mood में नहीं हूँ ना. गाना गाने के लिए mood में होना जरूरी है.
1: Applause.
2: अरे उसके लिए मैं नहीं कह रहा.
1: An artist is only encouraged and put in the mood by his audience.
2: मैं बहुत sporty आदमी हूँ. मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन क्या है कभी कभी मैं तो गाना गा देता हूँ, लोग तालियां भी बजाते हैं, बाद में मेरा बीबी मुझे डांटते हैं. कहते कि तुमको गाना गाने के लिए बोला है, तुम एक लाइन नमूना गाना चाहता, तुम पूरा स्टेंजा का गाने का क्या जरूरत है बोलते हैं. वैसे तो मैं गाना गाता नहीं हूँ, लेकिन जैसे शाम को कभी फेस्टिवल वगैरह में मैं गाता हूँ, लेकिन वो अपने लिए मस्ती के लिए. मैं एक लाइन गा देता हूँ.
1: प्लीज एंड आई अश्योर आई विल कॉल अप मैम एंड से इस बार डांटिए मत.
2: मैं आधा से गा देता हूँ, लंबा गाने का इतना पेशेंस बच्चों में नहीं होगा. तू

आजा तेरे आंचल में प्यार से मैं भर दूं, प्यार से मैं भर दूं खुशियां जा।

0: आज कांग्रेस हमको कह रहे हैं, लेकिन वो कांग्रेस जो अभी कांग्रेस बने हैं, कांग्रेस आए ये जो कांग्रेस बने हैं वो भी टूट करके ही कांग्रेस बने हैं। तो टूटने का और दूसरे पार्टी को भस्म करने का वो काम तो कांग्रेस पार्टी ही करते हैं।
1: দেখুন এগুলো নিয়ে কিছু করবেন না, ইলেকশন কমিশনের সিদ্ধান্ত ইলেকশন কমিশন তার নিয়ম মেনে সব পক্ষের কথা শুনে করেছে। উনি উনারা দলকে এক করতে পারেননি, দলের মধ্যে কি দুভাগ তিনভাগ চারভাগ হয়েছে তার দায় দায়িত্ব তো ওনার, এটা আমাদের কোনো সরাসরি বিজেপির রোল নেই। তবে আমি বলি একটা কথা বলি, আমি নির্বাচনের দিন গণনার দিন রাত্রে হলদিয়াতে মিডনাইটে বলেছিলাম, আর যেই থাকুক এরা থাকবেন। তার কারণটা হচ্ছে অতি দর্পে হত লঙ্কা অতি মানে যখন
2: সি ইয়েস্টারডে ওয়েন মাইসেলফ অ্যান্ড মাই লিডার চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য হ্যাড বোর্ডেড দ্য ফ্লাইট টিল দেন নো অ্যাট 9:10 উই স্টার্টেড ইন দ্য ইভিনিং। When we landed in Calcutta, we saw that there has been an order that by 11 o'clock today, three preferences, both for the name and the symbol, has to be sent to the ECI. So at tomorrow itself, myself and Chandrimadi sat in the lounge, we read the letter, tried to contact as many as people as possible. Then in the morning today, we had a meeting, virtual meeting, and after that meeting, unanimous, the collective decided that there are three preferences. The first preference for us was Nationalist Trinamool Congress, the second preference West Bengal Trinamool Congress, and the third one a Democratic Trinamool Congress. So that has been granted. Election Commission has written in its letter to us why the first two names cannot be granted. And as far the symbol is concerned, we had our first preference was envelope, that has been granted. So this is it. Now we have to hit the grounds, we have to hit the roads. Already our workers and leaders are in the two bipole areas. Now we will chalk out a full course of action.
3: From the National Capital region, there was a horrific crime that came to light. The details of this incident could be disturbing for some. A 17-year-old girl was allegedly gang-raped and stabbed to death by four people, including three minors, and her body was dumped in an open field. Police say that her decomposed body was found on September 13th near a field in central Delhi. It had decomposed so badly that her gender could not be initially established. Police say that parts of her body had been eaten by stray dogs. The girl and the accused allegedly knew each other. Police say that they were travelling together in a tempo and had been drinking before their alleged assault and murder. The girl had not been reported missing. Her family told police she would often leave home and return after a few days. With no apparent eyewitnesses, investigators turned to CCTV, analysing more than 50 cameras. They tracked a tempo seen near the scene, traced it overnight on September 15th and 16th, and questioned the driver. Four people were apprehended, including an adult and three juveniles aged 16 and 17. Police say two knives, clothes allegedly worn by the accused, and the tempo have been recovered. And this is a case that has been registered under the BNS and the POXO Act as well. Horrific details that have now come in has now triggered the incidents of what happened to Nirbhaya in the past. We have some reactions coming in on the latest story. Let's listen in.
4: इस केस ऐसा था, 13 सितंबर में हमको इंफॉर्मेशन मिला जयपाल राणा फील्ड में एक डेड बॉडी हाईली डीकम्पोज स्टेट में पड़े थे। एंड इस केस में मैं ये बताना चाह रहा हूँ, इस केस में कोई क्लू नहीं था क्योंकि डेड बॉडी भी हमारा आइडेंटिफाइड नहीं थे, उस एरिया में कोई सीसीटीवी बगल में नहीं थे सीना फ्रेम का, और हमको ये भी नहीं पता ये मेल और फीमेल है। ये 10 या 11 तारीख रात में चार लड़कों ने, एक अडल्ट है और तीन जुवेनाइल्स है, इन्होंने एक लड़की थी वो भी माइनर है इस फील्ड में लेके गया। वो लड़की के साथ ये चारों लड़कों ने अंडर इंटॉक्सिकेशन रेप किया है, और रेप करके उस फील्ड में लेके गया। फील्ड में जाके ये लड़की के ऊपर चाकू वाकू मार के डेड बॉडी को उधर जंगलों में छुपा के रख दिया। फिर वो डेड बॉडी को कुत्ते वगैरह बाहर लेके आया। फिर 13 तारीख को हमारा रिपोर्ट हुआ, फिर वो डेड बॉडी को हमने रिकवर किया।
3: Moving on to some other stories that we are tracking, Bengaluru's traffic crisis is turning school runs in Whitefield into hour-long ordeals. Residents have said that children and parents are spending more than 2 hours covering just 5 to 6 kilometers, with certain roads among the worst affected stretches. The daily gridlock is fueling growing frustration

0: VC funded startups in deep tech semiconductor design as a part of the Semicon 2.0. Second pillar is materials and machines. And that's very important because I'll give you the example of Japan. Japan used to be the largest semiconductor manufacturer for many decades. Then they lost out to South Korea and Taiwan and then to China. A few years ago, when they decided to come back in this space, they could very quickly come up because the ecosystem was there. And the ecosystem is very complex, more than 500 gases, chemicals, and these are very, very, very, very, very pure. Very pure as in out of 10 crore particles, only one particle can be impure. So imagine a city like Delhi, and just 1 square meter area can be faulty. So that kind of purity is there. So getting the materials and machines is extremely important, and we have got extremely good response on that, much more than what I expected ever. Third is getting more fabs. Fourth is getting more ATMP units, and we'll be focusing more on the advanced packaging because Moore's Law is out. Now it's advanced packaging which is adding the value. And advanced packaging is very complex, but we must get it. We got one of the technologies which is world's latest technology, three-dimensional packaging. That plant is now getting constructed as part of Semicon 1.0. But we have to work a lot more focused on the advanced packaging. Fifth pillar is R&D, and sixth pillar is talent. In the first version, we focused more on the design talent. So we trained 70,000 students, engineers, in 400 universities. If you count a similar program outside China, I don't know.
1: I remember you had raised a target of about 1 lakh students. You're already 70% there.
0: So that's like 10, 1 lakh was one decade. This is in four years we have been able to do 70,000. So it's good, but this time we'll be having an equally large target for the technicians. So we are taking 1 lakh technicians to be trained, and we have got a very good input from the industry, a program which is very structured program, L1 program, L2 program, L3 program, L4 program. So very structured program. We'll be very soon launching it for our youngsters. And I can very clearly see, given what is happening around, easily more than 1 lakh jobs will be created in the semiconductor ecosystem in the coming years, in coming 3 to 4 years itself.
1: You know, and I keep noticing, sir, बार बार आप जो एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं इकोसिस्टम rather than focus only on fab, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी जब अपनी यहाँ पर अपना ओपनिंग भाषण दिया था उन्होंने कहा था कि इकोसिस्टम क्रिएशन बहुत जरूरी है. अभी तक ये इकोसिस्टम हमारे देश में क्यों नहीं था, और क्या आपने ऐसा अलग किया है पहले की सरकारों से, पहले के जो द रिजीम्स विच वर देयर अर्लियर, व्हाट हैव यू डन डिफरेंटली, एंड व्हाई दिस इतना ज्यादा फोकस इकोसिस्टम पर क्यों है, क्यों ये जरूरी है हमारे देश के लिए?
0: इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको जापान का. जापान में इकोसिस्टम होने के कारण दे कुड वेरी इमिडिएटली कम अप. इकोसिस्टम नहीं होता, देर आर सो मेनी कंट्रीज विच हैव फेल्ड. और उनके फेलियर के पीछे एक ही रीज़न था कि उन्होंने जस्ट कहा कि एक फैब लेके आ जाओ, बाकी सब अपना आप हो जाएगा. नहीं,
1: हमारे
0: ऐसा
1: देश
0: नहीं
1: में क्यों
0: होता.
1: नहीं बना बेका की इकोसिस्टम?
0: इकोसिस्टम तो सेमीकंडक्टर का प्रोग्राम ही तो अभी चालू हुआ है. सेमीकंडक्टर का प्रोग्राम ही अभी चालू हुआ.
1: तो आपने क्या डिफरेंट किया कि अब इकोसिस्टम, मतलब
0: थॉट अबाउट द
1: द
0: इकोसिस्टम.
1: पॉसिबिलिटी वाज ऑलवेज देयर दैट सच इकोसिस्टम कैन एग्जिस्ट इन आवर कंट्री. व्हाट डिड यू डू डिफरेंटली फ्रॉम अर्लियर
0: वी थॉट वेरी मेथोडिकली. वी लिस्टेड आउट ऑल द थिंग्स व्हिच गो इनटू सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इकोसिस्टम. सो व्हाट आर दोस थिंग्स? फॉर एग्जांपल, वन ऑफ द फर्स्ट एक्सरसाइजेस दैट वी डिड वाज 250 स्पेशलिटी केमिकल्स विच गो इन टू सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री. उन सब की लंबी एक लिस्ट बनाई, कौन उनके मैन्युफैक्चरर्स है. वी कॉन्टेक्टेड ऑल ऑफ देम, वी इन्वाइटेड ऑल ऑफ देम टू कम टू इंडिया. दे वर लाइक सरप्राइज कि समबडी इज इन्वाइटिंग देम टू इंडिया. देन वी केम टू द मटेरियल मैन्युफैक्चरर्स, ईच एंड एवरी कंज्यूमेबल विच गोज इन टू सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग. उन सब लोगों को बुलाया, उन सब की लिस्ट बनाई, सबको इन्वाइट किया इंडिया में, सबके साथ बातचीत की, क्या दिक्कत है आपको, क्या कर सकते हो, पार्टनर्स किस तरह के चाहिए, क्या आपको फैसिलिटीज चाहिए, वो सारी चीज़ें उनके साथ डिटेल में डिस्कस की. फिर इक्विपमेंट, ऑल द मशीन्स विच गो इनटू इट. एंड आई पर्सनली विजिटेड ऑल द अबाउट 35 ऑड मशीन मेकर्स. उनसे गए, बातचीत की, क्या आपको यहाँ पे डिफिकल्टी आती है. प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स. हाउ टू क्रिएट दैट इकोसिस्टम ऑफ प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग, किस तरह के लोग हैं जिनके साथ उनको काम करना है, वो सारी चीज़ें जब काम की. देखो, इस प्रोग्राम की बिगनिंग में प्रधानमंत्री जी ने बहुत क्लियरली हमको कहा था, डोंट टेक शॉर्टकट्स, इवन इफ इट गेट्स डिलेड बाय अ फ्यू इयर्स, डोंट वरी, बट डू समथिंग विच विल बी गुड फॉर द कंट्री फॉर नेक्स्ट 20 इयर्स. थिंक 20 इयर्स. पीएम साहब ने एकदम क्लियर हमें कहा था कि थिंक 20 इयर्स एंड थिंक ऑफ द इको सिस्टम. कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है ह्यूमन हिस्ट्री में. दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स थिंग विच इज मैन्युफैक्चर. आई गिव दिस एग्जाम्पल, इफ यू हैव टू राइट योर नेम ऑन द नेल, यू कैन राइट इट, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट ट्राई टू राइट द नेम्स ऑफ ऑल योर क्लासमेट्स इन ऑल योर क्लासेस ऑन दिस नेल. वुड दैट बी डिफिकल्ट? दैट वुड बी डिफिकल्ट. नाउ ट्राई राइटिंग द ऑल द टेक्स्ट बुक्स ऑन दिस नेल. दैट इज वॉट सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इज. दैट प्रिसीजन is very, very difficult. So getting that precision required huge amount of effort. हमने वो effort लगाया और सबके साथ humility के साथ. बहुत ही एक हमारे देश में नहीं है इंडस्ट्री. आप आइए, हमको हेल्प कीजिए एंड विल डू वॉट एवर इज नीडेड टू बी डन. और वो हमने किया.
1: आप जब दूसरे फेज में जा रहे हैं, आप जो हमारा मिशन है उसके 2.0 वाले फेज में आप जा रहे हैं, बट कई सारे ऐसे अभी भी लोग हैं जो कहते हैं कि भाई यहाँ तो सिर्फ असेंबल हो रहा है. हम हमेशा मेक इन इंडिया की बात करते रहते हैं, बट दिस इज ओनली असेंबली. क्या कहेंगे आप उन?
0: बहुत गलत बोलते हैं, क्योंकि उनको जानकारी नहीं है. पहली बात, अगर आप इस में जाओगे, आप देर आर सो मेनी पेविलियंस जहाँ पे इंडिया में डिजाइंड चिप्स आर नाउ गेटिंग एक्सपोर्टेड टू जापान, गेटिंग एक्सपोर्टेड टू यूरोप, गेटिंग सम ऑफ देम गेटिंग एक्सपोर्टेड इवन टू चाइना एंड टू US. These are the products which are getting designed and manufactured here. This is, and you can go and see. This is the reality. तो जो लोग नहीं जानते वो लोग allegations लगाएंगे, लगाना उनका काम है. But we are feeling that yes, we have reached a level where the foundation is now set. Now the time to build it in a big way has come.
1: But what are the specific measures and incentives that you are giving? You said आपने विश्व भर के जितने आपके जो ऐसी पावर्स हैं उनको बोला है कि आप आइए, हेल्प अस टेक दिस मिशन फॉरवर्ड, बट व्हाट आर द इंसेंटिव्स दैट यू आर ऑफरिंग टू देम?
0: देखो, इंसेंटिव्स बाकी दुनिया जितनी देती है उतनी हम नहीं दे सकते, ऑब्वियसली, बिकॉज हमारे फाइनेंशियल लिमिटेशंस अपने हैं. और जितना लाइक देयर आर कंट्रीज व्हिच हैव इन्वेस्टेड क्लोज टू $600 बिलियन, हमारा इन्वेस्टमेंट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 13-15 बिलियन टाइप का. First phase was $7-8 billion. This is about $17-18 billion. बाकी countries $100 billion से नीचे बात नहीं करती. लेकिन हमारे यहाँ जो सबसे important factor है, we have very strong design talent. Design talent is giving us that long runway, that confidence, and a very stable policy. We are delivering more than what we are promising. And whatever interactions we have with the industry, we are going with the humility which gives them the confidence that yaar ye desh acha hai, is desh mein kaam karna chahiye.
1: And beyond, if we look beyond the basic silicon fabrication, where are the other areas where we are looking at a possible scope for expansion?
0: Huge scope of expansion in material and machines. Applied Material, which is one of the largest equipment manufacturing company, actually the largest equipment manufacturing company, they have announced $5 billion investment. US में उनका जो प्लांट है, उस प्लांट के बाहर US में भी कभी नहीं गए. वो पहली बार इंडिया में आ रहे. दे हैव नेवर गॉन टू जापान, दे हैव नेवर गॉन टू साउथ कोरिया, नो अदर कंट्री दे हैव गॉन टू, और भारत में आ रहे.
1: व्हाई? बिकॉज़ दे बिलीव इन द विजन और इन द मिशन? व्हाट वाज इट दैट ड्रॉ?
0: इट्स अ कॉम्बिनेशन. दे बिलीव इन द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस थिंग्स.
1: You know, when I was listening to the Prime Minister speak earlier, he said that India is always about dreaming big. You're going very measured, phase to phase way. But is there personally in your heart, you know, a vision that you see aage jaakar ke ye achieve karna hai, that this is going to be our ultimate goal? You know, people may be cynical, may laugh about it, but aap, what would be your fond hope ki this is what we'll achieve?
0: India ka apna GPU.
1: Apna GPU. Aur kitne time mein aapko banega?
0: Wo dream hai aur wo banega.
1: Aur kitna time mein aapko?
0: Dekho, ek road map hai hamare samne. करेंगे उस.
1: Right now, what are the challenges that you feel? Because by now you have a fair sense of, you know, where India stands vis-a-vis its capabilities, but there are a few things that are realistically to be considered. For example, reliability.
0: This industry is today thinking of exporting to Japan, exporting. They are actually exporting to Japan, Korea, Taiwan, to China, to US. And that's what is most important, because that gives them the confidence, one. Second, that establishes India as a country which can produce a quality at a cost point, which gives the advantage to the customers. Then only customers would buy. Better quality and better cost, lower cost, right? Then only customers would buy. So this is what we are continuously focusing, and we are very careful in the selection of the participants. We don't want it to be a system where anybody can come in. No, we are very, very meticulously selecting the participants so that the journey which happens over the next 20, 30 years is a journey where we feel satisfied that yes, we developed a new industry in our country. Even, let me, with full humility, I'm saying, all the five units which have started commercial production, whatever capacity they can create is all fully booked already. The fab which will come in 2028, more than half of it is already booked now, even though the first production has not started. Because the world is looking at India in a very different way now. One, our Prime Minister's foreign policy has established India as a trusted partner. There is a lot of trust about India. Second, the methodical way in which we have rolled out and executed this program, that methodical way gives the confidence to the industry, and industry gives the confidence to their customers.
1: That you're a solid partner, but aapne ek bahut zaruri baat kahi ki jab aap job creation ki baat kar rahe hain, Tier 1, you are getting a very good response. But हमारे regional centers में, क्योंकि जब जब chips की बात करते हैं, एक तो लोगों के दिमाग में थोड़ा सा confusion होता है कि भाई chips से हमारी जिंदगी में क्या हो रहा है. Job creation is something that they can relate to. तो drone दीदी से लेकर के आपके नागपुर में बैठा हुआ एक लड़का भी सोच रहा है, when will I get to connect with this? ये हमारे regional centers में कब
0: expand? आप guess करो कि students जो chip design कर रहे हैं, जिनकी chips manufacture हुई है, सबसे छोटे से छोटा शहर आप इमेजिन करो,
1: छोटे से छोटा.
0: चलो छोटे
1: दिसपुर.
0: दिसपुर में बच्चों ने डिजाइन किया.
1: दिसपुर
0: में डिजाइन किया.
1: Wow. I would have never imagined, because I can say
0: मेघालय में डिजाइन किया.
1: Perhaps 80% people won't be able to.
0: बरमपुर में, बरमपुर में डिजाइन किया है.
1: बरमपुर में,
0: उड़ीसा के बरमपुर में डिजाइन किया है. जम्मू में डिजाइन किया है. पूरे देश भर में 400 यूनिवर्सिटीज इन टीयर 2, टीयर 3 से भी नीचे यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स ने डिजाइन किया. आई इंटरेक्टेड विद द स्टूडेंट्स. जो कॉन्फिडेंस उनके पास है, दुनिया में अगर आप ऐसा प्रोग्राम दुनिया में कहीं देखोगे तो यू वुडंट बी एबल टू काउंट मोर देन 20 यूनिवर्सिटीज जिसमें इस तरह का प्रोग्राम. वी हैव डन इट इन 400 यूनिवर्स. इमेजिन अ स्टूडेंट गोइंग टू द इंडस्ट्री एंड टेलिंग दैट आई हैव डिजाइंड दिस चिप, आई हैव टेप्ड इट आउट एज इन मैन्युफैक्चर्ड इट एंड आई हैव यूज्ड इट इन अ बोर्ड, एक्चुअली टेस्टेड इट. इस तरह की कैपेबिलिटी बहुत कम है दुनिया में. एंड वी हैव गिवन देम इंडस्ट्री ग्रेड टूल्स, कैडेंस का, सिनॉप्सिस का, सीमेंस का. वी हैव गिवन देम इंडस्ट्री ग्रेड टूल्स. ऐसा नहीं कि जस्ट टेस्ट लैब वैसा.
1: यू नो दिस इज सो फैसिनेटिंग, क्योंकि सर एक ऐसे वक्त पे हम बात कर रहे हैं जब सब लोग जेंजी की बात कर रहे हैं. एक ऐसा वक्त होता था जब एस्पिरेशन बस इतना होता था कि आप अपना इंजीनियर, डॉक्टर, शायद लॉयर बन जाएं. और अब आप कह रहे हैं कि दिसपुर या फिर बहरामपुर या फिर I don't know, राव किला, बोलपुर में बच्चे बैठ करके, this is, would you say, also the language or the grammar of Gen Z that everyone keeps talking about? एक वो भी Gen Z है,
0: हेमंत बिस्वा शर्मा जी कहते हैं ना कि मेरी राजनीति सेमी कंडक्टर है.
1: That's true though.
0: उन्होंने कहा मेरा कैंपेन सेमी कंडक्टर है. आसाम में हो रहा है प्लांट. It's a fantastic plant, world class, जागी रोड में. आसाम से भी, गुवाहाटी से भी कितना दूर है. ये हो रहा आज. दैट्स अ रियलिटी. दैट्स व्हाट द इंडस्ट्री वाज सेइंग. चार पांच साल पहले जब आप लोगों ने लॉन्च किया था, वी यूज्ड टू थिंक कि इंटेंशन है. 50-60 साल से इंडिया हैज बीन सेइंग दिस. आज है कॉन्फिडेंस.
1: आपने टेपिंग आउट की बात की. आपने इनॉग्रल स्पीच में द प्राइम मिनिस्टर सेड दैट टेप आउट मींस दैट व्हेन इट गोज इनटू प्रोडक्शन फ्रॉम डिजाइन बट द वर्क इज नॉट ओवर. फेज 1 से फेज 2 हो गया बट फिर भी वर्क इज नॉट ओवर.
0: अभी तो स्टार्ट हुआ है. मैं तो कहता हूँ कि ये फाउंडेशन है, और पीएम साहब ने जो कहा है वो एग्जैक्टली सही कहा है. ये जस्ट एक फाउंडेशन है. अब तक फाउंडेशन बनाना भी अपने आप में बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन अब देखो बहुत सारे ग्लोबल चैलेंजेस आएंगे. रिमेम्बर जब एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग चालू हुआ था तो कुछ लोगों ने फूड पॉइजनिंग की. रॉयटर्स जैसी एक संस्था ने इतनी फेक न्यूज चलाई कि मैरिड वुमेन को अलाउड नहीं करते, इस तरह की चीजें चलाई, इलेक्ट्रिसिटी के तार काटे गए, कई तरह के ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसमें पीपल हु डिडंट लाइक इंडिया टू कम अप एज अ मैन्युफैक्चरर, दे डिड, दे ट्राइड ऑल ट्रिक्स.
1: आप कहने सबोटाज किया गया इस तरीके
0: किया गया है,
1: तार काट करके
0: हर तरह से सबोटाज करने की कोशिश की. अब वो चैलेंज भी आएगा, अब हमें उस चैलेंज के लिए भी तैयार रहना चाहिए. अभी तो देखो ये बिगिनिंग है एंड द वर्ल्ड हैज टेकन नोट ऑफ इट. सो वंस पीपल स्टार्ट फीलिंग कि यार ये एक नया देश इस इंडस्ट्री में आया है, तो देयर विल बी पीपल हु सपोर्ट अस, बट देयर विल बी आल्सो पीपल हु अपोज अस एंड दे आर द वंस हु आर गोइंग टू कॉज प्रॉब्लम्स. आई हैव टोल्ड द एंटायर इंडस्ट्री बी प्रिपेयर्ड फॉर सच इंसिडेंट्स नाउ.
1: और ये सिर्फ फिजिकल सबोटाज नहीं है, एक नैरेटिव का सबोटाज.
0: नैरेटिव का सबोटाज ये होगा, पक्का होगा. देखना
1: किस तरीके का, आप किस तरीके के ऐसे चैलेंजेस फोर्सी
0: करेंगे, साइबर अटैक्स करेंगे, लोग बहुत सारी फेक न्यूज डालेंगे, हर तरह का फिजिकल अटैक करने की भी कोशिश करेंगे. वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस बिकॉज दिस इज अ स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री, दिस इज नॉट एन इंडस्ट्री वेयर पीपल विल गिव इन सो इजीली, राइट? So we have to make our space, we'll have to be very, very methodical, very cognizant of the challenges and do it.
1: Finally, I want to ask you, sir, this is generally, I would assume, a very young industry.
0: It is.
1: Jo aap design ki baat kar rahe hain, jin logo se aap interact karte hain, jo logo ko main dekh rahi hun yahan pe, they are very young. What would you like to say to the young people of our country? And because all the very many departments that you handle, they all in some way or the other interact with the young people of our country. What would you say to them today as minister, as somebody who has a stake in the growth of this country? What should they look forward to in the next 5 years?
0: One, there will be many more opportunities for semiconductor design, semiconductor manufacturing, semiconductor testing, semiconductor validation. It's a full value chain. Semiconductor equipment, materials, many more opportunities will come. Look at those opportunities, prepare for it. We'll help you from the ISM, from the mission to help you prepare for that, one. Two, this is not an industry for people who are okay with taking shortcuts. This is an industry where you have to have real determination and discipline to be able to run it in a long term. I'll give you there are multiple examples. Let me not give any personal example. So this is an industry which requires a lot of determination, lot of discipline. So those who want to be in this industry, be prepared for a marathon.
1: No, please give me that personal example. It would be great to hear.
0: You have to be of that mindset where you go deep. It cannot be for people who just want to be in this industry for 1 year or 2 years. It's not for them. So youngsters, those who want to be part of it, think long term. Go deep, really do deep dive. So,
1: final word. आपका जो एक वीडियो था जो बहुत लाखों लोगों ने देखा, जहां पे आप चिप एक्सप्लेन कर रहे थे, उसके पीछे थॉट क्या था? क्योंकि लोगों ने कहा यहाँ पर प्रॉपर किसी प्रोफेसर ने शायद इतने अच्छे से नहीं समझाया होगा जितना अश्विनी वैष्णव जी ने समझाया.
0: I enjoy
1: that. What was the thought behind it?
0: I just enjoy the subject because I like it. We got this semiconductor in the third year of our BTEC program. So there was a book called J.P. Hayes, John P. Hayes. So just 3 or 4 chapters were there in the syllabus and rest of the book was for masters and PhDs. But in the third year itself, I read the entire book. So I enjoy that subject.
1: Well, you can take a man out of his books, but you can't take the books out of the man. You know, the keera jisko kehte hai ki bhai, knowledge ka keera. Thank you very much, Mr. Ashwini Vaishnav. And always, it's a pleasure and very best of luck. May phase 2 be even better than phase 1. Thank you.
2: Hello and welcome to Apple Park. I am so thrilled to be here today. Every day, people around the world rely on our products.
3: Siri AI can find what you need and get more done than ever. And it already works seamlessly with over 300,000 apps.
4: NDTV's big splash at Apple event. NDTV at Apple's biggest upgrade. NDTV app, in Apple Global Showcase. NDTV makes it to the world's biggest tech moment. NDTV app is the most trusted. NDTV, when it really matters.
5: The next chapter of the NDTV Golf Pro-Am begins here. Bigger, bolder, teeing off across India. The course of champions. The conversation of leaders. The NDTV AM Green IGPL Golf Pro-Am. Season announcement, 19 September. A generation with questions.
6: The starry and the whole glamorous side of it.
7: As I said, like, I can't empathize with it.
5: Unconventional.
8: I feel blessed. As long as the work is going on, I'm happy.
5: Unapologetic. Unafraid of change. Ready to challenge.
9: Aspirational.
5: The ideas. The issues.
10: You really are.
5: The young view.
10: Public perception.
5: NDTV Yuva. 28 September 2026. Only on the NDTV network.
4: 5 hours to go for all of DKS's dreams to come true. I'm going to try and get more into the crowds. Here are the pictures, Siddaramaiah.
11: NDTV stands completely engaged with Karnataka.
12: High red, check the audio. High red, check the audio.
4: Let's do it. Let's do it. Let's start.
13: Breaking story. We're jumping straight into it.
4: We've got a picture of the letter. What is in your letter? You can never predict what's going to happen in Tamil Nadu politics.
14: 21 days in Kashmir. Unfiltered list of things I saw and observed on the ground.
4: Very special ground report from the line of control. There were some children who've lost limbs in the shelling.
15: For a country that has fought so many wars in the mountains and at high altitude.
14: We're standing on the Indian Navy's newest warship.
4: The line of control, Shiv Arur, NDTV.
1: Welcome back. Thank you for staying with NDTV. We take you across through a truly heartwarming story to end the show on. Four tiny new arrivals have brought fresh cheer to Kuno National Park, and India-born Cheetah has given birth to four cubs 4 years after Project Cheetah began. It's a beautiful sign of a new life and a hopeful chapter for India's cheetah conservation story. India's cheetah population has now reached 56 following the birth of four cubs at Kuno National Park. From just 8 cheetahs in 2022 to 56 today, the population has grown sevenfold under Project Cheetah.